मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: के साथ मैं

0: بشنوی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे. राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे. हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया. राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं. उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है. उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे. यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई.
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है. ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया. मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है. मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं. SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है. इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे. न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है. पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है. उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही. श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे. 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: आकाशवाणी का

ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ मनोहर पटेरिया रचित मातृवंदना से समवेत स्वर में।

0: इस भक्ति पद के साथ ही हमारी आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती शैल शर्मा का है।
1: मनुष्य जीवन का सार आत्मानुशासन और आत्मसंयम में निहित है। मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना कहा गया है, क्योंकि उसमें सोचने, निर्णय लेने और विवेक से कार्य करने की क्षमता है। किंतु जब ये विवेक भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं के अधीन हो जाता है, तब वो पतन की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए कहा गया है, संयम ही साधना है और साधना ही सफलता का मार्ग। आत्मसंयम का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्मों को मर्यादा में रखना, अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालसा और मोह पर नियंत्रण रखना। जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। आज का युग भोग विलास और प्रतियोगिता का युग है। हर व्यक्ति अधिक पाने की दौड़ में है। सोशल मीडिया, उपभोक्तावाद और झूठी प्रतिष्ठा की चाह ने व्यक्ति को भीतर से अस्थिर कर दिया है। ऐसे समय में आत्मसंयम ही वो दीपक है जो अंधकार में दिशा दिखाता है। संयम केवल शरीर का नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं का भी होना चाहिए। क्रोध पर संयम, वाणी पर संयम, भोजन पर संयम और समय पर संयम, ये सभी जीवन के 4 स्तंभ हैं। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में संयम रखता है, वो शांत, स्थिर और सफल होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते अतय विर्मोह

0: येष ज्ञानमावृत्य देहिनम, अर्थात इंद्रियां जब अनियंत्रित होती हैं तो वे ज्ञान को ढक लेती हैं। इसलिए आत्मसंयम सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक मन संयमित नहीं तब तक कोई भी साधना सफल नहीं। वाणी का संयम, वाणी मनुष्य का दर्पण है। मधुर और संयमित वाणी से हम किसी का दिल जीत सकते हैं, जबकि असंयमित वाणी संबंधों को तोड़ देती है। अति भोग या अनुचित आहार न केवल शरीर बल्कि मन को भी अशांत कर देता है। सात्विक भोजन आत्मसंयम की नींव है। बात इंद्रियों के संयम की करें तो नेत्र, जीभा, कान, त्वचा और नाक की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, भावनाओं के संयम में क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और कामना पर नियंत्रण रखना ही भावनात्मक संयम है। ये पांचों प्रकार के संयम मिलकर मनुष्य को सच्चा साधक बनाते हैं। आत्मसंयम केवल नैतिक अनुशासन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः, अर्थात संयम, स्वाध्याय और ईश्वर में समर्पण ही योग है। बुद्ध ने कहा, विजय करने से श्रेष्ठ है वो जो स्वयं पर विजय पाए। संयम वही विजय है जिसमें मनुष्य अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, दास नहीं। संतों ने भी कहा है, मन जीते जग जीते। जब मन पर विजय हो जाती है तो समस्त संसार अपने अधीन हो जाता है। यही आत्मसंयम की सर्वोच्च अवस्था है। आत्मसंयम केवल व्यक्ति को नहीं समाज को भी संतुलित बनाता है। एक संयमी व्यक्ति समाज में मर्यादा, शांति और अनुशासन का वातावरण फैलाता है। असंयम जहां हिंसा, कलह और विनाश को जन्म देता है, वहीं संयम प्रेम, सहयोग और सद्भावना को पुष्ट करता है। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसंयम व्यक्ति को स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रख पाता है। संयमी व्यक्ति का आचरण उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए कहा गया है, संयमी व्यक्ति का मौन भी उपदेश होता है। आत्मसंयम कोई एक दिन की साधना नहीं, ये जीवन का निरंतर अभ्यास है। प्रलोभनों के युग में संयम बनाए रखना कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। छोटे छोटे निर्णयों में संयम रखकर हम बड़े बड़े परिणाम पा सकते हैं। क्रोध में मौन रहना, दुख में धैर्य रखना और सुख में विनम्र रहना, यही सच्चा आत्मसंयम है। अंततः यही कहा जा सकता है, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए जीतने को कुछ शेष नहीं रहता। संयम ही जीवन का सौंदर्य है, संयम ही साधना का सार है और संयम ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है।
1: श्रीमती शैल शर्मा का लिखा चिंतन अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं और ये समय है श्री रामचरित मानस गान का। एपिसोड नंबर 177।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं, वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं।

निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

0: क्योंकि हमें जब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमें चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने के साथ साथ में जो दवाई बताते हैं उन्हें लिख के रखिए, आप डायरी मेंटेन करिए। यदि डायरी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। अधूरा रहने से कहने का मतलब, हमें दिमाग में हम कितने दिन तक उसको सोच के और अच्छे से रख सकते हैं, तो ज़्यादा दिन तक हम रख नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ कारणवश हम भूल जाते हैं या मेमोरी से उतर जाता है। तो हम उसे लिख के रख लें उस दवाई और डोज को, तो जो बीमारी के लिए उन्होंने बताया है वो उनको ज़्यादा जानकारी है। ज़्यादा जानकारी होने के कारण क्या है कि वो सही डोज बताएंगे और उसको उपयोग करेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। अब बाजार मूल्य की बात करें तो मुनगे के पौधे के अंदर में जो फल्ली लगती है, स्वाभाविक बात है कि आज आप देख सकते हैं कि 50 से 60 रुपये किलो आसानी से बिक जाता है, और इसके समय पे पूरी छत्तीसगढ़ पे तो इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। और इसकी पत्ती का विशेष तौर पे महत्व है, इसका पत्ती का हम पाउडर भी बना सकते हैं, और पाउडर बना करके इसका बेनिफिट आप सभी जानते होंगे कि पेट अच्छा साफ रहता है इससे, और जो हमारे मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा इसमें मिलते हैं हमें। तो इसके साथ साथ में ये दवाई का काम भी करता है, तो हाँ, आयुर्वेदिक दवाई के रूप में भी इसे आप ले सकते हैं। और इसके साथ में हमने जो इसके अंदर में एक खेती आज नई चालू की है, ऑयल पाम की। ऑयल पाम का कहने का मतलब यह है कि जो इसके फल रहते हैं वो 3 साल से फल लगना चालू होता है, और इसमें 3 साल से फल लगना जो चालू होगा, 125 से 125 किलो तक का माल हम 1 साल से इसमें ले सकते हैं। इसके साथ साथ में इसमें जो बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि 3रे साल से जो लगातार फल होगा, नीचे से फल लगना चालू होता है, 7-8 साल तक तो दिक्कत नहीं जाती, उसके बाद बांस से और उसमें आगे चाकू लगा करके उसको काट के हम नीचे उतार सकते हैं फल को हमारे पाम ऑयल के, और 125 से 150 किलो तक का माल हम एक झाड़ से आसानी से इसमें ले सकते हैं। तो ऑयल पाम भी अच्छी खेती है, यदि आप इसको ग्राफ्टेड मुनगा के अंदर पर लगा करके इससे आप लाभ कमाएं, यही मैं आशा करूँगा। किसान भाई तो कर ही रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी से ही मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो लोग भी आगे बढ़ें और पढ़ाई के साथ साथ में खेती को भी अपनाएं और खेती से भी लाभ कमाएं। जिसके पास भी जमीन है अपनी, वो उसमें से अच्छा सा लाभ कमा सकते। नमस्कार, राम राम।
1: पाम ऑयल के संग ग्राफ्टेड मुनगा की खेती, कृषि चर्चा में इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री मुकेश खोडियार। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

विज्ञान भवन नई दिल्ली में 23वें सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह 2026 और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर 2026 का सीधा प्रसारण आज सुबह 11 बजे स्पोर्ट्स केन रात 8:30 पर और करंट अफेयर्स रात 9:30 पर। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ही बागड़ देव। शास्त्रीय संगीत में आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी, और इसी कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग झिंझोटी। सुर सिंगार छत्तीसगढ़ी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम होगा आज दोपहर 12:30 पर।

सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुनिएगा अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे रमाशंकर। नवा बिहान कार्यक्रम में आज सुबह 9:00 आपको सुनवाएंगे क्रिटिकल मिनरल मिशन पर छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक श्री यू के कुरैशी से ली गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे नेमीचंद साहू। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगी शुभांगी

0: शाम 5:10 पर युवावाणी में आजकल का विषय रहेगा अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। साथी होंगे क्रम सेहत और अपनी पसंद। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात होगी जल संरक्षण अपनावन भविष्य ला खुशहाल बनावन विषय पर और हेल चौपाल में खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग और सावधानियां इस विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह चर्म रोग विशेषज्ञ मेकाहारा रायपुर। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी सरिता साहू और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। रात 10 होगा कार्यक्रम उत्कल भारती। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12:00, हमर हाथी हमर गोठ शाम 5:00 और शाम 6:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 हुए हैं, आइए समाचार सुने।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केंद्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुंबई नगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने काङ्ग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वांटम कंप्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु

0: परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य SIT इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्तनिदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनाङ्कात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। NEET परीक्षापत्रस्रावप्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोगचिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉक्टर शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै NEET परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। 21st-2000 पुलवामा आतङ्कवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। IPL क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्यचतुर्दश कन्दुकक्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में

0: सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

बेशक इस बेतहाशा गर्मी ने हम सबको बेहाल कर दिया है, पर इन गर्मियों में भी मिठास बरकरार है रसीले आम, तरबूज, खरबूज जैसे फलों में, और तरावट बनी हुई है मिट्टी के बने घड़े सुराही के ठंडे पानी और शिकंजी लस्सी जैसे पेय पदार्थों में। श्रोताओं, मिठास वो सुखद एहसास है जो हर कोई चाहता है जिंदगी के हर पहलू में, फिर चाहे वो खान पान में हो, रिश्तों में हो, और या फिर हो सबके व्यवहार में। तो क्यों ना इस मधुरता को, इस मिठास को शामिल करें अपने भी व्यवहार में, अपनी वाणी और बोली में, और जीत लें सबका दिल मीठी मीठी बातें करके।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: श्रोताओं, वक्त का गुजरता हर लम्हा अपने साथ संजोता है कई बातें और कुछ हसीन यादें, जो आगे चलकर बन जाती हैं उस तिथि विशेष का इतिहास। ऐसी ही है आज की तारीख 22 मई। इस दिन का इतिहास भारतीय और विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ है। 22 मई की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करें तो सन 1545 को सूरी साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा शेर शाह सूरी का निधन हुआ था। वहीं 22 मई सन 1772 को आधुनिक भारत के जनक और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म हुआ था। सन 1906 में 22 मई को ही राइट ब्रदर्स ने अपनी फ्लाइंग मशीन के लिए पेटेंट हासिल किया था। 22 मई सन 1960 को चिली के दक्षिणी तट पर रिक्टर स्केल पर 9.5 तीव्रता का सबसे शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया था और जैव विविधता के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये थी आज की तारीख से जुड़ी विशेष बातें, और इन बातों के बाद सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, आज यानी 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि 22 मई सन 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। अब यहाँ ये जानते हैं कि जैव विविधता आखिर है क्या। तो इसका अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता। इसमें उनके जीन्स, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधताएं शामिल हैं। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने, पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने और मानव जीवन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। जैव विविधता वो महत्वपूर्ण विषय है जो हम सबके जीवन, हमारी धरती और भावी पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को प्रकृति, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। तो आइए आज के दिन हम भी संकल्प लें, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करते हुए अपनी सुंदर प्रकृति की रक्षा करेंगे और उसे देंगे हरियाली की सौगात।

श्रोताओं, आज है 22 मई और आज की ही तारीख में सन 1772 में जन्म हुआ था आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता राजा राम मोहन रॉय जी का। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषा प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय का नाम अग्रणी है। राजा राम मोहन रॉय ने तत्कालीन भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता, सती प्रथा और अंधविश्वास को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास भी किया। इसके साथ ही इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए भी कड़ा संघर्ष किया। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के द्वारा ही समाचार पत्रों की आजादी के लिए मार्ग बना था। उनका यह मानना था कि किसी भी देश की प्रगति केवल उदार शिक्षा के द्वारा ही संभव है और इसी दिशा में सार्थक पहल करते हुए उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक शिक्षा के समर्थक, सामाजिक चेतना के पक्षधर और धार्मिक सुधारक थे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, और मैं हूं आपके साथ अनुभा।
1: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
2: डिजिटल अरेस्ट, इसमें ठग अपने आप को पुलिस का अधिकारी या कस्टम का अधिकारी बताकर कॉल करता है, और इनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आपकी निजी बैंक अकाउंट, आधार कार्ड का यूज इनलीगल एक्टिविटी में हो रहा है, जैसे हवाला का पैसे के ट्रांसफर पे या ड्रग्स के व्यापार पे, और इस प्रकार आपको भय या डर के आधार पर आपके साथ ठगी करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम व्यक्ति समानता डर जाता है, तब ठग उन्हें वीडियो कॉल करता है और यह बोलता है कि आप अपनी लीगल प्रोसेस के लिए एक एक्स या वाई किसी सिटी पे पिछले 2 घंटे के अंदर पहुंचिए। जब आप उस सिटी में पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तब वह बोलता है कि जब तक लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आप वीडियो कॉल में बने रहेंगे, और लगातार आपको डरा और धमका कर आपके साथ ठगी करने का प्रयास करता है। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, आप हमेशा सतर्क रहें। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर वीडियो कॉल पे कोई भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराता। यदि फिर भी आपके साथ किसी प्रकार की ठगी होती है, तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
0: वाकई श्रोताओं, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। इसी संदर्भ में अब एक जानकारी नए ऐप अभय से जुड़ी हुई। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से लोगों को बचाने के लिए CBI ने एक कारगर पहल की है। उसने एक नया AI आधारित चैटबॉट अभय लॉन्च किया है। ये CBI की आधिकारिक वेबसाइट www.cbi.gov.in पर उपलब्ध है। इसका मुख्य काम है CBI के नाम पर भेजे गए नोटिस की सच्चाई बताना। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि नोटिस असली है या फर्जी। कोई संदिग्ध मैसेज या नोटिस मिले तो ऐसे पता करें कि CBI की वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर अभय का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करें, अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए लॉग इन करें, आपको जो नोटिस मिला है उसकी फोटो या स्कैन कॉपी अपलोड करें। कुछ ही देर में अभय ऐप बता देगा कि नोटिस असली है या फर्जी। श्रोताओं, दरअसल डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। ऐसा कॉल आते ही फोन काट दें, धमकी पर भरोसा न करें। अनजान वीडियो कॉल पर अपने बैंक आधार नंबर का ब्यौरा या कोई भी निजी जानकारी साझा न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

एक परीक्षा मंडल व्यापम ने पीएटी और पीवीपीटी 2026 प्रवेश परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। पहले ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे 28 जून रविवार को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक होगी। व्यापम द्वारा जारी सूचना के अनुसार एनटीए ने नीट परीक्षा 2026 दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। नीट परीक्षा भी 21 जून को प्रस्तावित की गई है। ऐसे में परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए पीएटी और पीवीपीटी परीक्षा की तारीखें बदली गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं।

0: 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: श्रोताओं, कला वो हुनर है जो खुद को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम होता है, फिर वो चाहे संगीत हो, नृत्य, चित्रकला, अभिनय, लेखन या हस्तकला। हर कला हमारे भीतर छिपी प्रतिभा को सामने लाती है और ऐसे ही विविध कलाओं को सीखने का मंच है आकार, जो प्रतिवर्ष संस्कृति विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित होता है। आकार शिविर 2026 इस वर्ष 25 मई सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष प्रतिभागियों को 15 विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें वाद्य यंत्र, पेंटिंग, बोनसाई आर्ट, भरथरी गायन, कथक में लखनवी घराने का प्रशिक्षण, मांडना आर्ट, रजवर भित्त चित्र, जूट गोदना शिल्प, टेराकोटा, लिप्पन आर्ट और पचवाई आर्ट सिखाया जाएगा। इस वर्ष पहली बार AI ट्रेनिंग को आकार शिविर में जोड़ा जा रहा है, ताकि हर उम्र के लोग नई तकनीक को समझ सकें। आकार 2026 छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपरा और प्राचीन विरासत की पहल को नई दिशा देते हुए नवीन कलाकारों की नींव गढ़ता है। तो यदि आप भी किसी कला में दक्ष होना चाहते हैं, तो 25 मई तक फॉर्म भरकर अपनी कला और रचना को दें उन्मुक्त आकाश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2000

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान

0: 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना

0: के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम

0: सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है, सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी बहुत ही नायाब है और इस पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब इस जैव पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। श्रोताओं, हम जब अपने पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें जल, वायु, इस तरह के जो तत्व होते हैं ये हमें धरती पर स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। ये एक सीमित संसाधन है, इन्हें बचाए रखना, संरक्षण करना हमारा दायित्व होता है। और श्रोताओं, जल की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 70% से ज़्यादा भाग जल से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी में नदियाँ, तालाब, सागर, महासागर जैसे जल के कई स्रोत हैं, लेकिन पीने के पानी के स्रोत कम ही हैं। और श्रोताओं, शनह शनह जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे पृथ्वी में पानी की मात्रा घटती जा रही है। तो श्रोताओं, जल संरक्षण हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और श्रोताओं, जल संरक्षण की बात करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, ये एक सामूहिक दायित्व होता है जिसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है और इसके लिए स्वतः जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। श्रोताओं, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से वीरेन सिंह जी हैं जो जल संरक्षण के कार्य से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इन्हें वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो वीरेन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं वीरेन सिंह दलित आजरा जिला बालोद से हूँ। विगत 28 वर्षों से जल संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें मैं पारंपरिक हमारे जो हैं तालाब, कुआं, इन्हें बचाने के लिए मैं जन सहयोग से जुटा हुआ हूं। अब तक छत्तीसगढ़ में 40 तालाबों की सफाई कर चुका हूं। हमारे बालोद जिला का एक तांदुला नदी है, जन सहयोग से इसमें मैंने हर साल अपना योगदान देता हूं।

0: और लोगों से निवेदन करता हूँ कि नदियों को भी स्वच्छ रखें, इसमें कूड़ा करकट प्लास्टिक पॉलीथीन ना फेंकें, और हमारे तालाब जो धरोहर हैं इन्हें बचाना है। आप इसमें आसपास नहाते हैं तो रैपर प्लास्टिक दातुन ये सब इस पानी में ना फेंकें, इससे पानी प्रदूषित होगा। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ का वाटर लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तालाबों का ही और कुओं का ही है।
1: जी, तो वीरेन जी, जैसे आप पालो जिले से हैं जो दलीराजरा ग्राम है, तो ये जो है एक तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का मध्य जो क्षेत्र है, यहाँ कई तालाब हैं, पोखर हैं, नदियाँ हैं यहाँ पर, और जल के कई स्रोत हैं। तो जब जल संरक्षण का कार्य आपने शुरू किया और आज तक आप देखते हैं कि जो जल के संसाधन थे उनमें क्या अंतर आया है, ये बढ़ रहे हैं कि सिमट रहे हैं?
0: वर्तमान में मैं जहाँ दिल्ली राज रहा हूँ, कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो 24 घंटे उनके जल प्रवाह होते रहते हैं। आज पानी की तो हमारे यहाँ भरपूर है, बाकी इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तालाब भी सिमट रहे हैं, छत्तीसगढ़ तालाबों के नाम से जाना जाता था, लोग अब उसे पाट कर आसपास घर बना रहे हैं, कुओं को पाट कर घर बना रहे हैं, जिससे अब पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, धरती में समा रहा है। हम सबको एक जरूरी काम ये करना है कि अपने खेतों में भी पानी के संरक्षण के लिए डबरी उबरी बनाएं, और किसानों से भी निवेदन करते हैं कि आप गर्मी के दिनों में धान ना बोएं, इसकी जगह कम पानी वाली फसल लें, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और उन्नत कृषि का दर्जा पाएं। ये छोटे छोटे प्रयास अभी हम किसानों के साथ भी कर रहे हैं।
1: जी जी जी वीरेन सिंह जी, तो हम एक जो मूल सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है?
0: सोचो एक पल, ना होगा जल तो क्या होगा कल, जल बिना सब सुना, ये कहावत हमने सुनी है। वर्तमान में धरती का बढ़ता हुआ तापक्रम और पानी का जल स्तर गिर रहा है दिन प्रतिदिन। पूरे वर्ल्ड में 71% पानी है खारा पानी, जो पीने योग्य नहीं है। इसमें से मात्र हम 3% पानी का उपयोग मीठा जल के लिए कर रहे हैं, इसमें आधा से अधिक तो ग्लेशियर हैं। आज हमारे आसपास जो वर्षा जल है इसको बचाना है। वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, चाहे कुओं के माध्यम से या डबरी के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से धरती तक पहुंचाना होगा, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे और हमें पीने का पानी मिलेगा। ये सब छोटे छोटे प्रयास हम सबको करना होगा।
1: तो वीरेन सिंह जी, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं, तो आपने जल संरक्षण में अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं?
0: जल संरक्षण में सर, मैंने जन सहयोग से अब तक 28 वर्षों में 35 से 40 तालाब को साफ सफाई किए हैं हम छत्तीसगढ़ के, और वर्तमान में भी ये जारी है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तालाब हैं, वर्तमान में गाँव के लोगों को लेकर इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास अभी जारी है।
1: वीरेन सिंह जी, जब हम छत्तीसगढ़ में आपके किए गए कार्यों की बात करते हैं, तो आपको वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो ये उपाधि आपको कब मिली और क्यों मिली?
0: वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ मुझे अभी 2026 में कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड घोषित हुआ, वहाँ मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे छोटे छोटे प्रयास तालाबों को संरक्षण के लेकर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जन सहयोग भी मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब से छत्तीसगढ़ शासन ने कोपरा जलाशय में सम्मानित किया। इसके लिए सर मैं जल संरक्षण के काम अपने घर के आसपास से लोगों से निवेदन करता हूँ कि व्यर्थ पानी को बहने ना दें, जहाँ भी पानी बहे उसे रोकना होगा। और मैं तो जहाँ रहता हूँ दिल्ली राजरा, वहाँ तो पानी 24 घंटा अविरल जल धारा प्रवाह है, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तो इन्हें बचाने का भरकस प्रयास करता हूँ। तो लोग आसपास भी मुझे आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ भी आइए और एक अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश दीजिए। तो मैं गांव में जाता हूँ, वहाँ भी तालाबों को बचाता हूँ, वहाँ भी जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन्हें संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को लेकर, राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, स्काउट गाइड सबको लेकर एक जन जागरण नुक्कड़ माध्यम से गाँव वालों को संदेश देता हूँ कि जल को बचाइए, बारिश के जल को आप सब इसको कैच करना है और इसका संरक्षण करना है, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे।
1: जी जी, तो वीरेन सिंह जी, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हम जल का क्षरण कर रहे हैं या जल को हम बर्बाद कर रहे हैं?
0: जल का बर्बादी तो हम अपने घरों से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमें पानी की आवश्यकता नहीं है तो हम उसका व्यर्थ उपयोग ना करें। जैसे हमें सेविंग करना है, सावर से नहाना कोई जरूरी नहीं, आप मग और बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए बाल्टी से उपयोग कर सकते हैं, स्कूटर को बाल्टी से लेकर आप साफ सफाई कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द घर के आसपास कोई

0: बह रहा है तो उसको बंद करिए, अपने बच्चों को भी उसको बाल्यकाल से प्रेरित करिए पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए, उन्हें आपके संस्कार में शामिल करना होगा। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इस स्वस्फूर्त जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। हमें इन्हें अपने घर के आसपास या स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित करना होगा। मैं अब तक छत्तीसगढ़ के 2.5 लाख बच्चों को 28 सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर चुका हूँ और निरंतर मेरा प्रयास जारी है।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो क्यों ना हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
0: सर, मेरा पसंद का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में मिलेंगे राहें बहार के, ओ राही ओ राही।
1: वीरेंद्र सिंह जी ने जो गीत पसंद किया है, आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे वीरेन सिंह जी से, जिन्हें वाटर मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये जल संरक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वीरेन सिंह जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे, जो आपने कार्य किए हैं इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है, उन्हीं में से एक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपको वाटर हीरो और जल प्रहरी के नाम से भी सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बताएं कि ये सम्मान आपको कब प्राप्त हुआ और क्यों प्राप्त हुआ, और ये इसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं?
1: लगातार 26-27 वर्षों से जल संरक्षण के लिए प्रयास करते हुए मुझे जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 में वाटर हीरो और जल प्रहरी सम्मान से देकर मुझे सम्मानित किया, और मुझे बहुत खुशी भी और मुझे ऊर्जा भी मिला। लगातार उसके बाद मैं और जल संरक्षण के लिए जोर शोर से भिड़ा हुआ हूँ, और आसपास के लोगों, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों और अपने से ग्रामीण जनता हो, सबको अब साथ लेकर हम जल के लिए जुट चुके हैं। किसानों से साथ हम बैठ रहे हैं कि अब जल के एक एक बूंद बचाना है, बारिश के जल को बचाना है,

0: हमारे पास तालाब हैं, कुआं हैं, बारिश के जल को वहाँ तक धरती तक पहुँचाने के लिए हमारे पास माध्यम है, वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अपनाना है, तो ये छोटे छोटे प्रयास हम सब कर रहे हैं।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, जैसे आपके दल्ली राजरा का क्षेत्र है, बालोद जिला का है, तो वहाँ आपको ग्रीन कमांडो के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ग्रीन कमांडो क्या होते हैं।
0: सर, हरियाली के लगातार मुझे प्रयास करते हुए बहुत लंबे समय हो गए, तो मुझे शुरुआत करने में 8-10 युवाओं को लेकर जब शुरुआत किया था 25 साल पहले, हमने छोटे छोटे प्रयास करते थे, वृक्षारोपण, गांव में जाकर आसपास बोरिंग तालाबों की सफाई करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। हमने साइकिल से यात्रा करके रात में नुक्कड़ नाटक करके 2007 में हमने पूरे छत्तीसगढ़ का साइकिल से भ्रमण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नुक्कड़ के माध्यम से संदेश दिए। 2008 और 9 में हम भारत और नेपाल की यात्रा की है साइकिल से, और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पेपर पाम्पलेट के माध्यम से उनको संदेश दिए, और वर्तमान में भी हम लोगों से निवेदन करते हैं आप साइकिलिंग ज़्यादा उपयोग कीजिए, पेट्रोल डीजल का हमें बचाना है और बिजली का भी बचत करना है, तो ये सब हमके छोटे छोटे प्रयास से ये सब ऊर्जा हम बचत होगी और हम देश में आगे एक बढ़ते चले जाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह जी, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसके लिए हमारा नाम होता है, आपके अच्छे कार्य के पुरस्कारों की बात करते हैं, तो इसकी एक काफ़ी लंबी फहरिस्त आपके पास है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से सम्मान आपको प्रदान किए गए हैं।
0: सर, मुझे तो वाटर हीरो और जल प्रहरी के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे 2023 में सम्मानित किया, इसके साथ साथ 2011 में छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर ने इन्होंने भी सम्मानित किया मुझे, और अब वर्तमान में 2026 में सीट्स संस्था ने रांची में मुझे एकम सम्मान से सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे 26 साल हो गए, इसके लिए एकम सम्मान मुझे मिला। नित्य नए नए अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश देने लग जाता हूँ।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसमें जो है प्लास्टिक काफ़ी हानिकारक हो रहा है, और इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और इससे जलाशयों और जल के संरक्षण में किस तरह बाधा आती है।
0: वर्तमान में हम शादी ब्याह में भी जाकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक की जगह आप स्टील का गिलास उपयोग कीजिए, दोना पत्तल का उपयोग कीजिए, और हमारे ग्रामीण अंचल में अभी लोग दोना पत्तल तो उपयोग कर ही रहे हैं, वर्तमान में शहरों में थोड़ा सा देखा जा रहा है डिस्पोजल का ज़्यादा उपयोग। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि स्टील गिलास का उपयोग करिए और अपना काम करिए, इस प्लास्टिक पूरे नदी तालाब और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, ये तो गलती भी नहीं, और धरती में ये पूरा प्रदूषण कर रहे हैं, बंजर भूमि को बंजर कर रहे हैं, गौ माता के पेट में समा रहे हैं, तो हम सबको अब सोचना होगा कि इसके जगह वैकल्पिक रूप हमें स्टील गिलास ही उपयोग करें, और शादियों में दोना पत्तल का उपयोग करें, प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल ही ना करें।
1: जी, तो ये जन जागरूकता से ही प्लास्टिक इस्तेमाल को रोका जा सकता है। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपने अभी बताया कि कोपरा जलाशय जो बिलासपुर में है, और यहाँ पर भी वेटलैंड संरक्षण के कार्य के लिए आपको बर्ड वॉक ऑफ संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था, तो इसके बारे में बताएं कि ये आयोजन कैसा था और इस आयोजन का क्या महत्व था।
0: ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड साइट रामसर साइट घोषित किया गया, इसमें देश के और भी विशेषज्ञ आए हुए थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया और कुछ अपना पक्ष रखने को दिया गया। तालाबों और वेटलैंड को भी बचाना बहुत जरूरी है, ये वेटलैंड साइड हमें मत्स्य हो चाहे कृषि हो, ये हर क्षेत्र में इनका योगदान होता है, वहाँ प्रदूषण नहीं करना चाहिए हमें, ये बात मैंने वहाँ रखी थी कि इसे भी प्रदूषण से बचाना होगा। आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण और हरियाली लाने के लिए भरकस प्रयास सब ग्रामीणों को लेकर करना होगा।
1: तो आपने एक बात और बताई थी, एकम सम्मान 2026 में आपको दिया गया, साथ ही बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2023 में आपको दिया गया, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: छत्तीसगढ़ शासन 22 मई 2023 को जैव विविधता पुरस्कार और 25,000 रुपये से मुझे सम्मानित किया था। मैंने जंगलों में आग लगाने से और जीवों को बचाने के लिए, जैसे गर्मियों में मिट्टी के सकोरे, हर वर्ष 200 सकोरे लोगों को भेंट करता हूं, और जंगलों में जाकर वहां पानी के

व्यवस्था करता हूँ कि जो पशु पक्षियों के लिए, और आग को स्वयं बुझाता हूँ। इसलिए शासन ने मुझे जैव विविधता का पुरस्कार भी दिया था। वर्तमान में भी गर्मी के दिनों में लोग महुआ को बीनने जाते हैं और उस नीचे वृक्ष के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे पूरा सारा जंगल में आग फैल जाता है। तो ये जन जागरूकता भी मैंने चला रहा है कि आप महुआ को बीनने से पहले उसे झाड़ू से साफ करिए, जंगल को बचाना जरूरी है। आज ये जंगल रहेगा तो जैव विविधता रहेंगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। वर्तमान में मैं 3,000 सीड बॉल जो

0: आम के सीजन है, गुठली निकलेंगे, इसको इसको आप जंगलों में फेंकिए, कम से कम ये हरा भरा जंगल होंगे, फल फलेंगे तो पशु पक्षियों के भी काम आएंगे। तो वर्तमान में अभी मेरा ये काम बारिश से पूर्व हरियाली लाने के लिए मैं सीड बॉल और बीजों को एकत्रित करके जंगलों में फेंक रहा हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि आपके घर में जो जामुन के बीज मिलेंगे, अभी आम के गुठली मिलेंगे, इन्हें जंगल में फेंकिएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दीजिएगा।
1: जी, वीरेंद्र सिंह जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वन संपदा से काफ़ी भरपूर है। और जब हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, दल्ली राजरा बालोद क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये वहाँ भी हमारा वन आच्छादित प्रदेश है। और जब देखें, जब वनों की बात होती है, तो वहाँ वन्य जीवों का भी जो है उनका वो एक प्राकृतिक रहवास है। पेड़ पौधों का काफ़ी कटाव किया जा रहा है, जिससे इनकी धमक जो है अब गाँवों में हो गई है, ये घरों तक पहुँच गए हैं। तो इसका जो कारण है, हमारा जो मानव अस्तित्व का जंगल की ओर बढ़ना, इसे आप कैसे देखते हैं?
0: यूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ 44% हरियाली से आच्छादित है। उसमें एक ज़िला है हमारा बालोद ज़िला, वहाँ डैम है बहुत बड़ा, तांदुला जलाशय है। और दल्ली राजरा में भी कई प्राकृतिक जल स्रोत होने के कारण आसपास आपको रात को जब भी आप कभी विचरण करेंगे, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू और हिरण, ये सब आपको बंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और राजराव बालोद के मार्ग में आप गुजरते, बस में कभी भी जाएं या रात्रि को विचरण आप किसी भी माध्यम से जाएं, तो आपको हिरण अवश्य देखने को मिलते हैं। मन बहुत खुश हो जाता है कि ये इन्हें नेचुरल जगह मिला हुआ है। आम जनता से निवेदन किया जाता है कि आप इसको संरक्षित करने के लिए भी आप अपना योगदान दें और जंगलों को ना काटें। जब भी कहीं आग लगे तो वहाँ अपने फॉरेस्ट वाले को सूचित करें, जंगल को बचाएंगे तभी वन्य प्राणी बचेंगे और तभी पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा।
1: जी, वीरेंद्र सिंह जी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में हर माह के आखिरी रविवार को आते हैं और वे अपने मन की बात साझा करते हैं आम भारत की जनता से। तो उसी कार्यक्रम में आपकी भी बातें एक बार साझा हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में चर्चा किए थे, तो वो कब की बात है और उसमें आपकी जो बातें शामिल हुई थी उसके बारे में आप बताएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा ये पूछा। आजकल वर्तमान में मैंने कुछ विगत वर्षों, करीब 10 वर्षों से शादियों को एक मॉडल के रूप में, मतलब उसमें मैं दो परिवारों के साथ सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, तो मैं शादी के माध्यम से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर एक महाअभियान अपने जिले में शुरुआत किया है। शादी होते हैं वर वधु के, तो मैं पौधा के साथ साथ वहाँ पोस्टर बैनर लेकर जाता हूँ। जैसे अभी वर्तमान में जल समस्या है, तो जल वर वधु को पौधे गिफ्ट करके वहाँ जितने भी खड़े हैं, जल स्लोगन लिखा हुआ रहता है, जल ही जीवन है, जल बिना सब सूना, ये पोस्टर। और जैसे बारात उरात में जा रहे हैं तो दूल्हे के गाड़ी में मैं पोस्टर लगाता हूँ, आओ जल बचाएं। तो एक संदेश के साथ साथ, और जैसे बैंड बाजे के साथ इनका जब बारात निकलता है तो हम पोस्टर भी पकड़ लेते हैं, जल का संरक्षण का, वन्य प्राणी का संरक्षण का, तो एक नया संदेश जाता है। इसी तारतम्य में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे छोटे छोटे प्रयास जल संरक्षण के 101वीं कड़ी में उन्होंने अवगत कराया, शादी में बारात, जल बारात दूल्हा द्वारा निकाला गया, तो वो बहुत अच्छा लगा, याद किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिला और हमारे कार्य को गति मिल रहा है और लगातार और अच्छे से हम कुछ नए नए आइडिया लेके आ रहे हैं, लोगों को कैसे ध्यान आकर्षण करें जल बचाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। मैंने अपने कपड़े में भी वन्य प्राणी संरक्षण, वन को आग से बचाने का पूरा ड्रेस ही सिला लिया है। जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है, जैसे अभी जंगलों में मुझे जाना होता है आसपास के गांव में, तो मेरे ड्रेस में लिखा है वनों को आग से बचाओ, वन्य प्राणियों का ड्रेस है। तो स्कूलों में चल जाता हूँ तो बच्चे मुझे अट्रैक्ट होकर देखते हैं, वो स्वस्फूर्त उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जल बचाने के लिए भी मेरा ड्रेस बना हुआ है। और वृक्षारोपण को जब बालो जिला में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, और ड्रेस के माध्यम से मैं पूरे स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को बोलता हूँ, आपको भी अपने धरती माँ की रक्षा करना है, इसलिए आपको भी एक पौधा लगाना है स्कूलों में और इसका संरक्षण करना होगा। पानी जब आप पीते हैं बॉटल में लाते हैं

0: इसे फेंकना नहीं, आपने स्कूल के गार्डन में इसको फेंक डालिए पानी को, ये पौधा बड़ा होगा तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और आप जब भी जहाँ जाएंगे फिर याद आएगा कि हमने ये पेड़ को बड़ा किया था।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका वीरेंद्र सिंह जी, और बेशक ही आपकी इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ हरियाली से भरा प्रदेश तो है और हरा भरा होगा। और कार्यक्रम में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: श्रोताओं, आपसे मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जल संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, वन्य प्राणी संरक्षण हो, जंगल को बचाना हो, इसके लिए छोटे छोटे प्रयास हम अपने घरों से करिए। आने वाले अपने आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश के भविष्य हैं, इनको एक ऐसा संस्कार दीजिए कि पानी का उपयोग जितना होना है उतना ही करें, बिजली का उपयोग जब काम हो तभी इसका उपयोग करें, आसपास कहीं जल बह रहा हो तो उसे बंद करने के बच्चों को बताइए। और ये छोटे छोटे प्रयास बच्चों को मन में अभी से हम उनके बीज बोएंगे पर्यावरण संरक्षण का, ये आगे चलकर एक नागरिक बनेंगे और ये काम करके देश में अपना नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए हम सबको भी छोटा छोटा योगदान देना होगा। अभी इस गर्मी में आप सबको देख रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो बारिश में आप भी एक एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण कीजिए, खेतों में भी आप फलदार पौधा लगाइए, आपका आय का स्रोत बढ़ेगा, इसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। सभी किसानों से मेरा ये हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेंगे और कम पानी लगेगा वह फसल बोएंगे, और बारिश के पानी को धरती तक पहुँचाने के लिए हम कुआँ तालाब अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करेंगे और जल स्तर को बढ़ाएंगे। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार, मानव और विज्ञान का गहना, पर्यावरण धरती का है गहना। तो मैं अपने बच्चों को भी ये दोहा बोलिएगा, बच्चे एक वृक्ष अनेक, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। और श्रोताओं, वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैं, इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और कार्य कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम अवश्य होगा। और जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने कई पौधे लगाए हैं, और इनके जो प्रयास हैं वो आज नहीं, वो आने वाले समय में प्रकट होंगे। तो श्रोताओं, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमें अपनी धारा को बचाने के लिए अपने जितने भी प्रयास करने चाहिए हमें करने चाहिए। इसी का संदेश आज वीरेंद्र सिंह जी ने हमारे कार्यक्रम में दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हम जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आप आ जाए और हमारे श्रोताओं से जो इतनी अच्छी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपने छत्तीसगढ़ के सभी श्रोताओं तक अपनी छोटे छोटे प्रयासों को पहुंचा सका है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी रायपुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे रमाशंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। शुक्रवार 22 मई 2026 यानी आज प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय रहेगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग और सावधानियां। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ मेकाहारा रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं

हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार यानी आज 22 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार यानी आज ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। नवा बिहान इस कार्यक्रम में आज सुनिए क्रिटिकल मिनरल मिशन पर छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक श्री यू के कुरैशी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है नेमीचंद साहू।

0: जम्मो श्रोता संगवारी मन ला हमार नमस्कार। केंद्रीय बजट 2024-25 मा केंद्रीय वित्त मंत्री हा घोषणा करीन कि हमन घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिज मन के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्ति के विदेश में अधिग्रहण बर एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन के स्थापना करबो। केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद से ही महत्वपूर्ण खनिज मिशन जिला क्रिटिकल मिनरल मिशन के नाम से घलो जाने जाते शुरुआत हुई से। क्रिटिकल मिनरल मिशन के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक श्री यू के कुरैसी जिला। कुरैसी जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है।
1: जम्मो श्रोता मन ला नमस्कार।
0: कुरैसी जी, क्रिटिकल मिनरल या महत्वपूर्ण खनिज काला कहते या कौन से होते?
1: ऐसन खनिज है जो आर्थिक विकास के दृष्टि से भारत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है और ओखर ले ज्यादा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण है। ऐसे मिनरल हमन क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। ऐसे मिनरल हमारे भारत देश या छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, हमन डिपेंड है आयात पे। तो ऐसे आयात पे हमारा डिपेंडेंसी कम करने के लिए तो अपने देश में ही उसकी पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी गठन किया गया है और इसीलिए इसको क्रिटिकल बोलते हैं, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
0: सर, तो ये क्रिटिकल मिनरल मिशन का है?
1: जैसे आपने बताया 24-25 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की, उसी के परिपालन में जनवरी 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का गठन भारत सरकार के कैबिनेट की अनुमोदन के बाद किया गया। एक मकसद ये रही कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत में क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति की जो चैन है मजबूत बने, खासकर ऐसे खनिज जिस पर हम डिपेंडेंट है आयात पे, ओमन की डिपॉजिट ला खोज के और भविष्य में हाई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस के जो महत्वपूर्ण हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें भारत अभी दूसरों पे डिपेंड है, हम आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत उसमें आत्मनिर्भर बने, ये उसका मेन उद्देश्य है, इसलिए इसका गठन किया गया।
0: सर, वैसे क्रिटिकल मिनरल मिशन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं?
1: कार को ले लें या मोबाइल को आप ले लें, तो मोबाइल का बैटरी वो लिथियम से है तो लिथियम क्रिटिकल मिनरल है। हम कार में जाएं, कार में अगर हम डैशबोर्ड में देखें उसमें हर चीज इसी से है। कार में जो पेंट होता है वो बिस्मथ से होता है, बिस्मथ भी क्रिटिकल मिनरल है। हमारा ज्यादा उपयोग अभी हमने ईवी पे जो है, मतलब मिनिमम उत्सर्जन वाला जिसमें हमारा पर्यावरण अफेक्ट ना हो, ऐसे मामलों को शून्य उत्सर्जन वाहन, टर्बाइन, सोलर पैनल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, आधुनिक रक्षा उपकरण, चिकित्सीय उपकरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और मेन ये मतलब है कि भविष्य में अभी राजनीतिक उथल पुथल चले थे, ऐसे हमारे स्टॉक पाइल बनाने के उद्देश्य है कि हम भविष्य में ऐसा कोई मामला हो, कोई देश से हमारा संबंध अच्छा बुरा हो, हम तब भी अपन आत्मनिर्भर रहें और हमारा जो मिशन है, हमारा जो दूसरे उपयोग है उसमें प्रभावित ना हो।
0: सर, जैसे अभी क्रिटिकल मिनरल लिथियम बिस्मथ बताए हो, तो क्रिटिकल मिनरल कतेक ठन है सर?
1: 30 मिनरल ला क्रिटिकल

0: मिनरल घोषित किए हैं हमारे हिसाब से, जिसमें 10 मिनरल वो ऐसे हैं जिसमें हम पूरे 100% जो है वो दूसरे देश के आयात पे निर्भर है
1: जी।
0: तो इसकी आयात पे निर्भरता कम करने के लिए भारतवर्ष में मेन है एंटीमनी, बेरिलियम, लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, ग्रेफाइट, नियोबियम, निकिल, पोटास, टिन, वेनेडियम, ऐसे 30 खनिज है।
1: सर वैसे छत्तीसगढ़ में घलो कोनो क्रिटिकल मिनरल या महत्वपूर्ण खनिज मिलते का?
0: हाँ, छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना यहाँ पर टिन का, बस्तर में नाम सुना होगा, टिन मिलता है और टिन के साथ टेंटलम, नियोबियम मिलता है। उसके अलावा अभी हमारे पास लेपिडोलाइट, यहाँ पर लिथियम मिनरल हमने ऑक्शन किया है कोरबा जिला के कोटघोरा के पास, और GSI भी वहाँ काम कर रही है, उसके उसी की खोज है
1: जी।
0: और सरकार ने उसको ऑक्शन किया है। इसके बाद अपन अगर नॉर्थ में जाएंगे तो हमको वहाँ पर ग्रेफाइट के डिपॉजिट मतलब मिल रहे हैं, अभी हमारा काम भी चल रहा है और हमने एक ऑक्शन भी किया, CIL ने उसको लिया है। इसके अलावा ग्लूकोनाइट मिला है महासमुंद और आपके बालोद में। महासमुंद भी पेपर में पढ़ा होगा कि PG ग्रुप प्लेटिनम, वेनेडियम, निकल, कोबाल्ट के डिपॉजिट भी मिले हैं। तो ऐसा लगातार छत्तीसगढ़ में भी मिशन के बाद प्रायोरिटी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे प्रायोरिटी में ऐसा प्रस्ताव बना रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस जो है ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल में रहे, उसके एक्सप्लोशन करना और उसको डिपॉजिट बना के उसको ऑक्शन करना ताकि भविष्य में उसमें उत्पादन हो और ये चीजें भारत में सुलभ उपलब्ध हो सके।
1: ये क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है बड़ महत्वपूर्ण मिशन हरी सर, तो एकर क्रियान्वयन राज्य स्तर में केंद्र स्तर में कौन ढंग ले करे जावत है सर?
0: केंद्र सरकार हर टारगेट फिक्स कर दी से और एकर मतलब जैसे GSI है केंद्र स्तर में और अलग अलग PSU है जैसे NMDC है, कोल इंडिया लिमिटेड है, कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, वो मतलब टारगेट दी से और पैसा की टारगेट दी, जैसे टोटल इसमें निवेश 34,300 करोड़ है, वो में 16,300 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देते अपन दे और 18,000 करोड़ रुपया PSU ले देना है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये PSU जो से NMDC है तो ये मन अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं दूसरे देश में, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में, वहां पर भी ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या दूसरा माइनिंग ऑलरेडी है उसको ये एक्विजिट कर रहे हैं, वो माइनिंग को हम करें ताकि उसका मटेरियल को हम उपयोग कर सकें
1: जी।
0: ये 7 साल का मिशन है, इस पूरे अवधि में 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट पूरा करना है
1: जी।
0: सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग PSU के, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हमको इसके प्रोसेसिंग के मतलब कई चीज ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ जैसे टेंटलम, नियोबियम, टीन के स्लैग मिले थे
1: पर
0: हमारी टेक्नोलॉजी नहीं कि नियोबियम और टेंटलम स्लैग अलग कर सके।
1: अच्छा।
0: तो एमन में भी काम करना है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, अभी तक यह चीन में ही है इसलिए 12 से 13 जो मिनरल क्रिटिकल चाइना में है तो हर आदमी उस पर डिपेंड है, तो ये टेक्नोलॉजी हमको भी डेवलप करना है, इन सबको अलग कर सके। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर रही है और जैसे बड़ी बड़ी संस्था है जैसे ISM धनबाद, IIT बॉम्बे, इनको किया, ये लोग रिसर्च में बाकी इसमें अपना काम बढ़ाएं। स्टेट जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट, अभी हमने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने MOU करे है ISM धनबाद जो IIT भी कहलाते कि ओकर साथ मिलके ओकर मार्ग निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार अपन क्रिटिकल मिनरल के खोज के काम करे, एक्सप्लोरेशन ला काम करे
1: जी।
0: और एक बात जो है विदेश में जो मिनरल जो है उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना और ऑलरेडी वहाँ जो है अगर कोई माइंस चल रहा है उसका अधिग्रहण करना PSU। और दूसरा इम्पोर्टेंट रिसाइकलिंग, आपने कहा रिसाइकलिंग, अगर इस चीज जैसे बॉक्साइट की मान रही और उसमें रेड मट मिलत रही तो रेड मट अभी तक हम लोग छोड़ देते थे, अब उसमें गैलियम मिलने लगा है तो अब उस पे ध्यान की जो चीज अनुपयोगी था जैसे फ्लाई एश निकलता है कोयला में तो फ्लाई एश में भी आपका बहुत से मिलने लगे हैं।
1: अच्छा।
0: तो अब कोई चीज मतलब किसी चीज को बेकार करके फेंकने के पहले देखना कि क्रिटिकल मिनरल तो नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो लाइन में भी उन्हें फिर रिकवरी करके फिर से काम करने की जरूरत है।
1: अभी सर आप नेशनल क्रिटिकल मिशन के जो अब तक की प्रगति ला बताए हो तो अब जो बांचे काम है तेमे काका चुनौती है?
0: 2024-25 के बजट में रखा गया था और अगले साल जनवरी से काम शुरू हो गया
1: जी।
0: तो अभी तो काम शुरू होते, एक तो ये मैंने कहा पब्लिक अवेयरनेस
1: जी,
0: कोई भी काम होता है, कोई प्रोजेक्ट आता है तो पब्लिक में भी इसका समर्थन आवश्यक है, ये काम राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसमें लोग समर्थन करें, जब किसी की जमीन भी ली जाएगी ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जब काम करेंगे। फिर अभी एक्सप्लोरेशन होते हमें टाइम लगते 1-1.5 साल, फिर उसका रिपोर्ट बने, जब पूरा रिपोर्ट बन गए तो फिर वो अगर वो फ्रूटफुल इकोनॉमिक सस्टेनेबल रहा तो उसको हम ऑक्शन करेंगे, फिर अलग अलग क्लीयरेंसेज मिलेंगे तो काम चालू। आज भी अगर कोई हमने जो ब्लॉक दिया है उसको प्रोडक्शन आने में 3-4 साल लगेगा, तो उसके बाद ये जो हमने कहा प्रोसेसिंग पार्क, रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेश में जो हमने कहा लोगों से स्टॉक वहां से एक्विजिशन करना है, ये लगातार चालू है। अधिकांश मिनरल वहां है जहां फॉरेस्ट है, तो

0: इसके क्लियरेंसेस भी हैं,
1: उसके
0: आसपास कोई बायोडाइवर्सिटी का इश्यू तो नहीं है, एनवायरमेंट के इश्यू है, ऐसे बहुत सारी मतलब मिलेगा सब धीरे धीरे, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब देश हित के लिए महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे ये भी समाधान होगा।
1: सर, छत्तीसगढ़ के जो खनिज एटलस है ओकर बारे में एक कनक हमारे श्रोता मल्ला बताते हो।
0: छत्तीसगढ़ अपन ला मालूम है कि प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, ऊपर वाला का धन्यवाद है कि छत्तीसगढ़ में उसने बड़े अच्छे से नवाजा है, चाहे नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट हो चाहे मिनरल हो। अगर मैं मतलब लगभग 28 प्रकार के मिनरल छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, जिसमें अगर उत्तर से हम अगर शुरू करेंगे सरगुजा या आपकी जशपुर से, तो कोयला कोरबा में, सरगुजा में मिलता है, कोरिया में मिलता है, सूरजपुर में मिलता है, लिथियम मैंने बताया कोरबा में मिलता है, बॉक्साइट अगर नॉर्थ में बात करें सरगुजा में, जशपुर में है, मैन पार्ट में आपने सुना होगा बॉक्साइट की माइनिंग है, बलरामपुर में हिंडालको की माइनिंग है, हमारा CMDC के माइंस भी माइनिंग हो रही है वहां पर, और अभी भी लगातार हमारे ऑक्शन हो रहे हैं, और मैग्नीज का भी हमने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जो मैग्नीज ओर लिमिटेड का MOU होके अभी नीलकंठपुर में हमारा प्रोस्पेक्टिंग चल रहा है, 18,000 मीटर ड्रिलिंग हुआ और अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, आगे जब इसको हमको एक ब्लॉक बना के हम या तो ऑक्शन करें या खुद माइनिंग कर सकते हैं, जो सरकार जैसा तय करेगी। सेंट्रल छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो लाइम स्टोन का बड़ा ह्यूज डिपॉजिट है, आपको पता होगा लगभग 10 सीमेंट प्लांट हमारे यहाँ कार्यरत है, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, बलौदा बाजार में, तो और लाइमस्टोन के मतलब कूद भंडार छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद जांजगीर में है, दुर्ग में है, बस्तर में है, आयरन और अपन पता है कि केंद्र का बात करेंगे तो बालोद में राजहरा का BSP माइंस है, और कवर्धा में एक अच्छा डिपॉजिट मिला है, उसके अलावा राजनांदगांव में माइनिंग चल रही है, और मानपुर मोहला में माइनिंग है, अभी कोई ऑक्शन में भी कुछ अच्छे ब्लॉक और बड़े अच्छे प्रीमियम में गए हैं। डोलोमाइट का आपने नाम सुना होगा, यहाँ बिलासपुर में, बिल्हा के एरिया में, जांजगीर में, रायगढ़ में और शक्ति में मिलता है। क्वार्ट्स भी स्टील प्लांट के बड़ा महत्वपूर्ण खनिज है, रायगढ़ में, जशपुर मिलता है। गोल्ड का नाम सुना होगा हमारा, जब से भैया ऑक्शन शुरू हुआ पहला ब्लॉक हमारा बलौदा बाजार में सोना खान एरिया में हुआ। डायमंड का आपने सुना, एक तो हमारा बेलमुंडी जो एरिया है वहाँ हम लोग CMDC और NMDC मिलकर काम कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो ग्लूकोनाइट जो है पोटाश रिच मिनरल बालोद में मिल रहा है, और बालोद के अलावा धमतरी में, मगल रोड में, महासमुंद के आसपास हमको PG मिनरल मिल रहे हैं, जो निकल कोबाल्ट होते हैं, उसको प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल बोलते हैं। साउथ में देखें, साउथ और छत्तीसगढ़ में देखें तो कांकेर से शुरू कर कांकेर में आयरन और दंतेवाड़ा का बेलडीला का नाम है आपने सुना, आयरन और बहुत अच्छा मिलता है, अच्छे ब्लैक ग्रेनाइट मिलते हैं और लाइमस्टोन मिलता है, क्वार्ट्स मिलता है, कोरंडम CMDC का एक प्रोजेक्ट है भोपाल पटना में, कोरंडम मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है
1: जी।
0: तो मतलब वैरायटी ऑफ टिन का मैंने पहले ही बताया था आपको
1: जी।
0: टिन मिल रहा है बहुत अच्छा
1: जी।
0: अब टिन में ये सरकार ट्राइबल के लिए बेनिफिट के लिए टिन खरीदती भी है
1: जी।
0: ताकि उनको अभी सरकार जो अच्छा रेट दे रही है 1565 रुपए पर KG, तो सरकार अभी बिल्कुल रियल टाइम में ये अच्छा काम कर रही है वहाँ के निवासियों के लिए भी।
1: कि आखिर ये मिनरल्स जो है ये भूमि के अंदर पाए जाते, ये कैसे बनते और कितना गहराई में मिलते, कैसे कर उत्खनन करे जाते?
0: मैग्मा जब ऊपर आता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो हर वो धीरे धीरे अलग अलग मिनरल मतलब तीन, ये एक तो इग्नियस डिपॉजिट होते हैं, एक सेडिमेंट्री, एक मेटामॉर्फिक, तो ये अलग अलग ओरिजिन डिपॉजिट होते हैं। जो इग्नियस होता है उसमें ये होता है कि वो जैसे अब मैंने कहा डायमंड मिलता है तो वो किम्बरलाइट उसका एक हॉट रॉक है, तो वो नीचे से जब ऊपर आया तो अगर वो प्रॉपरली अपने निश्चित टाइम में अगर ठंडा हो गया, सब मिनरल का मेल्टिंग पॉइंट और ये सब अलग अलग होता है, तो वो जो और उसका उसी में जमता है तो पता लगा वो अलग अलग टाइम में जो अलग अलग ठंडे होते हैं वो मिनरल मिलते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री, जो अपने सेडिमेंट्री बेसिन होता है छत्तीसगढ़ बेसिन जो है उसमें डिपोजिशन होता है
1: जी।
0: तो अगर कैल्शियम रिच डिपॉजिट हुआ तो लाइमस्टोन बन गया, अगर आपका सैंडस्टोन में ये अगर ये हुआ तो आपका सैंडस्टोन बन गया। उसके बाद इसी में अगर मेटामॉर्फिज्म हो गया, मेटा सेडिमेंट बोलते हैं, कोई अगर आसपास की डाइक मतलब कुछ ऐसी घटना हो गई तो उसमें फिर वो यही चीज जो है, जैसे मान लो लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया हीट के असर से, या जो अपना बेलडीला का मेटा जो सेडिमेंट था उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, आयरन रिच मटेरियल एक जगह कंसंट्रेट हो गया तो वो बेलडीला का डिपॉजिट बन गया, इसलिए वो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो वो पहाड़ी बन गया। अच्छा, उत्खनन के बारे में ये है कि मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के दो डिवीजन है। मेजर मिनरल उमल खनिज कहते हैं जिसका उपयोग औद्योगिक के लिए हो, उद्योग के लिए हो, मतलब उस खनिज से कोई उद्योग स्थापित हो, जैसे लाइमस्टोन से क्या हुआ आपका सीमेंट प्लांट बन गया तो वो मेजर मिनरल कहलाए। उसके अलावा बाकी मिनरल माइनर मिनरल जिनका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है।

0: हाँ। तो मेजर मिनरल का जो है वो केंद्र सरकार रॉयल्टी तय करती है इस क्रिटिकल मिनरल के अलावा, मतलब राज्य सरकार करती है, और माइनर मिनरल का नियम भी सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्वीकृति भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। गिट्टी पत्थर कुछ मामलों में जिला कलेक्टर को भी अधिकार है। तो ये स्वीकृति की अपनी प्रक्रिया, आजकल क्या होता है मेजर मिनरल पूरा ऑक्शन से होते हैं। 2015 में पारदर्शिता को अपनाया गया।
1: कुरैसी जी बड़ सुघर जानकारी देवत हो आप मन हा। और आखिरी में हमार श्रोता मल्ला ये कार्यक्रम के माध्यम से का संदेश देना चाहू?
0: किसी भी देश या प्रदेश में उसका आर्थिक आधार का बैकबोन है खनिजों का उत्खनन और उससे प्राप्त होने वाला राजस्व। अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ में 14,592 करोड़ रुपया खनिज रॉयल्टी से प्राप्त हुआ। इसके अलावा इसमें 15% DMF मिलता है जो स्थानीय लेवल में काम आता है। अभी छत्तीसगढ़ में माइनिंग जो है GDP में दूसरा स्थान है। खनिज का उत्खनन, खनन और उसके आधारित उद्योग और उद्योग से मिलने वाले राजस्व, उससे मिलने वाले रोजगार, उससे होने वाला आसपास का होलिस्टिक डेवलपमेंट और वहां के लोगों को जीवन शैली, उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है और होना ही मात्र उद्देश्य है सरकार का और इस विभाग का।
1: श्री UK कुरैसी जी आप मन हा हमर श्रोता मल्ला बड़ सुघर जानकारी दे हो, अपन कीमती समय हमला दे हो, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नवा बिहान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे क्रिटिकल मिनरल मिशन पर छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक श्री UK कुरैशी से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे नेमीचंद साहू। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के धुन बनाई हैं सचिन देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है तलाश।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गुलजार का लिखा गीत सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म पूर्णिमा के इस गीत को सुरों से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: रात और दिन, इस फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ गीत शैलेंद्र का है और संगीत शंकर जयकिशन का।

चित्रपट संगीत के अंत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म है काली चरण।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इसी कार्यक्रम में कुछ और फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 से। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9:40 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शुभांगी बागड़ देव। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये पहली रचना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: शोभांगी बागड़देव के स्वर में लीजिए अब सुनिए नरेंद्र चंचल का लिखा गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शुभांगी बागड़देव को। इन्हीं की गाई कुछ और रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिल्दा समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के कुशहा गांव में आयोजित चौपाल के दौरान नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित कामयाबी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन विज्ञान और गणित जैसे विषयों को अधिक रोचक तथा व्यावहारिक तरीके से समझाने में सहायक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5:30 तक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले को स्टेट कैपिटल रीजन SCR में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने गुरुवार को राजनांदगांव में आयोजित व्यापारी महाअधिवेशन में इस संबंध में घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवालय द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया।

0: छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित पन्ना लाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म जिस्म का ये गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत निलेश मिश्रा का था और संगीत था MM करीम का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुनो।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

साजन चले ससुराल। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों का गाया हुआ। समीर के लिखे इस गीत के लिए संगीत नदीम श्रवण का था। कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में मनन पॉल का लिखा गीत। संगीत जतिन ललित का है और फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में 23वें सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह 2026 और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर 2026 का सीधा प्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध,
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
2: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम श्री जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं

0: सब निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए दो वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण। गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है। गत वर्ष BSF ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले BSF की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं BSF का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही BSF की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में BSF ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु BSF पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब BSF डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही BSF ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में BSF की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ BSF ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी BSF के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की।

0: भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
0: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

0: सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी पीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह, मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
3: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
4: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi। तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्म पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उपकमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर सन 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता, शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं
1: नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। He walks to the podium.
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी

और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है, इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में, स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई, और जब से BSF की स्थापना हुई है, सैन्य सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया, और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम BSF ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया, जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी BSF की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।

अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई है। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सब के साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरे को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नारकोटिक्स

और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए 3 हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा

सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस करकर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद्य करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखा।

कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है, और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज वन, वाइब्रेंट विलेज टू आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया।

0: आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज वन, वाइब्रेंट विलेज टू, आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है, और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी, और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले एक साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं, और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है, और हमारी जनसांख्यिकी के में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा, और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं, और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा, और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह

0: धन्यवाद श्रीमान। और
1: Hello, I've been to was given to the Home Minister by the DG of the Border Security Force, Shri Praveen Kumar.
2: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
3: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका, डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार, सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय
4: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: to the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life. All the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। ये आकाशवाणी है।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म का नाम था बरसात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हमसाया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शेवान रिजवी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में संतोष आनंद की रचना। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वर में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार।

सुर सिंगार कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला प्रवीणा त्रिपाठी के राम राम संगी हो। आज के कार्यक्रम में आप मन के अब्बड़ पोस्ट कार्ड और ईमेल हमर कोती आए हैं, ता आवाओ शुरू करन कार्यक्रम के ए पहले गीत और इला सुने बर पोस्ट कार्ड और ईमेल के मिले जुले फरमाइश है। धमनी राजिमले दुष्यंत कुमार बंजारे आशीष कुमार बंजारे चिरमिरी कुरासिया कालरीले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायणपुरले श्रीमती दिनेश्वरी मनीष कुमार बंजारे सहजपुर लोरमीले छोटकू साहू मोहित राम लोकेश रामकिशन दुलीचंद सतीबाई सत्यम साहू चांदनी चौक गंडई पंडरियाले पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की रानू नानू रविन्द्र रौनक सेन रसेड़ाले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या कीर्ति कुमार डिकेश साहू चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम अजय कुमार जयकिशन कुमारी इंद्राणी माया साहू मदनपुर ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान आयशा सबीहा अनस औरेहान और भिलाई तीन चरोदा ले डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदुन जीशान अहमद और शाह नवाज अहमद और पोस्ट कार्ड मिले आप सब मन के पावर हाउस भिलाई जामुल ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ संजय प्रधान पूजा प्रधान रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे पूजा अंबादे कटोरा तालाब रायपुर ले मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी देवांगन पहंदा कोरबा ले सम्मेलाल कुर्रे सावित्री देवी कुर्रे सरग बुंदिया ले गब्बर साहू निर्मला देवी साहू धमनी मनोरा ले आपन हो तुलसी राम डेरे मायावती संदेश आदेश किरण प्रज्वल औदादुल्या डेरे आर्मरी खुर्द जिला दुर्गले चुरामन लाल वार्डे जैनी वार्डे विवेक कुमार वार्डे नेहा वार्डे बाजार पारा बिमेत्रा ले भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा मुरली मनोहर पटेल औ शंकर नगर दुर्गले मानिक सिंह बैस कावेरी विनीता लल्ली लेखमणि बैस मन्हा तो आवो सुने जाए आप मन के पसंद माँ प्रीतम साहू और उखर साथी मन के गाए ए लोकगीत।

कार्यक्रम के अगले गीत ला सुने बर ईमेल पठोए आप मन बलोदा ले दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद समृद्धि पटेल भोयना पार लाटाबोर ले देवनारायण साहू योगिता गीतिका चंचल रानी उमाबाई गंगाराम साहू धरसीमा ले छेदूलाल यादव श्रीमती सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना रानू खुशी प्रवीण साहू इकबाल कुरैशी दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था अनुराग अभिषेक डुग्गू कान्हा यादव गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतिन बाई मोतिमबाई मानिकपुरी कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मी गीतिका गुड़िया सूर्या ब्रिजमोहन ओंकार अनमोल ओम प्रकाश सोनवानी नांदघाट कतलबोर ले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत मर्रा कोना ले लक्ष्मी नारायण यदु वैभव यदु मेचका सोंढूर ले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा लिखिल तरुणदीप नाग और लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी आऊ पाती पठोए आपमन कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा रुचि वर्मा खुशी ओजल वर्मा बेमेत्रा ले सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता भाई कमलकांत ब्रजेंद्र ब्रजकांत सारथी मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा बेमेत्रा ले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सुषमा सारथी करही भदर ले पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर शारदा देवी लोचन कुमारी विद्यार्थी गीतिका अवलल्ली और शिव मंदिर रोड खैरागढ़ ले आप मनोहर रविन्द्र अग्रवाल पुष्पलता डॉक्टर झरना प्रेरणा दीक्षा और शिक्षा अग्रवाल ता आवो सुने जाए आप मन के पसंद माँ शेख हुसैन के गाए ए लोकगीत

कार्यक्रम का अगला लोकगीत ला सुने बर ईमेल भेजो आप सब संगी मन भाटापारा ले बचका मल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय कुमार ठाकुर अमलीडीह ले खिलेश्वर सिंह चौहान मालती देवी चौहान दतरेंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा नादिया गंडई ले मूलचंद पटेल आशीष पटेल मोनिका सीमा पटेल आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष और नंदिनी जंघेल धमधा सुखरी कला ले अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल दतरेंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा सलोनी घुमका ले देवचरण साहू हेमा वेदांत और वैभव साहू खमार मुड़ा ले शिवाय गिरी गोस्वामी एकांशी गोस्वामी साकरा सोमनी ले नारायण लाल साहू कुलवंतिन देवी दिवेंद्र प्रताप नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू और पोस्टकार्ड भेजो आप मन शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा दतरेंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु लक्ष्मीना यदु लालपुर ले लुकेश यदु दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा हिंगोली महाराष्ट्र ले शाहजी बोड़खे हनुमान बोड़खे उत्तम जमदाड़े कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा दिनेश सेन रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा पटपर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार ध्रुव कविता औ जयंती ध्रुव ता आवो सुने जाए आप सब मन के पसंद मां किस्मत बाई देवार के गाए ए लोकगीत।

किस्मत बाई देवार के स्वर में अभी आप मन सुनत रहे हो ए लो गीत हा। और अगला गीत ला स्वर दे है संगीता चौबे। और ए गीत ला सुने बर पाती पठोए आप मन चनागांव ले गजानंद नेताम, जैनू राम शौरी, विष्णु साहू, कमर शौरी, जयंती बाई, सोहन यादव, नंदलाल मरकाम, आशीष नेताम। डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। सिर्री गाता पार ले लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू। कोरदा ले कलीराम यादव, छतराम यादव, शेष राम यादव। मगर लोड ले पुनूराम साहू, राज तेजेश्वरी साहू, राजश्री राजवीर साहू। आउ ईमेल बठोए आप मन बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद वर्मा। कोई ग्राम भंगीटोला ले ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई फिरतराम, मालती धुर्वे। भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी, राहुल पूजा मरावी। बिनौरी ले टिकमराम साहू, योगेश्वर साहू। पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडेल नवापारा ले मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, आदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। खल्लारी भीमखोज ले जीएल साहू, सरोज छोटी, पिंकी साहू मनहा। मोहरेंगा राजिम ले खुमान सिंह पटेल, तेजस्वनी मिष्टी, एकांश पटेल। सहा मांगलगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी आकाश, प्रतिभा पूर्वी, पूनम चंद्रवंशी। और देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक, पुनेश्वर रजक, रामकुमार सेन, विक्की सेन, फानेश्वर रजक और उमेश रजक। ता आवो सुने जाए संगीता चौबे के स्वर में ये लोकगीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत ला सुने बर ईमेल पठोए आप मन छिरहा बेमित्रा ले दिलीप जायसवाल दिलेश्वर विभू दीपक चित्रांश देवांश जायसवाल सौंगा मगर लोड ले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी गजेंद्र कुमार चंदन बाजार वार्ड महासमुंद ले भीष्मदास नर्मदा हिरमनी दीपक अवलक्षदास बोगाटोला मोहला मानपुर ले मालिक राम सिन्हा तारामती मुनिंद इंदु चांदनी सविता देवी सिन्हा रोहांसी ले डगेसर राम साहू नूतन साहू गौरव घनश्याम साहू गेंदाटोला बाजार चौक ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता गजेंद्र गुप्ता अंजलि योगिता गुप्ता देवरी भाटापारा ले के आर साहू मुरली क्षत्रिय पाहंदा पलारी ले नीतीश कुमार देवांगन तनुजा ईशांत लखनलाल सावित्रीबाई देवांगन गोड़ा राज ले मनोज साहू श्रीमती चित्रेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू कन्या बालाघाट ले अखिलेश कुमार यादव ज्योति अंकित श्रद्धा सौरभ यादव हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू जितेंद्र पायल साहू कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेन्द्र औ साहिल चंद्राकर औ पाती पठोए आपमन बुड़गहन ले रामदुलारी प्रजापति रामचरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला शशिकांता प्रजापति बिलाईगढ़ ले रोशन

लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, भाव्या, प्रियांश देवांगन, शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फैज, महजबीन बानो, शीतला नगर दुर्गले शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले, राजेंद्र कुमार दामले, औ सिर्री गातापारले आपन धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका औ पूनम साहू। त आवो सुने जाए आप सबके पसंद माँ कार्यक्रम के ए आखिरी गीत भीखम धर्माकर औ उखर साथी मन के गाए।

0: भीखम धर्माकर और उखर साथी मन के गाए इही गीत के संग आज के सुर सिंगार कार्यक्रम इही सिरावत है। आज के कार्यक्रम में गीत ला जोरे रहिन बीरभान साहू मनहा ता आप देव विदा अपन संगवारी प्रवीणा त्रिपाठी ला राम राम। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुरसिंगार। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन का एक बजने को है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर

0: विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में अभी आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत सचिन देव बर्मन का था और फिल्म का नाम था 9-2-11।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम जीने की राह। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दी गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

ब्रह्मचारी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम करेंट अफेयर्स। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग झिंझोटी। शाम 5 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और शाम 6:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे आजकल में चर्चा, अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। सुनिएगा क्रम सेहत और अपनी पसंद। किसान साथी अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा जल संरक्षण अपनावन, भविष्य ला खुशहाल बनावन। क्रम हेलो चौपाल में आप सुनेंगे खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेकाहारा रायपुर। कार्यक्रम का संचालन करेंगे सरिता साहू, प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। साथ ही होगा आज का प्रश्न और मौसम की जानकारी।

रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी शुभांगी बागड़देव, ब्रजमोहन दास और साथियों को आप सुनेंगे कार्यक्रम उत्कल भारती में रात 10:00। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर और चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:00, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर सुनेंगे। इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। सुनिएगा क्रम सेहत और अपनी पसंद। और किसान साथी अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा जल संरक्षण अपनावन, भविष्य ला खुशहाल बनावन। क्रम हेलो चौपाल में आप सुनेंगे खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां, इस विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेकाहारा रायपुर। कार्यक्रम का संचालन करेंगी सरिता साहू, प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। साथ ही होगा आज का प्रश्न और मौसम की जानकारी।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 1:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग झिंझोटी में आलाप जोड़ झाला। गत झपताल और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग झिंझोटी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगतकार थे उस्ताद शफात अहमद खान और तानपुरे पर थे सुरेंद्र नार्वेकर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सलिल चौधरी ने और फिल्म का नाम है पूनम की रात।

Akashvani at 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम मुकेश के स्वर में। आइए आप सुनते हैं साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत खयाम का है, फिल्म का नाम है कभी कभी।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म डॉन का गीत। अनजान के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता

0: न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है।

0: विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
1: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री

0: अरे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला

0: छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: अर्ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जी जी जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
0: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी सुना तो है,
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
0: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी,
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी,
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की।

0: पेश करके सुंदरवन की
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना। कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आ जाओ, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ। ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए।

0: जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: पाजी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे इसको भी डालो।
5: हाँ हाँ
4: ये देखो
5: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। अब कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
5: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
8: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
9: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है।

0: जीवन रेखा, समझे?
1: सालू मरता थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर।

0: करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं

0: तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपके सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग 2 गुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि

0: उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 11 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
2: Bharat aur Cyprus ke beech ye strategic partnership dono deshon ke financial aur services hub ko jodkar कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: President of Cyprus Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. The President of Cyprus is on a 4-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.D. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha bi-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The bi-poll will also be held on the 18th of next month. Union Home Minister Amit Shah has said the government

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आपके पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन के साथ मैं आपके साथ हूँ, आपके हम सफर हेमा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:11 हो गए हैं और शाम 4 बजे तक आपके साथ रहेंगे हम। कहिए कैसे हैं आप? आप कहेंगे भाई घर के अंदर हैं तो ठीक है, जैसे मैं स्टूडियो में हूँ तो अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं और हमें सुन रहे हैं तो ज्येष्ठ माँ की जो तपिश है उसका आप जरूर आनंद ले रहे होंगे। भाई जेठ की जो दोपहरी है ना, उसका वर्णन चाहे उपन्यासकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हों या कवि सम्राट बिहारी लाल जी, सभी की रचनाओं में बहुत ही खास जगह उसे मिली है जेठ की दोपहरी के वर्णन को। अब ये महज असुविधा के रूप में नहीं बल्कि नवीनीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के रूप में, जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है, लू की लहर होती है, वो इसलिए क्योंकि सूर्य जब अपने चरम पर पृथ्वी से नमी को वाष्पित करता है तब जीवनदायिनी मानसून की वर्षा के लिए ही भूमि तैयार हो रही होती है। तो बस हमने भी अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है और एक भूमि तैयार कर दी है, भूमिका तैयार कर दी है बारिश सदाबहार गीतों की।

आप जानते हैं, आप हमें मेल भेजते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868686753। आप अपने पसंद के गीत के बोल लिखें और फिल्म का नाम लिखें, हो सके तो जरूर बताएं कि ये गीत आप क्यों सुनना चाह रहे हैं। मन भावन में आप सभी की फरमाइशों का बहुत बहुत स्वागत है।

एक बार फिर से स्वागत है आपका मन भावन प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ हेमा। बहुत सारे हमारे लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, या कहें कि प्रोग्राम के पहले से ही। तो दीपेश वर्मा, स्वरूप आनंद सरजल, मास्टर अशोक कुमार, किशन वंजानी, राधेश्याम दीवानगन, मोहम्मद फरमान, बहुत सारे हमारे लिसनर्स साथ हैं जिनके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। कुमकुम, अनिल मोहन, तुलसी मस्कीन, किशन कौशल्या, कमलकांत गुप्ता। तो अगली फरमाइश हम अब ले लेते हैं गीत की, और ये कहते हैं कि मैं महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, आप उनका ये गीत मुझे ज़रूर सुनवा दीजिए जो है फिल्म सुर से। और ये हैं विनोद करोलबाग से, इनका मैसेज हम तक पहुंचा है, तो बहुत ही प्यारा गीत है, आइए सुनते हैं ना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं और मन भावन में आप अपनी ही पसंद के गीत हम तक पहुंचा रहे हैं और इस फरमाइश को पूरा कर रहे हैं हम एफएम गोल्ड पर। यकीनन सभी की फरमाइश तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके नाम शामिल कर लें। फरमाइश अगली पूरी करने से पहले कुछ नाम मैं ले लेती हूँ और उससे पहले आपको बता देती हूँ कि कहाँ आपने अपनी फरमाइश भेजनी है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं 9868868753। मैं हेमा आपके साथ हूँ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारे साथ बहुत सारे मैसेजेस हैं, मास्टर खिल्लू परवेज, हरजिंदर शिंदा, फारूक अली खान, संदीप मक्कड़, जग्गर राम साहू, लालगिरी, दिलीप रामेकर, सतीश अनेजा और धर्मेंद्र चीपा। इसके अलावा मैसेज आया है संजय साहू पोटियाक का और सलीम अख्तर का, फारूक अली खान, आर्यन वर्मा, विजय सुरलकर, नवी हसन, संजय ढींगिया, गुरमीत सिंह, मोहम्मद सईद अब्बासी, ताज मोहम्मद। और ये नाम बहुत जाने पहचाने हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब हमारे एफएम गोल्ड के प्रोग्राम्स के साथ रहते हैं और हमारी हौसला अफजाही करते हैं अपने प्यारे प्यारे संदेशों से। अगला जो गीत है वो मैं लूँगी कविता राधा और विश्वास की फरमाइश है। ये 1983 में फिल्म आई थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था रमेश बहल ने। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें अमिताभ बच्चन के साथ जिनत अमान थी, रणधीर कपूर के साथ टीना मुनीम थी, तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे क्योंकि फिल्म के जो गीत हैं वो सदाबहार हैं। आर डी बर्मन साहब का सदाबहार संगीत है फिल्म में और गुलशन बावरा के लिखे गीत। फिल्म है पुकार

0: नहीं है।
1: आपके मकान की गणना होगी, आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
2: मन भावन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, अपनी पसंद के गीत इसमें आप सुनते हैं। और अगला गीत शामिल करने से पहले, फरमाइश को पेश करने से पहले, अभी आपने सुना था आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गीत, और राहुल देव बर्मन जो थे उनका जो संगीत है, कोई भी हम गीत उनका प्ले करते हैं तो बहुत ही यूनिक होता था, क्योंकि बहुत ही एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक वो करते थे, तो बिल्कुल आसानी से पहचाना जाता है। अभी देखिए फरमाइशें भी एक के बाद एक उन्हीं के म्यूजिक की आ रही हैं, और अगली फरमाइश भी ऐसी है। राहुल देव बर्मन साहब जो थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे, अक्सर फिल्म संगीत में उन्हें नहीं प्ले किया जाता था, उनको भी अपने संगीत में शामिल करने का श्रेय उन्हें जाता है। और ओरिजिनल साउंड ट्रैक खास तौर पर, जैसे पानी की बूंद का, अगर 1942 लव स्टोरी आपको याद हो तो उसमें टपकते हुए पानी की जो बूंदें हैं वो ओरिजिनल साउंड ट्रैक उन्होंने रिकॉर्ड किया, यानी जब पानी की बूंद पड़ रही थी तो उसे रिकॉर्ड किया। तो बहुत जुनून था उनमें अपने म्यूजिक के लिए और कुछ नया करने में, तो ऐसा ही संगीत उन्होंने दिया फिल्म जमाने को दिखाना है फिल्म में। ये फिल्म

ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन फिल्म बहुत ही प्यारी थी। ऋषि कपूर और पद्मिनी कोहलापुरे, गीत तो बहुत ही प्यारे थे इसके, और बहुत हिट सुपरहिट संगीत था, आर डी बर्मन साहब का ही था, और लिखे थे गीत मजरू सुल्तानपुरी ने। अच्छा ये बता दूंगी किसने इस गीत को सुनना पसंद किया, और हम भी सुनेंगे। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण कथक नृत्यांगना गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

कुछ नाम शामिल करते हैं जो हमारे लिसनर्स हमारे साथ बने हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर. संजय डींगिया, गुरमीत सिंह, मोहम्मद सईद अब्बासी, शेख मूसा, फारूक अली खान. नाम आप बार बार मैसेज ना भेजें, एक ही बार बहुत होता है. अकरम हुसैन, प्रिंस जगन्नाथ पटेल, सोनम, बबलेश पंवर. बबलेश जी, आपका गीत हमारे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है, क्षमा कीजिए. और ये मैसेज है, राम कुमार रेवाड़, पुरुषोत्तम सिंह, बोधराज खोरवाल, अब्दुल गफार, एसएम जावेद, अब्बासी, जय जय. बहुत सारे आपने मैसेज हमें भेजे हैं, एक ही बहुत है, हम पढ़ते हैं सब मैसेजेस, आप चिंता ना करें. एचआर पांड्या साहब, आप कह रहे हैं कि आपका नाम शामिल नहीं हुआ, बिल्कुल आपका नाम शामिल हो गया है. उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, ठीक है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. और मैसेज भेजा है बरजिंदर विश्वकर्मा, दिगंबर गौड़, अनंत वाधे या वाड़े, उम्मीद करती हूँ मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया होगा, भारत भूषण. और मैसेज है नवीन, और जो अब गीत है

वो हम सुनवा रहे हैं किसके पसंद, किसकी पसंद का। तो उससे पहले बता दूं, ये एक रोड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म का गीत है। अब रोड एडवेंचर पे बहुत कम फिल्में जो हैं वो बनती हैं, आप जानते हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा थी, ये भी फिल्म 90s में आई थी, 1997 में, और इसे राम गोपाल वर्मा ने निर्देशित किया था और लिखा था। तो बिल्कुल आप पहचान गए होंगे, दौड़ फिल्म का ये गीत है, संजय दत्त, उर्मिला मातोंडकर, और इसमें सुपरहिट म्यूजिक था AR रहमान साहब का, और आवाज़ें जो थी वो सदाबहार हमारी आशा जी की और उनके साथ यशुदास जी की। तो ये गीत जो है ये पुनीत और परिक्रमा ने दिल्ली से, कौन सी जगह दिल्ली है ये नहीं लिखा आपने, तो जो आपने गीत फरमाइश किया है ज़रूर सुनते हैं हम सब और इन्जॉय करते हैं।

जल्दी से कुछ मैसेज ले लेती हूँ। हमारे साथ हैं सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली, सैयद मसरूर और मैसेज भारत भूषण का भी आया है, दिलावर खां, महिरा मलिक और रोजी डी कैस्ट्रो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए, हमें ढेर सारे मैसेजेस भेजने के लिए और इस मन भावन को पसंद करने के लिए।

शाम 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और मैं हेमा अभी के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ। मिलूंगी आपसे 4:10 पर। सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। ट्विशा शर्मा 12 मई को कटारा हिल्स स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनके सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है ताकि युवाओं में इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। प्रेगाबालिन की बिक्री अब केवल पंजीकृत चिकित्सक से जारी वैध पर्चे के आधार पर ही की जा सकती है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए अगरतला रानी कमलापति स्पेशल रेलगाड़ी संख्या 01665 के नियमित संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी अब 11666 और 11665 अगरतला रानी कमलापति एक्सप्रेस के नाम से नियमित रूप से चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से सांसद विप्लव कुमार देव को इस संबंध में सूचित किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी जानकारी आप तक पहुंचानी है दोस्तों। एक रोगी हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता है और जो इच्छुक रक्त दाता हैं उन्हें जल्द से जल्द संपर्क करें, लेकिन पहले आप जान लें उन्हें कौन से ब्लड ग्रुप की जरूरत है। ए बी पॉजिटिव, तो जिनका ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर। आप नोट कर लीजिए मोबाइल नंबर 8447958030। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, 8447958030।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: cattle, leveraging genetic resources from accelerated genetic improvement of linseed using comprehensive genomics and phenotyping approaches. The position offers a remuneration of ₹20,000 plus 27 HRA per month. Candidates with BSc graduation in biological sciences, agriculture or related subjects are eligible to apply. Interested applicants should submit their applications with supporting documents before the interview schedule on 29th May 2026. Complete details available on the Institute's website, that is at www.iari.res.in. The Lal Bahadur Shastri Krishi Vigyan Kendra under the Deen Dayal Research Institute and sponsored by the Indian Council of Agricultural Research has invited applications for the post of an assistant, program assistant computer, stenographer grade 2 and driver under an ICAR funded project in Gopalgram, Gonda, Uttar Pradesh. The post carry pay scales from level 3 to level 6 as per the 7 CPC. Candidates must possess qualifications ranging from matriculation to bachelor's degree along with relevant experience in accounting, computer application, stenography or driving, depending on the post applied for. The maximum age limit is 30 years. Applications must be submitted within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website at www.gonda.kvk4.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित डॉक्टर अंबेडकर चेयर कुछ पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम हम आपको बता दें, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर, ये है 5 वर्ष की अवधि पर आधारित और पदों की संख्या 1 है। श्रेणी होगी खुली हुई श्रेणी है ये। दूसरा पद है डॉक्टरल अध्येता का और पदों की संख्या यहाँ पर है 2, श्रेणी खुली हुई है। पात्र उम्मीदवार जो पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन पत्र के साथ 10 जून 2026 तक उन्हें भेज देना है। इस विषय के विकल्प तौर पर पूर्ण आवेदन पत्र आप भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं jnujaipur.ac.in/dr-ambedkar-chair। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं jnujaipur.ac.in पर। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए एससी एसटी एनसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है। सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए। गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं, निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। मानव संसाधन अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी 1 ही है, 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत 1 स्थान यहाँ पर रिक्त है, 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है। सहायक सिस्टम विश्लेषक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, 1 स्थान रिक्त है 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां यहां पर भी 1 है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, 1 स्थान रिक्त है। और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, 1 स्थान रिक्त है 35 वर्ष, इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो है उसकी जानकारी आपको दें, अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां हैं 1, अधिकतम आयु

0: सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर 1 है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां 1 है और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है, www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारी आप ले सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी और आर्थिक जगत पर भी होगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन, और सेगमेंट होगा डेडलाइन जिसमें आज बात होगी जैव विविधता, यानी इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो छोटे से लेके बड़े जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, हम सभी रहते हैं, आज का दिन उन सब के नाम है, तो इसके बारे में भी बात होगी। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ है अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो जागृति, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 FM गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Jagriti Sharma. And well listeners, Sherlock Holmes remains enduringly popular because of his captivating personality. Secondly, his brilliant method of using logic and science to solve mysteries. And thirdly, the relatable friendship he shared with Dr. Watson. Yes, we are talking about Sherlock Holmes because Sir Arthur Conan Doyle celebrates his birthday today. And Sir Arthur Conan Doyle remains globally popular because firstly, he created Sherlock Holmes, one of the most adapted and enduring fictional characters in history. Secondly, his works revolutionized the mystery genre by introducing early forensic techniques. And lastly, his dynamic engagement writing style that has captivated audiences for generations. And we shall talk about him later in a program. But first, we begin with the news headlines at this hour.
1: जी, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना।
2: इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस बायनियर इलेक्शंस फॉर 24 राज्यसभा सीट्स फ्रॉम 10 स्टेट्स ऑन द 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
1: सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBI के फैसले के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
2: IMD issues red alert for severe heat wave of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow.
1: और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से।
2: And now listeners, it's time for a segment Dateline India in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about International Day for Biological Diversity. Well, Jagriti, every year May 22nd is marked as the International Day for Biological Diversity by the United Nations.

0: And this day serves as a reminder of the incredible diversity of species, ecosystems, and genetic resources that make a planet unique. Biodiversity is the foundation of our food, water, air, and overall well-being. And the increasing rate of species extinction, habitat loss, and degradation poses a significant threat to biodiversity. And the International Day for Biodiversity aims to raise awareness about these challenges and promote efforts to protect and conserve biodiversity. And the theme for this year's International Day for Biological Diversity is Acting Locally for Global Impact. And this theme emphasizes that reversing global biodiversity loss starts on a small local scale and relies heavily on the combined efforts of communities, local organizations, and individuals.
1: बिल्कुल. और जैव विविधता अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका उपयोग पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों और उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किया जाता है जिसमें सब मिलकर रहते हैं, आपस में मेलजोल रखते हैं और फलते फूलते भी हैं. जैव विविधता प्रजातियों के बीच, प्रजातियों के भीतर और पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विविधता है. जैव विविधता में ऊंचे ऊंचे रेडवुड पेड़ों से लेकर सूक्ष्म एक कोशिकीय शैवाल तक सब कुछ शामिल हो सकता है जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना असंभव है. जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे पर कई बार निर्भर भी होती हैं. जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि जंगल जो हैं जानवरों का आवास हैं, जानवर पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, कई जानवर दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. पौधों को बढ़ने के लिए स्वस्थ मिट्टी की आवश्यकता है. कवक जीवों को विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. मधुमक्खियां और अन्य कीट पराग एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं और इसी से पौधों का प्रजनन संभव होता है. जैव विविधता कम होने पर ये जो हम एक साइकिल देखते हैं आपस में जो जुड़ा हुआ है वो संबंध कमज़ोर होने लगते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये संबंध टूट भी जाते हैं और इससे पारिस्थितिकी तंत्र की जो सभी प्रजातियां हैं इनको नुकसान भी होता है. और अधिक जैव विविधता जहां पर होती है जिस भी पारिस्थितिकी तंत्र में और जहां पर कम प्रजातियां हैं जिस किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो जो अधिक विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है वो अधिक स्थिर होता है और आपदाएं वहां कम आती हैं और वो उसके लिए और अधिक प्रतिरोधी बन जाता है.
0: एब्सोल्युटली जागृति. एंड बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ. Plants, for instance, are the only source of oxygen and also provide food, medicine, fiber, etc. Plants, fungi, and worms keep the soil fertile and water clean. And as biodiversity decreases, these systems break down. And biodiversity loss is a decrease in the number of particular species in a certain habitat. Loss of biodiversity can lead to extinction of plant and animal species. Around 1 million species already face extinction, many within decades, unless urgent action is taken, and one out of every 8 living species is in danger of extinction.
1: बिल्कुल. जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का सबसे अनमोल खजाना है. छोटे कीड़ों से लेकर विशालकाय पेड़ों तक सभी जीवों के आपसी संतुलन और निर्भरता को दर्शाता है. और देखा जाए तो कुछ पंक्तियां अगर इस पे हम देखें कि अंबर से लेकर पाताल तक फैला जीवन का संसार, छोटे कीड़े और विशालकाय जीव सब करते प्रकृति का श्रृंगार, कोई उड़ता नभ में उन्मुक्त, कोई तैरता सागर की गहराई में, हर एक जीव की अपनी कहानी जो बसती है प्रकृति की इस पनाही में. और ये जो लगातार अभी हाल ही में हो या फिर अतीत में हो, कीमती प्रजातियां जो हैं इनका अंधाधुंध दोहन हो रहा है और उनके आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं. उदाहरण के लिए पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं जैसे कि डोडो पक्षी, ग्रेट ऑक, पैसेंजर कबूतर और गौरैया भी. अभिषेक, अगर आप गौर करें तो बहुत कम हो गई है.
0: Absolutely.
1: बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अभी जो शहरों में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं या कह लीजिए ये टावर्स हैं उनकी वजह से अब वो एक तरह से नष्ट हो गई, हमें दिखती ही नहीं है. पृथ्वी की वैश्विक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जबकि ये जो प्रजातियां हैं ये बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं. जैव विविधता के नुकसान से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है जो आजकल हम देख रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव लगातार हो रहा है, सर्दियां होती है तो सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं कहीं पर,

0: मतलब क्लाइमेट चेंज है और जो डिजास्टर्स हैं बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जैव विविधता के बीच जो असंतुलन पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है उसके लिए।
1: Absolutely. So to wind up our discussion today, Jagriti, biodiversity is vital for sustainable development and it plays a crucial role in providing ecosystem services such as clean air, water, pollination, soil fertility and climate regulation. And the International Day for Biodiversity emphasizes the link between biodiversity conservation and achieving the sustainable development goals. Private organizations, government institutions, NGOs and individuals should all join hands to protect biodiversity, which is vital for the sustenance of mankind. And every day we have to be very sensitive towards biodiversity so that it survives and supports life on the planet, isn't it, Jagriti?
0: बिल्कुल। और अगर बात करें हम कि वर्तमान में जो मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता को गंभीर खतरा हुआ है, इसके कुछ कारण ये भी हैं कि प्राकृतिक आवासों का लगातार विनाश हो रहा है, अंधाधुंध शिकार है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जलवायु परिवर्तन की जैसे अभी हमने बात की है, प्रदूषण इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है, और विदेशी या आक्रामक प्रजातियों का जब प्रवेश बायोडायवर्सिटी में होता है तो ये भी इनके लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर खतरा पैदा करता है। और अगर हम बात करें कि जैव विविधता का हमारे लिए कितना महत्व है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है, ये पर्यावरण को स्थिर और संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खाद्य सुरक्षा और विविधता के लिए बहुत ज़रूरी है। कृषि फसलों में जो आनुवांशिक विकास है उसमें ये मदद करता है। औषधि निर्माण और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाएँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या पारंपरिक अगर उपचार जो होते हैं, वो हमें पौधों से, कवक और जीवों से ही प्राप्त होते हैं। और जलवायु नियंत्रण तो अपने आप में है ही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमें ऑक्सीजन देता है, और मृदा का स्वास्थ्य और निर्माण करता है, जल का शुद्धिकरण करता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र से मिलती है, और ये सब मिलकर हमारे आर्थिक विकास और आजीविका का साधन बनते हैं, रोजगार देते हैं। वैज्ञानिक और शैक्षिक जगत में भी इनका बहुत महत्व है, और कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
1: सो दैट कंक्लूड्स अ वेरी एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। And as part of a series, People's Padma on Akashvani, in an upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. And you can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है।
1: Yes, and straight away we start off with a story from the exciting state of Goa. And the two-day Shackathon Goa 2026 event concluded at Kalangut after showcasing Goa as an emerging destination for remote working, innovation and startup culture. And the event focused on promoting a new work from beach concept by bringing together technology, tourism and creative industries. We have more from a correspondent.
2: Shackathon Goa 2026 highlighted Goa's growing popularity among professionals looking for flexible and remote work opportunities. The event promoted Goa as a hub for tourism, technology, innovation and startups. Speaking at the event, Chief Minister Pramod Sawant said,
3: "The Gen Z looks at a career through the completely fresh lens. They refuse to be a typical office setup and they want the flexibility. It is a mental peace and environmental that sparks creativity. That opens the huge opportunity for the Goa, and we are creating the foundation for Goa become the India's preferred the work from home destination and work from beach, where the people can work with a beautiful view. The government is putting the system in place because the talent should find the opportunity here itself."
2: On this, IT and Tourism Minister Rohan Khaunte said,
4: "Goa Shackathon has been creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there but never been showcased. In the last 4 years we have been trying to do it through tourism. Now technology allows us to complement each other and take it one step ahead."
2: The initiative is expected to strengthen Goa's image as preferred destination for vacation events where work and vacation are

0: combined and innovation-driven activities. According to the state government, Goa has received 1.8 crore tourists in 2025, while international tourist arrivals increased by 10%. The first day of the event focused on artificial intelligence, robotics and startup creation, while the second day highlighted creator economy, AI-based design and digital storytelling. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Padji.
1: और गोवा से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद अब एक जिला एक नदी अभियान के जरिए जल संरक्षण और पर्यावरण पुनरुद्धार की नई कहानी लिख रही है। इसके जरिए नदियों को साफ करने, विलुप्त हो चुकी जलधाराओं को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया जा रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।
2: स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने कई विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए परिवर्तनकारी पहल की है। योजना के तहत पीलीभीत में 16 ग्राम पंचायतों में फैली 47 किलोमीटर के क्षेत्र में गोमती नदी का पुनरुद्धार किया गया। कई जगहों पर नहर को चौड़ा व गहरा किया गया। बुलंदशहर में VBG राम जी के जरिए 29 किलोमीटर में नीम नदी का पुनरुद्धार किया गया। इसमें किसानों ने भी स्वेच्छा से सहयोग किया। इस पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहना भी की थी। इसके साथ ही कारवां नदी और काली नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, जहां दर्जनों ग्राम पंचायतों में गाद निकालने, पौधरोपण और सामुदायिक भागीदारी से घाटों पर सिंचाई, जैव विविधता और सांस्कृतिक प्रथाओं को बहाल किया गया। इसी तरह छोटे छोटे नालों में बदल चुकी संभल की सोत नदी को जन भागीदारी से जीवन दान दिया गया। रामपुर में रेवती, नाहल और नीली तीन मौसमी धाराओं को पुनर्जीवित किया गया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना निदेशक जोगिंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में छोटी नदियों के जीर्णोद्धार से शानदार परिणाम सामने आए हैं। ये नदियाँ जो कभी लगभग विलुप्त हो चुकी थी, अपने वास्तविक रूप में लौट रही हैं। परिक्रमा के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: Yes, and Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory, turning the region's dark Himalayan skies into a week-long celebration of stars, science and tourism. We have more from a correspondent.
4: The second edition of Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory from May 20th to 26th, with the Tourism Department positioning Ladakh as a global hub for astronomy and astrotourism. Building on last year's two-day debut, the festival has been expanded into a week-long celebrations of the cosmos. The event is currently hosting expert-guided stargazing sessions, talks by scientists, astrophotography exhibitions and theme stall across multiple locations. Activities are being held in Nubra Valley, Sham Valley, Dras and Hanley, which houses the Indian Astronomical Observatory, one of the world's highest. Organizers says the festival showcases Ladakh's pristine environment and exceptionally dark skies, ideal for astronomical observations. The director of Tourism Department, UT Ladakh, Sringpaldan, has said that the ongoing event aims to boost tourism while spreading scientific awareness about astronomy and related fields.
5: Ladakh Astro Weeks manane ka jo main purpose hai, Ladakh ko global astro tourism pe le jane ka, aur dusra jo iska main objective hai, Ladakh mein jo scientific knowledge astro tourism, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो करने के लिए ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया था। लास्ट ईयर हमने दो दिन का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और इस साल हमने वीक लॉन्ग ये फेस्टिवल रखा है। इस फेस्टिवल को हमने नेक्स्ट 3 years के लिए डेट हमने फिक्स किया है, सो दैट वी कैन प्रमोट एट अ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक लेवल ऑल्सो। इस फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए OTM या SATE जितने भी ट्रेवल ट्रेड शोज फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे हमने इस फेस्टिवल को प्रमोट करने की हमने कोशिश किया है। हमारा तो यही कोशिश है कि लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म के फील्ड में ग्लोबल एक हब बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है।
4: ऑर्गेनाइजर्स बिलीव एस्ट्रो वीक विल हेल्प डाइवर्सिफाई लद्दाख टूरिज्म बाय अट्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमर्स, रिसर्चर्स, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स एंड ट्रैवलर्स सीकिंग यूनिक नाइट स्काई एक्सपीरियंसेस इन द हिमालयस। फॉर परिक्रमा, दिस इज सेतन टाशी फ्रॉम लेह लद्दाख।
1: लेह लद्दाख से चलते हैं चाय के बागानों की ओर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया और इस अवसर पर चाय बागानों में वर्षों से काम करने वाले चाय के श्रमिकों को सम्मानित किया गया। कई जगहों पर निशुल्क दार्जिलिंग चाय के स्टॉल लगाए गए। उद्योग कर्मियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के इसमें विशेष कार्यक्रम हुए। आइए जानते हैं और अधिक इस रिपोर्ट में।
6: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, तराई तथा डुअर्स में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का पालन किया गया। राज्य के इन इलाकों में करीब 400 से अधिक छोटे बड़े चाय

0: बगान है जहां लाखों श्रमिक काम करते हैं। सन 1853 से यहां के चाय बगानों में काम करने वाले श्रमिकों को याद किया गया। दार्जिलिंग पहाड़ में 87 पंजीकृत चाय बगान है जो प्रतिवर्ष लगभग 150 से 200 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करते हैं, जिसका करीब 50% उत्तम गुणवत्ता के चाय यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देशों में निर्यात किया जाता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दार्जिलिंग पहाड़ के लिए चाय केवल एक कप का प्याला नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, आजीविका तथा आर्थिक स्रोत का मेरुदंड है। इस वर्ष के चाय दिवस के थीम चाय को बनाए रखना तथा समुदाय को समर्थन देना है तथा इसकी प्रगति एवं समावेशिता को बढ़ावा भी देना है। इस भावना के साथ दार्जिलिंग के चौरस्ता, मिरिक, कालिम्पोंग, कर्सियंग, तराई, डुअर्स तथा सिलीगुड़ी के चाय ऑक्शन कमेटी भवन सहित कई स्थानों पर चाय के सेवन को संवर्धित करने तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु चाय कंपनियों तथा इससे जुड़े संगठनों ने चाय स्टॉल लगाकर लोगों को निशुल्क दार्जिलिंग चाय पिलाई। हजारों लोगों ने चाय के सेवन का आनंद लिया। कई चाय बगानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शन।
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
2: एंड इन मलेशिया मास्टर्स, इंडियन शटलर अश्मिता छालिया'स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट टू फॉर्मर यूरोपियन गेम्स चैंपियन लाइन Kjærsfeld of Denmark in the women's singles quarterfinals today. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.3% up today. The Sensex rose 232 points to close at 75,415, while the Nifty advanced 65 points to settle at 23,719. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The mid-cap 100 added 0.14%, while the small-cap 100 dipped 0.15%. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: 22nd of May 1772 is the birth anniversary of the great social reformer and the pioneer of the Bengal Renaissance, Raja Ramohan Roy. He was born in village Radhanagar of the Hooghly district in Bengal. By the age of 15, Raja Ramohan Roy had learned Bangla, Persian, Arabic and Sanskrit. He stood firmly against all sorts of religious bigotry and superstitions. This led to differences between Raja Ramohan Roy and his family. Following differences, he left the house and wandered around the Himalayas and went to Tibet. He travelled widely before returning home.
4: After his return, Raja Ramohan Roy's family married him in the hope that he would change. But this did not have any effect on him. Raja Ramohan Roy went to Varanasi and studied the Vedas and the Upanishads deeply. When his father died in 1803, he returned to Murshidabad. Ramohan Roy then worked as a money lender in Calcutta, and from 1809 to 1814, he served in the revenue department of the East India Company.
3: In 1814, Raja Ramohan Roy formed Atmiya Sabha. Atmiya Sabha tried to initiate social and religious reforms in the society. Raja Ramohan Roy campaigned for the rights of women, including the right for widows to remarry and the right for women to hold property. He actively opposed the sati system and the practice of polygamy.
4: He also supported education, particularly education of women. In 1822, he founded a school based on English education.
3: In 1828, Raja Ramohan Roy founded the Brahmo Samaj. Through it, he wanted to expose the religious hypocrisies. His efforts bore fruit when the sati system was abolished in 1829.
4: In 1831, he was given the title Raja by the Mughal king Akbar II, who sent him to the United Kingdom as an ambassador of the Mughal Empire to ensure

0: that the Bengal Sati Regulation 1829 banning the practice of sati was not overturned. In addition, Roy also petitioned the king to increase the Mughal emperor's allowance. On the 27th of September 1833, while on a visit to Britain, he died of meningitis in Stapleton near Bristol. Stapleton Groves is the place where he was laid to rest initially. Later, he was reinterred in the nearby Arnos Vale Cemetery in 1843, where his mausoleum still stands.
1: और आजादी के पहले के भारत के सफल व्यवसायियों में से एक गोविंद राम सिकसरिया की आज पुण्यतिथि है. उन्हें भारत के कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता था. कपास बाजार में सफलता प्राप्त करने के बाद गोविंद राम सिकसरिया ने अपने क्षितिज का विस्तार किया और सर्राफा तथा अन्य कमोडिटी बाजारों में भी प्रवेश किया. वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. कॉटन किंग गोविंद राम ने अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ रुपए समाज

0: जो पुण्यतिथि है उन्हें भारत के कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता था। कपास बाजार में सफलता प्राप्त करने के बाद गोविंद राम सिकसरिया ने अपने क्षितिज का विस्तार किया और सर्राफा तथा अन्य कमोडिटी बाजारों में भी प्रवेश किया। वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कॉटन किंग गोविंद राम ने अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ रुपए समाज कल्याण के लिए दान भी किए।
1: Yes, and Victor Hugo passed on this day in 1885. He was an immensely influential French romantic author, poet, playwright, and political activist. He is widely regarded as one of the greatest and the most versatile writers in French literary history. While revered in France primarily as a master poet, he achieved global fame for his legendary historical novels. His most famous works are the novels The Hunchback of Notre Dame in 1831 and Les Misérables in 1862. In France, Hugo is renowned for his poetry collections such as Les Contemplations and La Légende des Siècles, The Legend of the Ages.
0: 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ और सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद पांडे की आज पुण्यतिथि है। वे संस्कृत, हिब्रू और लैटिन सहित अनेक भाषाओं के असाधारण विद्वान थे। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, बौद्ध दर्शन, साहित्य, इतिहास लेखन और दर्शन आदि में गोविंद चंद्र पांडे को विशेषज्ञता हासिल थी। वर्ष 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: Yes, and Langston Hughes passed on this day in 1967. He was a pioneering American poet, novelist, and playwright. As a central figure of the Harlem Renaissance, Hughes is best known for being one of the first innovators of jazz poetry and for vividly capturing the realities of working-class black life in America.
0: काशी के प्रकांड विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े। रेवा प्रसाद द्विवेदी साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। इनमें विशेष है सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव।
1: Born on November 20, 1921, Chidananda Dasgupta passed away on this day. He was a film critic, historian, and a pioneer of the film society movement in India. A close association with the legendary filmmaker Satyajit Ray led to the formation of the Calcutta Film Society in 1947 with Sergei Einstein's classic Battleship Potemkin as his first screening.
0: और भारत में शायद ही ऐसा कोई खेल प्रेमी हो जो गामा पहलवान के नाम से परिचित ना हो। आज ही के दिन गामा पहलवान ने इस दुनिया में कदम रखा। उन्हें रुस्तम-ए-जमा पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। गामा पहलवान भारत में एक किंवदंती बन चुके हैं। शारीरिक ताकत के लिए जिस प्रकार आजकल दारा सिंह की मिसाल दी जाती है, इसी तरह से कुछ समय पहले तक गामा पहलवान का नाम लिया जाता था। अपने पहलवानी के दौर में गामा पहलवान की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय रहीं कि साधारणतः लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि गामा पहलवान वाकई में थे। गामा अपने पहलवानी जीवन में अजय रहे, जो किसी भी पहलवान के लिए आज भी असंभव है। ये गुण गामा को विश्व का महानतम पहलवान का दर्जा दिलाता है।
1: Yes, and Sir Arthur Conan Doyle was a prolific British writer and physician, best known for creating the legendary fictional detective Sherlock Holmes, like as we are mentioning in the beginning of our program, and his loyal companion Dr. Watson. Born on May 22, 1859 in Edinburgh, Scotland, he wrote 4 novels and 56 short stories featuring Holmes, which became massive milestones in the evolution of modern crime fiction. Though his legacy rests primarily on his master sleuth, Doyle was a versatile author who penned over 200 works, including science fiction, historical romances, poetry, and political essays.
0: हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु की आज जयंती है। मॉस्को के प्रमुख प्रकाशन गृह प्रगति और रादुगा प्रकाशन में लगभग 4 दशकों तक संपादक अनुवादक पद पर रहते हुए उन्होंने 100 से अधिक क्लासिक रूसी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भारतीय पाठकों को सुलभ कराया। और प्रोफेसर मधु मॉस्को रेडियो से भी जुड़े रहे। इन दो भाषाओं में विशिष्ट रचना के लिए उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। और आज हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण की पुण्यतिथि है। राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्म में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इनके काम के लिए विशेष तौर पर इन्हें याद किया जाता है। तो आइए उनकी शानदार फिल्मों से गीत आपको यहाँ सुनाते हैं।

लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में से एक थे। उनका नाम लक्ष्मण और जबकि उनके जोड़ीदार राम यानी कि राम सुरेंद्र थे। और राम सुरेंद्र की मृत्यु के बाद विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने अपने नाम के साथ राम भी जोड़ लिया और इस तरह से वे बन गए राम लक्ष्मण।

0: जुदा हो। इसके साथ ही अनुमति दीजिए जागृति और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंक रोक।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पूर्णिपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ोली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांड गांव, बरवाली, बरडांड, दाती ढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंता डांड, परसा डांड, पेटा, सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरीकादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4

0: प्रकार है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का जो रायपुर और सरायपाली केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात 9:30 पर आप सुनेंगे करेंट अफेयर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। क्रम सेहत में सुनिएगा दांतों की सेहत। इस विषय पर डॉक्टर विवेक लाथ से अनुष्का पंडित की बातचीत। इसके अलावा आप सुनेंगे क्रम अपनी पसंद। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में जल संरक्षण अपनावन, भविष्य ल खुशहाल बनावन, इस पर चर्चा। हेलो चौपाल में सुनिएगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। इस विषय पर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह चर्म रोग विशेषज्ञ मेकाहारा रायपुर से के द्वारा दी गई जानकारी। संचालन करेंगी सरिता साहू, प्रस्तुतकर्ता होंगी शशि प्रकाश पांडे। इसके अलावा आप सुनेंगे आज का प्रश्न। रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम की कलाकार होंगी शुभांगी भागड़देव। रात 10:00 सुनिएगा उत्कल भारती कार्यक्रम, कलाकार होंगे ब्रिजमोहन दास और साथी। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

कल रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती कल रात 9:30 पर। रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में कर्नाटक गायन चंगनाश्री सीपी माधवन नम्बूथरी का। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में कान से संबंधित समस्याएं एवं समाधान इस विषय पर डॉक्टर रूपा मेहता से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे दीपक हटवार। कल सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम बातों बातों में। प्रस्तुतकर्ता होंगे विकल्प रंजन शुक्ला। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे योगेंद्र कुमार बेलचंदन और साथी और शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम के कलाकार होंगे खुशीदास मानिकपुरी और साथी।

सुबह 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:05 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 11:40 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित छन्नूलाल मिश्र का ठुमरी गायन सुनिएगा। राग होगा मिश्र देश। दिन में 12 बजे आकाशवाणी संग्रहालय से ये धारावाहिक आप सुनेंगे हमन आन छत्तीसगढ़िया। पंडमानी जनजाति पर केंद्रित, लेखक होंगे श्री एम ए रहीम, प्रस्तुति मोहन सी रामानी की होगी। दिन में 12:30 पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज की गोठ में पर्यावरण संरक्षण हमार पहली जिम्मेदारी, इस पर चर्चा। विशेष कार्यक्रम चौथे पन की सांझ आप सुनेंगे। आलेख व वाचन आशा शर्मा का, परिकल्पना एवं संपादन वीरभान साहू का। इसके अलावा आप सुनेंगे कामकाज की बातें और गीत संगीत। ये थे श्रोताओं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: खुद की कमियों को जान लेना सबसे बड़ी काबिलियत है दोस्तों, और वक्त रहते इसे सुधार लेना आपका सबसे बड़ा हुनर।
1: साथियों, हाजिर है आपके दो रेडियो दोस्त इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, सुकून भरी शाम में युववाणी कार्यक्रम लेकर। मैं आनंदिता शर्मा
0: और मैं अपेक्षा शुक्ला। तो स्वीकारे हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: क्या हुआ आनंदिता, लगता है तुम कुछ सोच रही हो।
1: अपेक्षा, मैं ये सोच रही थी कि आजकल हम दूसरों को समझने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को समझना ही भूल जाते हैं।
0: वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ये लगा है कि सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं?
1: अरे, ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है।
0: वाकई,
1: अक्सर हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वो हमसे बेहतर है।
0: सही कहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने आप में खास होता है। हर इंसान की अपनी एक अलग रुचि होती है।
1: जैसे किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना गाना, तो किसी को पढ़ना।
0: साथियों, वैसे तो हम अपनी जिंदगी में अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अनुभव लेते हैं कि कौन सा काम करने में हमें अच्छा लग रहा है और खुशी महसूस हो रही है, और कौन सा काम हमें बोझ लग रहा है।
1: तुम्हें पता है अपेक्षा, मेरे एक दोस्त को लोगों के सामने बोलने में ना बहुत डर लगता था।
0: तो फिर उसने क्या किया?
1: शुरुआत में उसने छोटी छोटी जगहों पर बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। आज वही दोस्त सबसे अच्छा वक्ता माना जाता है।
0: यानी कमजोरी हमेशा कमजोरी नहीं रहती, अगर इंसान उसे सुधारने की कोशिश करे तो।
1: पता है अपेक्षा, ऐसे कई लोग हैं जो डर की वजह से कभी कोशिश भी नहीं करते हैं।
0: हाँ आनंदिता, और यही वजह है कि फिर वो अपने आप को दूसरों से कम मानने लगते हैं।
1: तो साथियों, आप भी ये बात याद रखिए कि कभी भी डर के पीछे नहीं हटना है और अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है।
0: हाँ, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आपका आत्मविश्वास होता है दोस्तों, और याद रखें कि हर कोई अपने आप में खास होता है।
1: सही कहा अपेक्षा। वैसे आजकल विद्यार्थियों में भी यही समस्या है।
0: वाकई,
1: वह अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते हैं और अपनी कमजोरियों से दूर भागते हैं।
0: कई बार हम अपनी रुचि छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं और खुद से दूर होने लगते हैं दोस्तों।
1: इसीलिए अपनी ताकत पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारी पहचान बनती है।
0: वाकई, बिल्कुल सही कहा नंदिता। दोस्तों, आज आप अपनी कमजोरी और ताकत को पहचानिए और वही काम करिए जिससे आपको खुशी मिले।
1: लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचाने कैसे?
0: ये तो बहुत ही आसान है। जहाँ हमें बार बार परेशानी होती है, जहाँ हम जल्दी से हार मान लेते हैं, वही हमारी कमजोरी छिपी होती है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हर कमजोरी को मेहनत से हम सुधार भी तो सकते हैं।
1: एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, अगर आपको

0: अपनी कमजोरी पता है तो समझिए आप आधी जीत हासिल कर चुके हैं।
1: साथियों, हमें अपनी कमजोरियों से भागना नहीं है, उसे पहचान कर उस पर जीत हासिल करनी है।
0: अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान कर ही आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और साथियों, याद रखिए, खुद की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही करनी चाहिए।
1: क्योंकि हर इंसान अपने आप में खास होता है, वो कहा जाता है ना, खुद को समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है दोस्तों।
0: हाँ दोस्तों, जब इंसान अपनी कमजोरी से लड़ना सीख जाता है और अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू कर देता है, तब कोई मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।
1: और इसी हौसले, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को दर्शाता है ये गीत।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से।
1: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
0: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: साथियों, आगे बढ़ते हैं क्रम सेहत की ओर, जिसमें आज आप जानेंगे दांतों की सेहत। डॉक्टर विवेक लाद से अनुष्का पंडित की बातचीत।
7: मुस्कान सिर्फ होठों की हलचल नहीं बल्कि आत्मविश्वास की भी पहचान है, पर ये मुस्कान तभी खिली खिली रहती है जब हमारे दांत सेहतमंद रहते हैं। श्रोता साथियों, आकाशवाणी के स्वास्थ्य आधारित सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस क्रम का उद्देश्य है आपके तन और मन की पूर्ण देखभाल का और आपको समय समय पर सही जानकारी देने का, ताकि छोटी सी भी लापरवाही बड़े रोग का कारण न बने। आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे दांतों की सेहत पर, क्योंकि एक स्वस्थ मुस्कान ही स्वस्थ जीवन की असली पहचान है। साथियों, आज हमें सही दिशा देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर विवेक लाथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
8: धन्यवाद अनुष्का।
7: आपसे सीधे अगर पहला सवाल पूछूं, जो मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा है कि लोग कई दांत की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, कई दर्द का सामना कर रहे होते हैं, पर फिर भी डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह है?
8: सबसे पहले मैं सभी श्रोतागण को अपना नमस्कार अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। और ये एक सबसे मुख्य सवाल है, लोग डरते हैं आपके नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी की कमी या पुराना कोई गलत अनुभव रहा हो, या बचपन में ऐसा कोई अनुभव रहा हो कि वो डेंटिस्ट के पास गए हो और उनका इलाज के समय उनको दर्द हुआ हो, या कुछ ऐसा कारण हुआ होगा जिसकी वजह से हम आगे के जीवन काल में उसको अवॉइड करते हैं
7: जी।
8: तो यही एक मुख्य कारण है। मगर मेरी सलाह हमारे श्रोतागण को ये रहेगी कि समय समय में या शुरुआती दिनों में या शुरुआती लक्षणों में अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमारा इलाज कम दर्द, कम खर्च और आसान तरीके से किया जा सकता है।
7: बिल्कुल सही कहा आपने। बचपन से ये बात सुनी हुई है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, और लेकिन ब्रश तो करना चाहिए पर इसका असली और सही तरीका क्या है?
8: आपने बिल्कुल सही सुना है अनुष्का कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए
7: जी।
8: उसका प्रमुख कारण ये है कि एक हमें उठने के बाद एक बार जो हम नॉर्मल ब्रशिंग करते हैं सभी लोग, ब्रशिंग करना और जीभ को भी साफ करना उसमें आता है। और दूसरा होता है कि हम रात को जब सोने जाते हैं तो जो सोने का समय है, जो 7-8-9 घंटा जो भी है, उन घंटों में जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया है वो पनपते हैं। अगर वो उस समय अगर हम ब्रश करके या मुंह को साफ करके सोते हैं, माउथ वॉश करके, फ्लॉसिंग करके, बहुत सारे तरीके हैं, हम आगे इसमें विचार कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मुंह में बैड बैक्टीरिया है
7: जी,
8: उनका पनपना कम हो जाता है
7: जी।
8: तो इसलिए हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। और जो ब्रश करने का सही तरीका है आपने पूछा मुझे
7: जी,
8: तो ब्रश करने का सही तरीका हमें सामने

0: दांतों में ऊपर नीचे के तौर पे ब्रश करना चाहिए, हमें आढ़ा ब्रशिंग नहीं करना है सामने में।
1: जी
0: पीछे के दांतों में 45 डिग्री ब्रश का मुंह को रख के उसे गोल गोल घुमाते हुए ब्रश करना है, और हर जगह में हमें कम से कम 20 बार उसको ब्रशिंग करना है। और कुल मिला के ये पूरा प्रोसेस करते हुए 1 मिनट से 1.5 मिनट में ये ब्रशिंग
1: हो
0: संभव है।
1: जाएगी।
0: और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके ब्रश को आपको हर 2 से 3 महीने में बदलना है।
1: जी
0: सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रश
1: जी
0: को इस्तेमाल करना है,
1: जी
0: हार्ड ब्रिसल्स के ब्रश आपके दांत में घर्षण करके उसको खराब करते हैं।
1: जी आपने अभी ये जो बात कही, आपने भी बैड बैक्टीरिया के बारे में कहा, और ये हमने भी सुना है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे जो मुंह है उसमें हमारे पास गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और इसलिए तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा भी है कि सुबह उठते ही तुरंत ब्रश करना चाहिए, या पहले कुछ खा पी लेना चाहिए फिर ब्रश करना चाहिए, इससे जुड़ी क्या बात आप कहेंगे?
0: आज के इस इंटरनेट के दौर पे हम सब अधिक जानकारी के साथ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और कोविड ने हर आदमियों को बहुत कुछ सिखा दिया है।
1: जी
0: तो हर आदमी आजकल सुबह गर्म पानी और उसमें कुछ कुछ डाल के पी रहा है, और गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया आज घर घर में एक
1: विषय है,
0: विषय है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत सही बोला आपने। तो इस पे जो मेरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा,
1: जी
0: गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया बिल्कुल सही बात है, होते हैं, मुंह में भी पनपते हैं। मुंह हमारे शरीर का दरवाज़ा है,
1: जी
0: और हम सुबह उठ के उसको साफ़ करना है,
1: जी
0: ब्रशिंग करना है। आप सुबह उठ के जो गर्म पानी लेते हैं या वो लेते हैं, वो आप अपने बाकी जो चिकित्सा पद्धति है उसके अनुसार ले सकते हैं। दांतों में जो चीज़ें करना है, हमें ब्रशिंग करना है, वो सही तरीके से करेंगे तो दांत आपके मेंटेन रहेंगे।
1: जी
0: अदरवाइज आप मुंह में सोडा, नमक, नींबू,
1: हाँ हाँ
0: ये
1: बिल्कुल, हमने
0: घरेलू
1: ये सुना
0: उपाय
1: है।
0: ये सब करेंगे तो दांतों को लंबे समय में नुकसान पहुंचेगा। और जैसे कि हम वार्ता से पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे कि दतून वगैरह का
1: हाँ
0: इसमें क्या
1: बिल्कुल,
0: उपयोग रहता है, कि भाई हमारे
1: हाँ
0: दूरस्थ इलाकों में आज भी प्रचलन है कि दतून करना चाहिए। मैं
1: जी
0: बिल्कुल उस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई
1: जी
0: दतून हम भी किए हुए हैं बचपन में। पहले दंत चिकित्सा सेवाएं उतनी नहीं हुआ करती थी, और आज भी जानकारियों की जैसे कमी है लोगों में। दतून करना, नीम का दतून करना, उसमें पहले ब्रश का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तब
1: जी
0: लोगों के पास ब्रश करने के लिए कोई ना कोई सामग्री बनाते थे। जैसे
1: जी
0: पहले चीज़ें बहुत सारी बदलते जा रही है, तो ब्रश का एक पुराना प्रकार हम दतून को कह सकते हैं।
1: जी
0: नीम का दतून का फायदा यह है कि नीम के दतून को जब छीलते तो उसके जो कोना होता है डंठल का, वो
1: जी
0: एक ब्रश के तौर पे हो जाता है, मगर उसमें जो घर्षणता होती है वो इतनी अधिक होती है कि आपके दांत में खांचे बन सकते हैं, जिसे हम अब्रेजन्स बोलते हैं,
1: अच्छा
0: जो बाद में किनकिनाहट या झंझनाहट का कारण बन सकती है, और बाकी उसके ऊपर कीड़े लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो दतून एक अब्रेजिव है
1: जी
0: जिसे हमें आज की डेट में नहीं करना चाहिए, एज अ डेंटिस्ट मैं
1: बिल्कुल
0: बोलूँगा।
1: सही बात है।
0: बाकी आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या जो भी वो मानते हैं, वो मान्यताओं को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके बारे में मेरा कोई टिप्पणी नहीं है।
1: जी क्योंकि हम दांत के ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, पर इस समय हमारी कुछ बुरी आदतें होती हैं, चाहे वो तंबाकू से जुड़ी हो, पान सुपारी से जुड़ी हो, चॉकलेट से जुड़ी हो, हमारी आदत में शामिल हो जाता है, तो ये हमारी दांतों की सेहत को किस रूप में हानि पहुंचाता है?
0: बिल्कुल अनुष्का, हर उम्र के साथ एक आदत है या खराब आदत है जो रहती है। जैसे बच्चों में चॉकलेट्स खाने की है, और हमारे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में गुटखा,
1: जी
0: तंबाकू, इसका
1: जी
0: प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। दो
1: जी
0: प्रकार के गुटखे होते हैं, एक स्मोक होता है, एक स्मोकलेस होता है।
1: अच्छा
0: दोनों ही दांतों को और सेहत को गंभीर रूप से ख़राब करते हैं। तंबाकू खाने वाले के मुंह में स्टेन्स होते हैं, फिर
1: हाँ
0: वो जो तंबाकू का पान मसाले का जो असर होता है, तो वो गम्स में स्वेलिंग ले आते हैं, मतलब मसूड़ों की समस्याएं उत्पन्न होती है।
1: जी
0: वो मसूड़ों की समस्याएं होते होते मुंह में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि वो एक गंभीर कैंसर का भी रूप ले सकती है।
1: जी
0: तो मेरा हमारे श्रोतागणों से ये निवेदन रहेगा कि भाई आप गुटखा का सेवन कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग करके डेंटिस्ट से मिलके आप

0: अपने इन गुटखों की आदत के बारे में भी जानकारी लेके उसको छोड़ा जा सकता है। आजकल बहुत सारे तरीके हैं। जो अल्कोहल होता है वो उससे डिहाइड्रेशन होते हैं, ड्राइनेस होती है, तो ड्राइनेस होने से मुंह में जो बैड बैक्टीरिया फिर वो बढ़ जाते हैं और मुंह में बदबू आना और पीलापन होना, उसके बाद फिर कीड़े लगना, और ये एक विशियस साइकिल है जो गोल गोल गोल गोल, एक चीज खराब होती है तो फिर बाकी चीजें अपने आप खराब होने लगती है।
1: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए बेहतर है कि हम अच्छी आदतों को अपने अंदर डालें और बुरी आदतों से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पीछा छुड़ा सकें। जब मैंने ये सोचा कि आज आप हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं और मैंने पूछा कि आप, मेरे दोस्तों से पूछा कि आपका सबसे ज़्यादा सामान्य प्रश्न जो आप पूछना चाहें, तो सब ने सिर्फ एक ही प्रश्न मुझसे पूछा और वो था कि हमारे दांतों में ना पीलापन आ जाता है और इस पीलेपन को दूर करने के लिए जैसे कि आपने बताया पहले भी कि हम टूथपेस्ट में नमक डालते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, तो इसका सही उपाय क्या है? दांतों से पीलापन किस तरह हटाया जा सकता है और सबसे पहले पीलापन आता क्यों है?
0: मैं तो ये बोलूंगा, अनुष्का आपने काफी सर्वे और तैयारी के साथ मेरा इंटरव्यू लिया है और अच्छी बात है कि आपने आम लोगों से पहले जानकारियां जुटाई कि भाई आपकी क्या समस्या है, ताकि हम आम लोगों तक उनकी समस्याओं के बारे में बात कर सके। अब बात करते पीलेपन की, तो दांतों का पीलापन दो प्रकार के हो सकता है कि जो अधिक, ये एक कलर कॉन्ट्रास्ट और ह्यू, एक हम कलर के तीन डेफिनेशंस होते हैं
1: जी,
0: ये एक कलर कॉम्प्लेक्शन का फर्क होता है।
1: अच्छा।
0: दूसरा दांतों का पीलापन पड़ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई लोग हम जो घरेलू उपाय करते हैं कि दांत को चमकाना है, आज पार्टी में जाना है, आज शादी में जाना है, तो हम, या हमारी पुरानी मिथक है कि भाई नींबू लो, सोडा लो, नमक लो, उसको घिसो, हमारे भी दादी मम्मी हमको पहले कराए हुए हैं, तो उसको हम घिसते तो उसके बाद एक दांत में अलग सी चमक आ जाती है और हमारे दांत एकदम सुंदर चमकने लग जाते हैं। तो वो टेम्पररी चमक है। आपकी दांतों की जो पहली परत होती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, वो हमारे पूरे शरीर की सबसे हार्डेस्ट लेयर है और हर हार्डेस्ट लेयर एसिड में धुलने से उसमें परत की कमी आती है। तो वो जो परत है, दिन ब दिन हम बार बार अगर नींबू सोडा या टूथपेस्ट में नमक डालेंगे तो नमक एक रेतीला पदार्थ है
1: जी।
0: और रेत को अगर आप कोई चिकनी सतह में अगर रगड़ेंगे या घर्षण करेंगे तो उसमें स्क्रैचेस आएंगे और लाजमी कि अगर स्क्रैचेस आएगा तो उसमें प्लाक जमेगा, प्लाक जमेगा तो फिर आप उसको फिर साफ करेंगे। ऐसे करके हमारी पहली परत को अगर आप जब खत्म कर देते हैं इनेमल को, तो हमारे दांतों की दूसरी परत जिसे डेंटिन बोलते हैं वो पीले रंग की होती है। तो किसी का अगर पीलापन बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो इन सब चीजों का प्रयोग अगर कर रहे हैं, इसका सबसे आसान उपाय है, अगर आपके दांत पीले आपको लग रहे हैं आप डेंटिस्ट के पास जाइए। आजकल बहुत सारे पीलेपन की नए नए इलाज आ गए हैं, ब्लीचिंग है, दांतों की सफाई है, ये सब चीजें हैं और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट हर पेशेंट से अलग है। तो हमको ये नहीं देखना है कि वो अनुष्का ने ब्लीचिंग कराया उसके दांत व्हाइट हो गए तो मैं घर में ब्लीचिंग कर लूं।
1: बिल्कुल।
0: तो सही तरीका जानकारी के लिए आपको हर 6-8 महीने साल भर में आपके कोई दोस्त हो या जो भी नजदीकी डेंटिस्ट है उसे मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल, मतलब कुछ समय की खूबसूरती लंबे समय की परेशानी बन सकती है हमारे सामने।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा एक और आम शिकायत मेरे सामने आई कि हम तो समय पर ब्रश भी करते हैं, हम जीभ का भी ध्यान रखते हैं, दांतों का भी ध्यान रखते हैं, पर फिर भी हमारे मुंह से बदबू आती है कभी कभी, तो ये एक सामाजिक रूप से भी हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है ये समस्या, तो इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था आपका अनुष्का। इसमें जो मुंह से बदबू आना, ये भी एक आम क्वेश्चन है या आम सवाल है लोगों के बीच में। इसका सबसे प्रमुख कारण है दांतों में हमारे या तो कीड़े लगे हैं या हमारे दांतों में प्लाक जमा है या हमारे दांतों में जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं पत्थर नुमा जमा रहते हैं।
1: अच्छा।
0: ये हम दिन पर दिन अगर सफाई नहीं करते हैं, या एक और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, जो पेट की बीमारियां होती है।
1: अच्छा।
0: पेट की बीमारियों की वजह से भी मुंह में बदबू आती है।
1: ओके।
0: आप डेंटिस्ट से पहले मिल लीजिए, क्योंकि अगर कैविटी है और दांतों में अगर कुछ जमा हुआ है और कचरा जमा हुआ है तो उसका सफाई करके निदान पाया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद भी अगर ये वो इसमें बार बार बदबू की प्रॉब्लम आ रही है तो वो पेट की शिकायतों से भी हो सकती है। तो आप अपने डेंटिस्ट से या अपने डॉक्टर से मिलके इसका निराकरण कर सकते हैं।
1: मतलब कहने को ये मुंह से किसे आ रही है, बट इसका जो संबंध है वो हमारे पेट से भी हो सकता है। मैंने ऐसी जब

0: दांत से जुड़ी समस्याओं के बारे में सुनते हैं तो हमारी एक मुख्य समस्या हमारे सामने आती है, जिसके बारे में मैंने सुना है, ज़्यादातर सुना है, तो वो समस्या है पायरिया की। सबसे पहले तो पायरिया क्या है, इसके अलावा पायरिया हमारे क्या बहुत सारे शरीर की समस्याओं से जुड़ी है, जैसे मैंने सुना श्वास की समस्या से जुड़ी होती है, इसके अलावा हृदय की समस्या से भी क्या ये जुड़ी हुई है?
1: जी, आम जनों से पूछा जाए कि आपको कौन कौन सी दांत की बीमारियां मालूम है, तो उसमें कॉमन बीमारी जो लोगों के सामने आती है वो होती है पायरिया। हो गया, गांव गांव में, शहर शहर में लोगों को मालूम है पायरिया। पायरिया दांत के मसूड़ों की बीमारी होती है और दांत जिस हड्डी में बैठे रहता है उसकी बीमारी होती है। शुरुआत में जो कीटाणु रहते हैं वो हमारे मसूड़ों को खाते हैं और उसके और जो हम खाना खाते हैं उस मसूड़े में फंस जाते हैं, फिर कीटाणु उनको खाते हैं, तो धीरे धीरे कीटाणु हमारे मसूड़ों को और हड्डियों को गलाना शुरू कर देते हैं, इसी को हम पायरिया कहते हैं। पायरिया कर होने से दांत ढीले पड़ जाते हैं
0: जी।
1: और आपने जो पूछा कि भाई क्या पायरिया दांतों तक सीमित है या मसूड़ों तक सीमित है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं
0: जी।
1: रिसेंटली हमने एक केस देखा था और बहुत सारे केस पेपर आते, रिसर्च हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, उसमें देखा गया है कि भाई पायरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सेम बैक्टीरिया अगर किसी पेशेंट को हार्ट की बीमारी हुई है तो एंडोकार्डाइटिस करके एक बीमारी होती है,
0: अच्छा,
1: बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिससे हार्ट का फंक्शनिंग हैम्पर हो जाता है। तो यही बैक्टीरिया जो है वो हार्ट में किस तरीके से गए, वो आपके खून के माध्यम से मुंह से हार्ट तक गए या हृदय तक गए।
0: अच्छा।
1: तो हृदय रोग भी पायरिया की आगे की संबंधित बीमारी हो सकती है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि वो मुंह तक सीमित रहे।
0: पायरिया के क्या लक्षण है और किन कारणों से ये होता है?
1: पायरिया के लक्षण है, आप सबसे पहले मुंह से बदबू आना,
0: अच्छा,
1: दांतों के बीच में गैप आना
0: जी,
1: मसूड़ों का ढीला हो जाना, मसूड़ों से खून आना, ब्रश करते समय आपको खून आएगा, खाते समय आपको खून आएगा, हल्का हल्का खुजली नुमा या उस टाइप का आपको दर्द महसूस होगा
0: जी।
1: तो ये सब हमारे पायरिया के शुरुआती लक्षण हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप 6-8 महीने में एक बार अगर अपने डेंटिस्ट से मिल लेते हैं तो पायरिया को उसके शुरुआती लक्षणों में रोका जा सकता है या रिवर्सल पॉसिबल है।
0: बिल्कुल। आजकल एक शब्द और बहुत ज़्यादा सुनने मिलता है, वो है फ्लॉसिंग। ये फ्लॉसिंग क्या है?
1: फ्लॉसिंग जैसे हम ब्रशिंग बोलते हैं, जैसे हम ब्रश से दांत साफ करते हैं, वैसे ही दांतों को साफ करने के अन्य तरीके होते हैं। हमारे जो दांत को साफ करने के लिए ब्रश रहते हैं वो सभी कोनों तक नहीं पहुंच पाते या दो दांत के बीच की जो जगह है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए फ्लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पतला धागा होता है और आजकल अलग अलग डिजाइन में भी उपलब्ध है,
0: अच्छा।
1: तो उस फ्लॉस के धागे को हम डालते हैं, बट फ्लॉसिंग करने का सही तरीका भी आपको डेंटिस्ट के द्वारा ही बताया जाएगा और किस मरीज को फ्लॉसिंग करना है, किनको नहीं करना है, ये भी आपको डेंटिस्ट बताएंगे। नहीं तो फ्लॉसिंग को हम ज्यादा करेंगे तो हम अपने मसूड़ों को भी हार्म कर सकते हैं
0: जी। क्या फ्लॉसिंग से दांतों के बीच में जो गैप होता है वो बढ़ता है?
1: अगर गलत तरीके से फ्लॉसिंग किया जाए तो बिल्कुल वो गैप बढ़ता है। और अच्छा। मेरी ये मान्यता है कि हम जब तक किसी चीज को ना सिखाए, हमारे यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि भाई लोग तो कोई भी पन्नी या रैपर से भी दांत के बीच का साफ करते हुए आपको नजर आएंगे।
0: टूथपिक का भी इस्तेमाल,
1: टूथपिक का गलत इस्तेमाल करते हैं, टूथपिक का इन्वेंशन उसके लिए हुआ ही नहीं था, तो वो हम करते हैं। और वो आप इन चीजों का इस्तेमाल करके एक बार आपके दांत के बीच में जो कचरा फंसा है उसको हम साफ कर लेते हैं, मगर ये लंबे समय में क्या हो रहा है कि आपके दांतों को पूरी तरह से खोखला कर दे रहे हैं।
0: अभी आपने ना बड़ी रोचक बात कह दी कि टूथपिक का इन्वेंशन उसके लिए हुआ ही नहीं जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
1: तो टूथपिक का सही इस्तेमाल करना हमें सीखना चाहिए और उसकी जरूरत नहीं है आजकल, जो डेंटल फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है। तो आशा करता हूँ अगर आप सही समय में अपने डेंटिस्ट को दिखाएं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल। अगर हम बात करें आज सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में दांत से जुड़ी कई जानकारियां हमें दिखने मिलती हैं, बहुत से मिथ हमें सुनने मिलते हैं, तो आपने अभी तक सबसे खतरनाक मिथ जो सोशल मीडिया पे सुना हो वो कौन सा है?
1: मेरी प्रैक्टिस को 13-14 साल हो गए, मैंने जो सबसे ज्यादा बार जो मिथक सुना है, दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है,
0: अच्छा,
1: या आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है या दिखना बंद हो जाता है
0: जी।
1: तो ये एक सबसे बड़ा मिथक है। दूसरा मिथक है कि भाई घरेलू उपचार करने से दांत आपके साफ हो जाते हैं, तो साफ जरूर हो जाते हैं मगर उसकी जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो उसमें जुड़

0: आती है।
1: हाँ
0: मैं बताना चाहूंगा हमारे श्रोतागण को कि जो दांत को नस जो हम बोलते हैं, दांतों की नस आंखों की नस दोनों अलग है। इस
1: अच्छा
0: मिथक का मैं आपको जवाब भी देता हूँ।
1: जी
0: पहले के जमाने में 40, 45, 50 की उम्र के बाद में आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती थी, या कैटरेक्ट्स होते थे या होते, तो इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी
1: जी
0: और उसी समय दांत भी ढीले पड़ने लग जाते थे।
1: जी
0: तो लोगों में एक अंधविश्वास बन गया कि दांत खींचे और आंखों की रोशनी कम होती गई उसके बाद
1: जी
0: से ही। तो ये
1: हाँ
0: एक उम्र का तकादा था कि भाई उस समय ही हमने दांत निकलवाया और आंखों की रोशनी कम हो गई। तो ये एक
1: अच्छा
0: मिथक है, दांत के और आंख की नस का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जैसे
1: अच्छा
0: कि आपके पाँव की नस और आपकी आंख की नस कभी एक नहीं हो सकती, वैसे ही आपके दांत और आंख की नस सेम नहीं हो
1: ये
0: सकती।
1: मैंने भी सुना था और आज मेरा भी ये मिथक दूर हो गया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले मैं सभी श्रोतागण का फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ मुझे सुनने के लिए।
1: जी
0: और एज अ डेंटिस्ट मैं आप लोग को सबको यही सलाह दूंगा कि हर साल भर में या कम से कम 6-8 महीने में अपने डेंटिस्ट से मिलिए। शुरुआती लक्षणों में दांत से संबंधित या झंझनाहट लग रही है या खाना फंस रहा है या पीला हो रहा है, आप बिल्कुल जाके अपने अगर डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो आपका इलाज बहुत ही कम समय में बहुत ही आरामदायक तरीके से बिना दर्द के या कम डिस्कम्फर्ट के आप उसको इलाज करवा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी श्रोतागण खूब अच्छे से हंसे, खूब अच्छे से मुस्कुराए, क्योंकि दांत ही स्वास्थ्य की मुस्कान है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका भी हमारे पूरे युवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों, दांत केवल चबाने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पूरी सेहत का आईना होते हैं। इन्हें अनदेखा मत कीजिए क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी बन सकती है। स्वस्थ दांत स्वस्थ जीवन, यही आज का सबसे बड़ा संदेश है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं अनुष्का पंडित आज क्रम सेहत से विदा लेती हूँ। आज हमारे साथ दांत की सेहत पर क्रम सेहत में बात कर रहे थे डॉक्टर विवेक लाथ। धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम सेहत, जिसमें आज आपने जाना दांतों की सेहत। इस विषय में डॉक्टर विवेक लात से अनुष्का पंडित की बातचीत।
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
4: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
3: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
4: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 सालों से निरंतर सेवा में
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
5: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
2: अपेक्षा, तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है, या कोई ऐसी फिल्म जिसे तुम कितनी बार भी देख लो लेकिन मन ही नहीं भरता?
6: मुझे ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, जिस फिल्म का डायलॉग है ना वो फिल्म बहुत पसंद
2: अच्छा,
6: है।
2: अच्छा अच्छा, समझ गई। जब भी मेट फिल्म।
6: बिल्कुल सही समझी तुम। इस फिल्म से ये सीख तो मिली है कि कब, कहाँ और कैसे हम किसी से मिल जाते हैं और फिर वो हमारे लिए हमारी जिंदगी में जाकर भी वापस आ जाता है।
2: वाकई अपेक्षा, जिसकी उम्मीद नहीं होती अक्सर हमारे साथ वही हो जाता है।
6: और वैसे भी दोस्तों कहते हैं ना, अगर हुआ तो अच्छा और ना हुआ तो और भी अच्छा।
2: बिल्कुल सही कहा साथियों। और जब पसंद की बात है तो आज है क्रम अपनी पसंद, तो सुनाते हैं ये पहला गीत।

0: साथियों, मोहित चौहान के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब वी मेट का ये गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा, शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, डोंगरगढ़ से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार, कविता और जयंती ध्रुव का, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी ओजल वर्मा का, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी, शुभम और सौरभ रावत का। कितनी गर्मी है आनंदिता, ऐसा लगता है कि बस घर में ही रहूं, कहीं बाहर ही ना जाऊं।
0: ये बात तो है अपेक्षा, लेकिन काम भी तो इतना रहता है कि घर से बाहर निकलना ही पड़ता है।
1: और अभी तो 25 तारीख बहुत दूर है, मतलब 25 तारीख से नौतप्पा भी लगने वाला है, फिर तो और गर्मी और नौतप्पा।

0: बचपन में तो हमें और भी खास ख्याल रखना होता है खुद का और अपनों का भी, ताकि हम धूप से बचे रह सकें।
1: वाकई अपेक्षा, इतनी गर्मी में तो हमें बचना ही चाहिए और हमें कुछ छोटे छोटे उपाय से खुद को इतनी भीषण गर्मी से बचा सकते हैं।
0: जैसे घर से निकले तो खाली पेट ना निकले, कुछ खाकर ही निकले, पानी हमेशा अपने साथ रखें, मुंह को सूती कपड़े से ढककर निकले और तला भुना खाने से बचें, नींबू पानी ग्लूकोज पानी पीते रहें।
1: इन छोटे छोटे उपाय से हम खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं साथियों।
0: बातें तो आगे भी जारी रहेगी साथियों, लेकिन सुनते हैं अपनी पसंद का ये अगला गीत।

0: साथियों, राहत फ़तेह अली खान और असीस कौर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिम्बा का ये गीत। गीत लिखा था रश्मि वीराना ने और संगीत से सजाया था तनिष्क बागची ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की पावर हाउस से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ संजय और पूजा प्रधान की, महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव, रामनिवास अग्रवाल की, भाटापारा से जोवाराम वर्मा, मुकेश दुलारी, दुर्गा और

0: दुर्गेश्वरी वर्मा की, खट्टी से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी शर्मा, ओमकार, भीष्म मानिकपुरी और गोवर्धन यादव की।
1: साथियों, कई बार हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, बोलने से हिचकिचा जाते हैं।
0: वाकई अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिन्हें हम बोलने से कतराते हैं, लेकिन वही बात कोई और बोलकर अपना काम बना लेता है।
1: हाँ, वाकई अपेक्षा ऐसा ही होता है, और फिर हम सोचते रहते हैं कि काश हमने ये बात बोल दी होती।
0: इसलिए दोस्तों, अपने मन की बात बोलने से कतराइए नहीं, जो मन में है वो बोल दीजिए, ताकि फिर आप काश में ना रह सकें।

0: की अपेक्षा ऐसा ही होता है और फिर हम सोचते रहते हैं कि काश हमने ये बात बोल दी होती।
1: इसलिए दोस्तों अपने मन की बात बोलने से कतराइए नहीं, जो मन में है वो बोल दीजिए ताकि फिर आप काश में ना रह सकें।

0: साथियों, अरमान मलिक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अजहर का ये गीत। गीत लिखा रश्मि विराग ने और संगीत दिया था अमाल मलिक ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की नवागढ़ कटई से शारदा वर्मा, सीमा दामिनी वर्मा की, धमतरी बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु अंकिता देवांगन की, मगरलोड से पुनुराम साहू, तेजस्वरी राजश्री राजवीर साहू की, सिमगा से भारती सेन, विजया ललिता रामेश्वरी मीरा सेन की, अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार और बंसीलाल श्रीवास्तव की, शिवाजी चौक से अनिल कुमार, अंजुलता और कृष श्रीवास्तव की। साथियों, वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता दें कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला
0: और आनंदिता शर्मा
1: को इजाजत और स्वीकारे हमारा नमन।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं।

0: मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: 81 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 ठिन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायत मन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे है। और दुर्ग जिला में एक ठिन मकान ले दंपत्ति और उखर दू झीन लयिका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 23 मई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 जगह मन में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मन ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। इही कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहार ले रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। रोजगार मेला में 257 युवा मन ला नियुक्ति पत्र दे जाही। इमा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम करही बाजार पहुंचीं। इस दौरान मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान करीं। संग्रह मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार ले भेंट करीं। उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच के मुख्यमंत्री धात्री महतारी मन किट घलो प्रदान करीन। ए मौका में मुख्यमंत्री स्कूल मन के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाए समेत आने आने घोषणा करीन। एकर पहली मुख्यमंत्री काली सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारी मन के बैठका में पीए के पानी के समस्या और स्कूल परीक्षा परिणाम लेके नाराजगी जताइन। ओमन कोरिया जिला में खातु वितरण में गड़बड़ी आगू आए में सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्था आयुष प्रताप सिंह ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित करे के निर्देश दिन। इही बीच कोरिया जिला के जिल्दा समिति खड़गवा में खातु वितरण ले जुड़े गबन प्रकरण में दोषी मन के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाए में प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी ला घलो निलंबित कर दे गए है। राज्य सरकार खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायत मन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे है। ये पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी करे गए है। इन नंबर में आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितता के शिकायत सीधा दर्ज करा सकें। सूचना केंद्र के संचालन हरेक दिन बिहानिया 10 बजे ले संझा 5:30 बजे तक करे जाही। नीति आयोग डहा ले जारी देश के आकांक्षी ब्लॉक मन के चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिला के उसूर ब्लॉक सेंट्रल जोन में देश भर में दूसर स्थान हासिल करे है। आयोग स्वास्थ्य और सामाजिक विकास ले जुड़े कई ठिन संकेतक के आधार में मूल्यांकन करे रही जेमा उसूर ब्लॉक के प्रदर्शन उत्कृष्ट पाएगीज। ये उपलब्धि में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप जिला के नागरिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ला बधाई दिन है। सहकारिता विभाग के आयुक्त महादेव कावरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले विभागीय योजना और काम के समीक्षा बैठक लीन। सहकारिता आयुक्त श्री कावरे अधिकारी मन ले कहिन कि किसान मन ला बेरा में खातु उपलब्ध कराना शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। एखर बर ओमन जम्मो पैक्स समिति में पर्याप्त मात्रा में खातु के आगूले भंडारण सुनिश्चित करे बर कहिन। ओमन खातु के उपलब्धता और वितरण के नियमित रूप ले समीक्षा करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहाले प्रदेश के जम्मो डाकघर में अवैया 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाए जाही। इस दौरान कोनो भी नागरिक अपन नजदीकी डाकघर जाके या राज्य सरकार

0: ताहले नियुक्त अधिकृत एजेंट के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या औ कोनो योजना में निवेश कर सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कुती। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में म ए बखत बस्तर संभाग में नक्सलवाद के सिराए के बाद स्थानीय लोगन तक विकास के रोशनी पहुंचाए बर सरकार डहाले करेगे अभिनव पहल ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 23 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर डहले काली बिहानिया वाकथन के आयोजन करे जाही। ए वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकथन के शुरुआत बिहनिया 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर ले होही। ए वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होवत लहुट के आकाशवाणी परिसर में सिराही। ए आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्छर के गौरवशाली यात्रा के सुरता में करे जाते। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग डहाले पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण, प्रचार प्रसार और रुचि जगाए के उद्देश्य ले आने आने कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 के आयोजन करे जाते। ये आयोजन 25 मई ले 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में करे जाही। शिविर में दो पाली में बिहानिया 7 बजे ले 10 बजे तक और संझा 5 बजे ले 8 बजे तक आने आने कला के प्रशिक्षण दे जाही। ज्यादा जानकारी पर प्रशिक्षु मन संस्कृति विभाग के वेबसाइट www.cgculture.in ला देख सकत हैं। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम अब बदल के राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय करे जाही। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग विश्वविद्यालय के नाम बदले के प्रस्ताव ला औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दे है। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू झीन लयिका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। शुरुआती जांच में पुलिस ह आशंका जताए है कि दंपत्ति ह पहली दोनों लयिका मन के हत्या करिस, एकर बाद खुदे फांसी लगा के आत्महत्या कर लेन। पुलिस ह मौका ले सुसाइड नोट बरामद करे है जेमा आर्थिक तंगी और पारिवारिक झगड़ा के जिक्र हरे। पुलिस मामला की जाँच करत है। और अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में तापमान सामान्य ले ज्यादा दर्ज करे जाते। मौसम विभाग है रायपुर समेत बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिला के कुछ एक जगह में लू चले के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान ले आवत गर्म हवा के सेती अवैया 3 दिन में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज करेगिस। और अब थोरकुन समाचार सार मा। लोक निर्माण विभाग अपन जम्मू अनुविभागीय अधिकारी मंडल के प्रमुख अभियंता तक सबोला मुख्यालय में रहे के निर्देश दे है। निर्माणाधीन कार्य मन के गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करे, काम के मॉनिटरिंग और स्वीकृत कार्यालय तुरंत शुरू करे बर विभाग ये निर्देश जारी करे है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कोतिले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा खातिर अभ्यर्थी मल्ला 25 मई ले 30 जून तक आवेदन मंगाए गए है और महासमुंद जिला ले लगे बानवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में जंगली जानवर गौर के हमला में एक ग्रामीण के मौत हो गए है जबकि दूजन दूसर गंभीर रूप ले घायल हो गए है। बताया जाते है कि ग्रामीण जंगल के आने

0: साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे अष्टादश दिनांके दश राज्याणां चतुर्विंशति राज्यसभासनानां कृते निर्वाचनस्य घोषणा कृता। सर्वोच्चन्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते सीबीएसई इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकायां विचारं समारब्धम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे की पड़ाव की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो, जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो? बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम? हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो?
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बाहर मर मर के कमाता हूँ।
3: जीजा जी, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।
4: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है।

0: गाँव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
0: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
2: और अगर कमाई रुक जाए तो?
0: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
0: हाँ दीदी बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।
3: काउंसलिंग के बाद मोहन बदला हुआ दिखता है।
4: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
3: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
4: मैं बदलना चाहता हूँ।
1: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
3: काउंसलिंग के बाद मोहन।
4: सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
1: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
2: आज मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया।

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजाजी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: 6 माह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रुतो, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है।

0: जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोतो, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहाँ कैसे जाएं? इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल जाएं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है। वहाँ आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहाँ पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा, जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोताओं, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा। दोस्तों, इस विषय से जुड़े हुए आप अपने अनुभव हमसे जरूर साझा कीजिए।
1: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 मीटर बैंड पर। जी हाँ, 545.45 मीटर बैंड पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
10: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
9: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्यनगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके दो बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 23 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम

0: से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल है। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इस ऐप का शुभारंभ किया। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम करही बाजार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार से मुलाकात की। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने धात्री माताओं को किट भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूलों के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सुव्यवस्थित रूप से जन जन तक पहुंचाना है।
1: आज सुशासन तिहार के अंतर्गत करही बाजार में समाधान शिविर में आए हैं। 45 डिग्री गर्मी के बाद भी पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में समाधान शिविर में आए हैं। सबने अपना अपना अनुभव बताया है कि कोई ट्राईसाइकिल की मांग की तो उनको तत्काल मिला है, किसी का राशन कार्ड तत्काल मिला है। तो इस सुशासन तिहार का मतलब ही है कि जो हम लोग जन सेवा करना चाहते हैं वो लोगों तक ठीक से पहुंचे और पहुंच रहा है कि नहीं, ये फील्ड में गांव में जाने से ही, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है। और मैं बड़ा मुख्यमंत्री के नाते संतुष्ट हूँ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिला समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों में चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कई संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें उसूर ब्लॉक का प्रदर्शन उत्कृष्ट पाया गया। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों डायल 112 फेस 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा।
2: 112 जो कोई कॉल करेगा उसको अपने लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसका लोकेशन ऑटोमेटिक आएगा, उसके नियरेस्ट 112 की जो हमारी गाड़ी खड़ी होगी वो जाकर असिस्टेंस देगा। इसमें एक जवान भी, एक पुलिस का इसमें तैनात होगा। 112 की इस व्यवस्था से जनता तक, पहले 16 जिलों में था, ये 33 जिलों में अब आने वाला है। आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन सिस्टम से भी जुड़े। आज गाड़ी सड़कों पर चलकर पहुंचती है, उससे पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाए 112 कॉल करने पर। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
0: राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद स्थानीय लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा की गई अभिनव पहल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 23 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी

घरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिका योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार और रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 मई से 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। शिविर में दो पाली में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा कल सुबह वाकथन का आयोजन किया जाएगा। इस वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकथन की शुरुआत सुबह 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर से होगी। यह वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में सम्पन्न होगा। यह आयोजन

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा कल सुबह वाकथन का आयोजन किया जाएगा। इस वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकथन की शुरुआत सुबह 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर से होगी। यह वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में सम्पन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि दंपत्ति ने पहले 2 बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद का जिक्र है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने रायपुर सहित बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिलों के कुछ स्थानों में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित नंदन वन जू और जंगल सफारी में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बोटिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर और हिस्ट्री शीटर रवि साहू की 7,66,00,000 रुपये कीमत की 16 संपत्ति को सीज कर दिया है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में तेंदुपत्ता से भरे एक ट्रक में अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 25 मई से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और महासमुंद जिले से लगे बारनवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में वन्य प्राणी गौर के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण जंगल के अलग अलग क्षेत्रों से तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए सपने साजन के। इस फिल्म का गीत, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

प्यार तो होना ही था, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार जतिन ललित। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। अगले गीत से पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 26 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म गर्व से। गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार साजिद वाजिद।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत का सफर एक बार फिर से जारी रहेगा रात 8 बजे से 8:15 तक। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम भूषण।
1: राम राम सरिता। उ संगे संग कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगी मन लगलो हमर दुनो के
0: राम राम
1: सरिता। देख भाई अभी के धूप घाम गर्मी ले देखते छ बस बिहने हुई 10 बजे नहीं रहत भाई लक लक चालू हो जाते और ऐसन घाम धूप में भाई कैसन ढंग के काम बुतल करन तैसे लागथे।
0: और ऐसे है भूषण कि जेठ बैसाख जिन्हा है महीना है ना तेन ऐसने चरत थे।
1: हाँ।
0: फिर ए साल ज्यादा च लगत थे है नी
1: और
0: रुख राई लगातार कटत जाते और मोटर गाड़ी के भी प्रदूषण बढ़त जाते कल कारखाना के भी प्रदूषण बढ़त थे और जैसे कि एकर असर भी हमन मौसम पर देखत है और गोड बात और करबो फिर पहली सुनथनिए आरोला।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: सरिता, जैसे अभी कहा रही प्रदूषण जैसन बाढ़ से पेड़ पौधा कट रही, और वो सिरतोन बात घलो है। काबर देखथन गांव में ना हमन पहली हमर कपड़ा छानी रही, अब एक उठन देखे नहीं मिले, सबो घर ढला गे है ना, पेड़ पौधा मन कटा गे, घर मन ढला गे। और भाई वैसने उद्योग कारखाना घलो अबड़ खुल गए है, गाँव डहन घलो बाढ़ जाते है। अभी उद्योग कारखाना मन है ना सरिता, हमार बट फायदा तो हवे,
4: रोजगार मिलत
3: मिलत है, नवा नवा जोन अतका हम आज घंटों काम मिनटों करत हन, ये उद्योग के बदौलत ही हरे। फिर का करबे, सबके अपन अपन प्रभाव रीते, तो गर्मी जो बाढ़ा थे ना, तो एकरो मन के सब प्रभाव पड़ते।
4: बिल्कुल प्रभाव दिखत है, और ये जो ऊंच नीचे वो तो हो बेच कर ही है नहीं, और कैसनो मौसम रहा है, फिर हमार काम बुता तो ऐसे नहीं है कि रुक जाही, और काम बुता तो हमला करना छे, रुख राई हमला ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहिए, ताकि जो तापमान के समस्या, जो तापमान लगातार बढ़त जात है, वो कमती हो, और एक संगे संग भूषण यही बात है कि जैसे गर्मी बढ़त है तब पानी के समस्या,
3: पानी की समस्या है। हाँ, जैसे अभी बकरी धान मन काम बुतम जैसे जाथन ना, रुख रही खेत होकर तो गर्मी बांट जाथन, फिर अभी ना सरिता का होगी, इतका गर्मी में ना बोर के पानी मन हा नीचे चल
4: सुखावत है,
3: कतका बेर चल जाही, कतका बेर बंद हो जाही, तेकर कोनो ठिकाना नहीं है। और ऐसे में हमार फसल ऊपर घलो प्रभाव पड़ते, भाई पानी बिना फसल कैसे पाकी, ऐसे हो जाते है नहीं।
4: और पानी की समस्या सबो जगह है नहीं, और पानी हम मन के बर सबले जरूरी है, प्राकृतिक संसाधन है, और बिन पानी के जीवन संभव नहीं है।
3: हाँ।
4: नहाए बर चाहिए, पिए बर चाहिए, खेती खार बर चाहिए, पशुपालन बर, उद्योग धंधा बर, सबो चीज बर हमला पानी के जरूरत पड़ते, और एकरे सती हमला पानी बचाए के भी जरूरत है।
3: बहुत जरूरी है, काबर के ना आज पानी के

0: कमी है ना हमर आसपास में देखथन बड़ जन समस्या हो गए हैं और पानी की स्तर लगातार नीचे जावत जात है। जानकार मन ले सुनथन घला हमन है नरवा तरिया मन सुखात तेला देखते छवन है और आबादी घलो सही तब विकट बाढ़त जात है दिन ब दिन। तो ओकर ले कहा थे अभी हमर आसपास में भाठा परिया जमीन नहीं बाँचे है जेमा पेड़ पौधा उगे रहती ते जगह में आज घर द्वार बन गए है। तो एकर ले घलो हमर जो पानी के कमी है ना उला हुआ जाते उकर बचाव घलो बहुत जरूरी है। फिर का है आजकल पानी अतका जरूरी है मनखे ले घाव खाना नहीं देबे बन जही एक बेर एक टाइम नहीं खाई बन जही बाकी पानी हाँ
1: बिना पानी के नहीं
0: वो अतका गर्मी में भाई
1: ऐसे है भूषण की जल संरक्षण करना तो बहुते जरूरी है और पानी बचाए बर सबले जरूरी है कि जिन पानी हम उपयोग करत हन ओला सही उपयोग करें है नी काबर की बूंद बूंद में घड़ा भरते और छोटे छोटे कदम यदि हम उठावन जल संरक्षण पर तो यही भूमिका हमर बर वर्षा जल के संचयन बर बहुत काम आते। जब वर्षा होते तब पानी गिरते तब पानी बोहा के सीधा नदिया में जाते नदिया के पानी सीधा बोहावत बोहावत समुद्र में पहुंच जाते और समुद्र में पहुंच गए खारा हो गए मतलब हमर कोनो काम के नहीं है नी। तो ओला बचा के रखना है। अब कैसे बचा सकथन तो पहली उदिम करे तालाब खोदवाए डबरी खोदवाए है नी और घर के जो गांव के जो खाली जमीन है वो जमीन में पानी संचय हो और भूजल स्तर जो है वो अपने अपन बढ़त रहे।
0: तो ये है उदिम घलो हमर जल संरक्षण बर बढ़िया हो सकते हाँ और ये तो बने बात अभी के है कि वर्षक जल संरक्षण कर सकथन और ये बचत जैसे छोटे छोटे बचत है ना ये बचत मन हा शुरुआत जैसे हम करबो जैसे अभी के है ना ते है बूंद बूंद से घड़ा भरते और भाई इसने बचत ला ध्यान नहीं देबो तो बूंद बूंद घड़ा खाली हो से पूरा घड़ा घड़ो खाली हो जाए है नी। तो इसने ध्यान देना जरूरी है काबर सब छोटे छोटे चीज में पानी जैसे बर्बाद करते हैं नल हम घर में कभी भुला
1: छोड़ दे हैं
0: अच्छा से बंद नहीं करन आई कोनो कर पाइप जोन है जिम छेदा रहते पानी टपकत जाते ओमे ध्यान नहीं देवन कि ये नानमून छेदा काय हुई कि तो ये मन लग हलो ध्यान देना है। घर में जैसे हम मोटर गाड़ी रखे हैं तेला रोज दिन सुबह सुबह पानी में धोत है
1: रोज के धोई जरूरत भी नहीं
0: है वही पानी पेड़ पौधा हम डालबो तो हमारे पेड़ पौधा फायदा की रही गाड़ी ला घोड़ा ला हम हफ्ता भर में धोवन है ना।
1: और खेती किसानी के बात करन तो भाई पानी पलाय के जगह में टपक सिंचाई के उपयोग कर सकथन स्प्रिंकलर के उपयोग कर सकथन है ना। और कम खेत में यदि पानी पलाथन तो उहुला बराबर देख सुन के पलावन ताकि वृथा पानी झन जावे।
0: और ये पानी जो है हमार खेती बर जैसे कहते बहुत उपयोगी है काबर आजकल जो वैज्ञानिक मन जैसे हमार खोज करे हवे तो भाई बिना भूमि के भी हमन सब्जी भाजी उगा सकते
1: हैं हाइड्रोपोनिक्स विधि में है ना।
0: फिर बिना पानी
1: के संभव नहीं है माने माटी बिना हो सकते फिर पानी बिना नहीं हो सके।
0: और इसने ढंग लेना जैसे पेड़ पौधा जे लगा के उमा घलो हम जल संरक्षण में अपन भूमिका निभा
1: बिल्कुल निभा सकथन रुख राई ज्यादा से ज्यादा लगी तो माटी कटाव रुकथे भूजल स्तर घलो बाढ़ते पर्यावरण के संतुलन बने रहते तापमान कम रहते छांव मिलते रुख राई ज्यादा से ज्यादा लगाना है संगवारी हो
0: यहू पर का है रुख राई मन सरिता अभी जो वर्षा है भाई अतका घाम पड़त है तो जंगल रुख राई ये मन हमन जो वर्षा चक्र है ना
1: यहू मस संतुलन बना के रखते है। कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई रुख राई रही तो पानी रही तो जिंदगानी रही है ना। और यही आरोला अपन स्वर में सजा के लाए है तीरथ राम गढ़वाल और संगी मन तसुंथन ये सुघर गीत ला।

0: ये सुघर गीत सुनत रहिन ओ इनला स्वर दे रही से तीरथ राम गढ़वाल और साथी मन हा और सरिता अब आज हमर शुक्रवार के रहते हेलो चौपाल फोन इन कार्यक्रम तो संगवारी हो आओ सुनथन फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल और एकर विषय है खेती किसानी के काम में शरीर में होवैया चर्म रोग और ओकर सावधानी और विशेषज्ञ है डॉक्टर मृत्युंजय सिंह चर्म रोग विशेषज्ञ में कहा रायपुर ले एकर संग गोट बात करे है सरिता
1: संगवारी हो राम राम जय जुहार। खेती किसानी ऐसे बूता है जेमे हर मौसम और हर परिस्थिति के सामना करना पड़ते। कभू कभू हमन ला ऐसे पेड़ पौधा या पशुधन के संग रहेल पड़ते जेन पहली ले बीमार है। एकरे सेती दीगर व्यक्ति के तुलना मा किसान मन ला रोग बीमारी होए के संभावना बाढ़ जाते। ऐसने एक समस्या आते किसान मन ला चर्म रोग के। ये चर्म रोग किसान मन ला कोन कोन कारण से हो सकत है आव यही संबंध मा चर्चा करबो हेलो चौपाल मा। आज के हमर विषय है खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह चर्म रोग विशेषज्ञ मेका हरा रायपुर। डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर साहब ये संबंध में हमर संगवारी मन के फोन आवत है तो लेथन ये पहली कॉल। हेलो चौपाल।
3: हाँ हेलो चौपाल
1: जी। भैया कौन बोला थो कहाँ ले बोला थो?
3: मैं हाँ संत राम कन्हौजिया बोला था दीदी सुनार देवरी।

0: पलारी बलौदा बाजार जिला संत राम कनौजे।
1: भैया कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है।
0: धन्यवाद दीदी। आप
1: आज हमार चौपाल में जो विषय है वो हरे खेती किसानी में किसान मन ला हो भैया चर्म रोग, तो ये संबंध में आपके का प्रश्न है?
0: हाँ वो एक दिन में वो का खेती किसानी के दिन में दीदी ज्यादा समय पानी में पैर मन डूबे थे हाथ पैर ना तो केंदुआ चर देते। केंदुआ हो जाते।
2: हाँ केंदुआ देखिए खेती किसानी का बहुत सामान्य बीमारी है। अब इसका कारण ये है कि आप लोग जब खेती किसानी करते हैं तो लंबे समय तक आपका पैर पानी में डूबा रहता है
0: जी,
2: और उसकी वजह से आपकी जो उंगलियां होती हैं पैर की उनके बीच में घाव बनना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग केंदुआ बोलते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि उंगलियां सटी होती हैं, पानी वहाँ रुकता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन मतलब जो केंदुआ होता है वो आपका को होने का मौका मिल जाता है। देखिए इसका हम बचाव के लिए बता रहा हूँ। देखिए वैसे तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो गम बूट होता है उसको पहन के अपन खेतों में जाएं
0: जी, जी।
2: जो बाहर के यहाँ तो हम लोग नहीं ज्यादा उसको यूज करते हैं, मतलब अपने यहाँ तो अपन तो भाई सीधे नंगे पांव खेत में चले जाते हैं। तो दूसरा उपाय ये रहता है कि जैसे ही आपका काम खत्म हो पैर को अच्छे से धो लीजिए साबुन से, ठीक है, और जो भी आपके उंगलियों के बीच में जो पसीना इकट्ठा हुआ है या पानी इकट्ठा हुआ है या गंदगी इकट्ठी हुई है उसको अच्छे से साफ करके सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद कुछ न कुछ घर में अगर पाउडर हो तो पाउडर लगा सकते हैं या फिर कोई भी टेलकम पाउडर हो जो आपके घर में जो अपन, बस वो इसलिए क्योंकि जो नमी है वो वहाँ पे ज्यादा ना रहे। और अगर कभी कुछ ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है वहाँ पे, बहुत ज्यादा सूखापन आ रहा है, तो कुछ अपना घर में अगर नारियल का तेल भी होगा तो भी चल जाएगा, नहीं तो सबसे अच्छा रहता है कि कोई पेट्रोलियम जेली या कोई ग्लिसरीन कुछ भी हो घर में वो भी आप लगा
0: जी,
2: सकते
0: जी,
2: हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी जी जी जी,
0: सुंदर जानकारी दिए।
1: हेलो चौपाल।
3: हेलो नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार भैया, कौन बोला थो, कहाँ ले बोला थो?
3: मैं मोरज भट्ट बोला था, छिरहनावा गांव कला ले।
1: भैया आपके बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
1: आज हेलो चौपाल में हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। आज आपके का सवाल है?
4: शीला के बारे में बताते हो।
2: हाँ देखिए ये जो बीमारी होती है शीला जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में साइंटिफिक भाषा में टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है और ये आपके नमी उमस चिपचिपेपन से बढ़ता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा नमी उमस में काम करते हैं या जो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े टाइट कपड़े पहन रहे हैं जिसकी वजह से शरीर को कंफर्ट नहीं मिल रहा है, नमी उमस ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, तो ऐसे लोगों के शरीर में क्या होता है कि इस तरह से चकत्ते बन जाते हैं जो कई कलर के हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, भूरे रंग का भी हो सकता है। हालांकि उन चकत्तों में ना तो कोई खुजली होती है, ना तो कोई जलन होती है, ना तो कोई दर्द होता है, बस वो दिखने में लगता है कि कोई बीमारी हमारे शरीर पे पनप रही है। तो उसके लिए सबसे सही उपाय तो ये है कि आप ऐसे कंडीशंस मतलब ऐसी चीज पैदा ही ना करिए कि उसकी जरूरत पड़े। मीन्स आप कॉटन के कपड़े पहनिए, सूती कपड़े जिसको बोलते हैं, ढीले ढाले पहनिए। जिस दिन बहुत ज्यादा नमी उमस चिपचिपेपन से प्रभावित हैं दो बार स्नान कर लीजिए, और स्नान करने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछने के बाद ही कपड़े पहनिए। मतलब नमी उमस चिपचिपेपन से जितना दूर रहेंगे आप उतना बचाव करते रहेंगे, और अगर हो गया है तो उसके लिए एंटी फंगल दवाइयाँ आती हैं, क्रीम आते हैं जो हम लोग क्लोट्रिमाजोल कीटोकोनाजोल इस तरह की क्रीम आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लगाने के लिए, और साबुन से डेली नहाइए ताकि कोई आपकी गंदगी शरीर पे ना इकट्ठी रहे।
1: हेलो चौपाल।
5: हाँ हेलो चौपाल दीदी, राम राम।
1: राम राम भैया स्वागत है आपके कार्यक्रम में।
5: हेलो डॉक्टर भैया, राम राम।
2: हाँ राम राम भैया, बताएं क्या जानकारी आपको चाहिए?
5: चर्म रोग के बारे में जानकारी।
2: देखिए खेती किसानी में ना तीन चार तरह के चर्म रोग हो सकते हैं। पहला तो देखिए खेती किसानी में शरीर ज्यादातर पानी में रहता है और नमी उमस चिपचिपापन भी रहता है क्योंकि बाहर में काम करना रहता है, दिन में काम करना रहता है, धूप ज्यादा होती है। तो दाद का संक्रमण, पैरों में केंदुआ होना, कभी कभी फोड़े फुंसी होना, ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी खेती के लिए जो आप लोग फर्टिलाइजर या जो कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं, खाद वगैरह, उसका भी संपर्क कई लोगों को एलर्जी पैदा करता है, और कभी कभी खेतों के आसपास कुछ जंगली पौधे उगाते हैं जो आपके शरीर के संपर्क में आते हैं तो उससे भी आपको एलर्जी की तकलीफ, लाल दाने आना, चकत्ते आना, खुजली होना, ये सब की तकलीफ होती है। तो इसकी सावधानी ये रह

0: है कि अगर आपको कीटनाशक फेंकना है या कोई भी यूज करना है तो एक दस्ताने आते हैं किसानों के लिए जिसको पहन के आप फेंक सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपका शरीर ढका रहना जरूरी है ताकि आपके शरीर के डायरेक्ट संपर्क में आपको वो कीटनाशक या कोई भी ऐसा पदार्थ जो केमिकल वाला है वो आपके संपर्क में ना आए। आसपास में जैसे अगर जंगली पेड़ पौधे हैं तो उसको निकलवा के किसी के द्वारा जलवा दीजिए, क्योंकि उसका भी संपर्क बहुत लोगों को एलर्जी पैदा करता है। उसको गाजर घास का पौधा बोलते हैं, गाजर जैसी पत्तियां रहती हैं, हल्के पीले रंग के फूल रहते हैं, गाजर घास बोला जाता है। वो बहुत किसानों में कई जगह खेतों में उगे रहते हैं और उससे किसान लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, उनको पता भी नहीं रहता है कि उससे उनको खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही है। नमी उमस वाला जो दिक्कत रहती है, जो आप चूंकि दिन में काम करते हैं, गर्मी ज़्यादा रहती है, पानी में शरीर लंबे समय तक रहता है, तो उसका अब वो चीज़ तो आप नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए आप घर आके शरीर को अच्छे से नहा धो के साबुन से नहाइए, अच्छे से शरीर को साफ करिए, उसके बाद घर में कुछ अपना नारियल का तेल, मॉइस्चराइजर जो भी आप घर में रखे हों वो लगा लेंगे, तो उससे आपके शरीर को आराम मिलेगा।
1: हेलो चौपाल।
2: हेलो चौपाल
1: जी। भैया कौन बोला थो, कहाँ से बोला थो?
2: मैं दानी राम चंद्रवंशी बोला था दीदी, लखनपुर कवर्धा से।
1: आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है भैया। आज हमारे हेलो चौपाल कार्यक्रम में विषय है चर्म रोग से संबंधित। कोई भी यदि आपके समस्या है तो कर निदान बर हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी। आप मन डॉक्टर साहब से कोई भी समस्या के समाधान पूछ सकते
2: हैं। दीदी ये चर्म रोग के दीदी ये दाढ़ी में मांसा हो गए, मोरे मांसा हो दाढ़ी में भी महीने दिन हो है, मोड़ के चरपों के ऊपर टाइप के हो गए, वह खजुआ थे और दो तीन जगह जान भी है जो खखौरी में है मासा। ये मासा के का इलाज है, कामा माल ही अभी नान नान जो उमता है ऊपर मत तरपवा के तीन कागज में माल ही दवाई
0: देखिये। खैर आपका प्रश्न थोड़ा खेती किसानी से अलग है। जो मासा है ये
2: चर्म रोग के बारे में बता,
0: हाँ मासा बता देते हैं। देखिए मासा क्या होता है ना, ये दवा से नहीं ठीक होता भाऊजी, इसको ना मशीन से हटाना पड़ता है, इसका इलाज होता है, इसको सर्जरी से या ये कह लीजिए कि मशीन से होता है या रिमूव करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, दवा से नहीं जाता है। अच्छा, लाल दाने के लिए तो कुछ पाउडर अब बिना देखे तो देखिए बाऊजी बताना थोड़ा मुश्किल रहता है कि कौन सा चर्म रोग हुआ है आपको। के लिए अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आसपास में कोई विशेषज्ञ हो उसको आप दिखा सकते हैं, नहीं तो घर में जैसे जो पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं नहाने के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा।
1: जी भैया धन्यवाद। हेलो चौपाल।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते भैया, कौन बोला थो, कहाँ ले बोला थो?
3: मैं बेमेतरा जिला बोला था मैडम, देवघर से।
1: जी आपके नाम क्या है भैया?
3: गणेश भारती मैडम।
1: आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो चौपाल कार्यक्रम में आज के हमारे विषय है खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग और सावधानियाँ, ये संबंध में आपके क्या प्रश्न है?
3: जी मैम, कीटनाशक कौन कौन सा सावधानी रखना चाहिए मैडम फसलों में डालने से पहले?
0: देखिए कीटनाशक के लिए जो सबसे बड़ी सावधानी ये रहती है कि जब भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें तो दस्ताने पहने, शरीर को पूरा ढका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कीटनाशक की जो एलर्जी बहुत सारे किसान भाइयों को हो जाती है उसका कारण यह है कि वो डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है। तो जब भी हम छिड़काव करते हैं तो हम कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बिना मतलब हाथ को ढके हुए, बिना शरीर को ढके हुए छिड़काव चालू कर देते हैं, तो जो उसके कण हैं हवा में उड़ के आपके शरीर पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, और चूंकि आप धूप में काम करते हैं तो जो धूप की किरणें सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उससे वो एलर्जी पैदा करने का चांस ज़्यादा होता है, एलर्जी जल्दी पैदा हो जाती है। तो ये सावधानी रखनी है, और जब भी आप कीटनाशक का छिड़काव करके काम खत्म करें तुरंत साबुन से अच्छे से नहाएं, ताकि अगर कोई आपके शरीर पे कोई छिड़काव का कण आया होगा तो वो आपके नहाने से धुल जाएगा।
1: हेलो चौपाल।
4: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार भैया, कौन बोला थो, कहाँ ले बोला थो?
4: मैं संजारी नगर से बोला था, विष्णु साहू।
1: जी भैया आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो चौपाल कार्यक्रम में आज खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां विषय में आपके क्या प्रश्न है?
4: बरसात के मौसम में जैसे किसानी खेती करवे तो अक्सर केंदुआ चर देते पैर मल हाथ मल।
1: जी भैया
4: ओकरे बारे में पूछना रही से, ताकि केंदुआ चरबे मत करा ऐसे कोई दवाई बता देते डॉक्टर साहब मन।
0: देखिए केंदुआ जो चरता है

0: वो असल में आपका जैसे काम खेती किसानी का रहता है तो हर समय पैर काफ़ी समय तक आपका पानी में भीगा रहता है। यहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है तो पानी का उपयोग ज़्यादा होता है, तो अब पानी मिट्टी ये सब इतना नमी उमस बढ़ा देता है कि वो आपके उंगलियों के बीच में जो कट जाती हैं, वही जिसको केंदुआ आप लोग बोलते हैं, पैर की उंगलियों के बीच में जो घाव बन जाता है, अब देखिए उसको रोकने का तो सबसे बड़ा अच्छा तरीका तो यह है कि आप उसके संपर्क में ना आए, लेकिन वो आपकी खेती किसानी है तो संभव नहीं है।
1: हाँ, खेती किसानी में तो करना पड़ता था काम।
0: तो एक एक बूट आता है, गम बूट जिसको बोलते हैं, उसको पहन के करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे अगर संभव हो सके तो, और अगर नहीं हो पाता है तो जब भी आप अपना काम खत्म करते हैं उसके तुरंत बाद आके पैर को अच्छे से नहा धो के पैर को अच्छे से सुखा लीजिए, जहाँ जहाँ उंगलियों के बीच में जहाँ मिट्टी इकट्ठा हुई है, नमी इकट्ठा हुई है, उसको अच्छे से धो के सुखाना जरूरी है, गीला नहीं रहना चाहिए। सुखाने के बाद कुछ नारियल का तेल पाउडर ये सब आप लगा सकते हो, ठीक है, इससे आपको सुरक्षित रहेंगे। और लेकिन अगर हो गया तो फिर वो क्रीम उसके लिए, अब ऐसे तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, एंटी फंगल क्रीम हम लोग बोलते हैं उसमें लगाने के लिए, क्लोट्रिमाजोल मिकोनाजोल इस नाम से आता है मार्केट में, लेकिन अब वो क्या है देखने के बाद ही आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, सावधानी के लिए ये आपके लिए रहेगा।
2: ठीक भैया, धन्यवाद। ठीक
1: है, धन्यवाद आप।
2: हेलो चपाल।
3: हाँ दीदी, मोर माया फरे, राम राम।
2: राम राम भैया, आपके कार्यक्रम
3: मैं
2: में बहुत
3: नवा,
2: बहुत स्वागत है। आप मन कौन बोला थो, कहाँ बोला थो?
3: हाँ मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमे तराले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था। वहाँ दीदी
2: जी, वर्मा जी, तो आज खेती किसानी के समय किसान मन ला हो या चर्म रोग और सावधानी विषय में आपके का प्रश्न है?
3: हाँ दीदी, अभी जैसे अवैया है, बरसात है और हमारे खेती किसानी काम घलो बने भगड़ा रही थे वही बरसात में, तो
2: जी,
3: एमा हमन ला कौन कौन से चर्म रोग हो सकते और एक ले बचाव खातिर हमन का कर सकते हैं, का सावधानी है, यही जब बात ला पूछे बार फोन लगाए हैं दीदी।
0: नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
3: हाँ डॉक्टर भैया, राम राम।
0: राम राम भैया, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, इससे सभी लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी और सबके लिए अच्छा भी रहेगा जानकारी लेके। देखिए, खेती किसानी से जो संबंधित चर्म रोग रहते हैं, दो चार तरीके के चर्म रोग हो सकते हैं। एक तो दाँत की और केंदुआ की शिकायत होती है, ठीक है, दाँत जो कांच लग जाना जिसको बोलते हैं लोग। और दूसरा क्या है, चूंकि धूप में आपको लगातार काम करना रहता है तो धूप की एलर्जी हो जाती है, जिसमें खुजली, जलन, चकत्ते आना, ये सब रहता है। तीसरा, आप लोग ये छिड़काव करते हैं जो खाद डालते हैं और ये कीटनाशक का जो छिड़काव करते हैं, तो उसमें जो केमिकल रहता है जब वो आपके शरीर के संपर्क में आता है तो खुजली, जलन या एग्जिमा बेमची जैसा तकलीफ पैदा कर देता है वो।
3: हाँ भैया,
0: हाँ, ये तीन चार चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा मरीज इसी के आते हैं। तो अब इसके बचाव का क्या तरीका रहता है, देखिए सबसे पहले तो जैसे अगर हम छिड़काव की बात करें कीटनाशक का, ये जो आप खाद का छिड़काव करते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया तो ये है कि शरीर को पूरा ढकने के बाद ही छिड़काव करें, हाथ में कोई दस्ताना पहन लें, ताकि क्योंकि हाथ ही सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है छिड़काव के, और शरीर को कपड़े को अच्छे से ढक लें, चेहरे को, बालों को, पूरा गमछा जो होता है उससे पूरा अच्छे तरीके से आप उसको कवर करके ढक के उसके बाद छिड़काव करिए, बल्कि होगा आँख में कुछ चश्मा उस्मा लगा लीजिए ताकि आँखों में भी ना जाए, और जब आप छिड़काव पूरा कर लें उसके बाद नहाना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है इस बहुत सावधानी करने के बाद भी कुछ कीटनाशक शरीर पे आ ही जाते हैं, तो साबुन से अच्छे से नहा के उसको सुखा लें। और जहाँ तक धूप की एलर्जी का सवाल है, तो अब देखिए अब क्या है, वैसे तो सबसे ज़्यादा एलर्जी 10 से 4 के बीच में ही होती है, जब आप 10 से 4 के बीच में धूप में निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा एलर्जी 10 से 4 या बोल लीजिए 11 से 2 में सबसे ज़्यादा आपका हानिकारक किरणें रहती हैं सूरज के, जिसमें धूप की हानिकारक किरणें रहती हैं, जिसमें लोगों को एलर्जी होने का डर रहता है। लेकिन अब आपकी किसानी उसी समय होगी, तो उसका तरीका यही है कि जब भी धूप में जाएं तो आप पूरे शरीर को अच्छे से ढकने के बाद ही काम करें, जैसे सिर को कपड़े से ढक लीजिए और शरीर को ढक लीजिए और ढकने के बाद ही काम करें, और काम करने के बाद

0: फिर आके फिर अपना वही है शरीर को अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। और केंदुआ और दाद के लिए मेन क्या है, ये नमी उमस चिपचिपेपन से होता है। अब यहाँ पे भी वही कहानी है कि खेती किसानी करेंगे तो नमी उमस तो होनी ही है, तो उसके लिए वही तरीका है कि घर आके आप पूरा साफ सफाई अच्छे से करें, नहा धो लें और पानी को अच्छे से सुखा लें। उसके सुखाने के बाद कुछ पाउडर वगैरह जो घर में होगा उसको लगा सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि आप शरीर को सूखा रखें, ड्राई रखें, ठीक है?
1: हाँ भैया हाँ।
0: और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो बताएं।
1: और तो बढ़िया भी, आपके जानकारी से हम लोग बहुत लाभ मिले सारा डॉक्टर भैया।
0: जी जी जी जी,
1: आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और चौपाल विभाग लोग बहुत बहुत धन्यवाद,
0: क्योंकि देखिए
1: हरदम
0: हाँ जी जी
1: हाँ।

0: का इलाज कराना जरूरी है। हाँ।
1: डॉक्टर साहब, आप मन हरचापाल में आए और किसान भाई मन के चर्म रोग ले जुड़े समस्या के तुरते समाधान करे, एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो ये रही हरचापाल विषय रही से खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। विशेषज्ञ रहिन डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ मेका हारा राय। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत करता रहिन शशि प्रकाश पांडे। त अवैया शुक्रवार के फिर नवा विषय संग भेंट होई। तब तक देव विदा। जम्मो संगवारी मल्ला हमर राम राम।
2: हेलो चौपाल, फोन इन कार्यक्रम अभी सुनत रहिन और एकर विषय रही से खेती किसानी के काम बुता में शरीर में होइया चर्म रोग और ओकर सावधानी। विशेषज्ञ रही से डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ मेकाहारा रायपुर ले। अब एकर संग गोट बात करत रही से सरिता साहू है। और सरिता, वैसे गोट बात करत भाई बेरा हो गई आज के प्रश्न के। तो संगवारी हो, आज के प्रश्न लिख लेवा तो बता दे आज के प्रश्न।
1: संगवारी हो, हमारे आज के प्रश्न है कीटनाशक के छिड़काव के समय कौन कौन से सावधानी रखना चाहिए। एक गाँव सुन लेवा, कीटनाशक के छिड़काव के समय कौन कौन से सावधानी रखना चाहिए। पाछू हफ्ता में पूछे गए सवाल ला बता देथन। बीजोपचार कौन कौन माध्यम ले करे जा सकते। उत्तर है फफूंद नाशक ले, कीटनाशक ले या फिर नमक के घोल ले। सही जवाब भेजैया हमार संगवारी मन के नाम है नागर कोहरा ले, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, ग्राम बठेना पाटन ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, मुरली, खूबचंद वर्मा, आर्य नगर कोहका भिलाई ले हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदनी जंघेल मन। धमधाले हैं अनिल अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल मन। तसंगवारियों, आप मन से ही जवाब भेजे, एकर बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
2: और संगवारी मो, आप मन एक सूचना बता देता हूँ। और यह मंगलवार 26 मई 2026 के प्रसारित हो यह हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय रही खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों के रख रखाव एवं संबंधित योजनाएं। और विषय में जानकारी खातिर आप मन जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ रही डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पांदा। और आप मन अपन जिज्ञासा शंका के समाधान पाए बर हमन ला फोन कर सकता हूँ। हमारे फोन नंबर है 400-3482, दूसरे फोन नंबर है 400-3483, तीसरे फोन नंबर है 400-3484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। और ये कार्यक्रम के जो रिकॉर्डिंग है ते 26 मई 2026 के बिहनिया 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाही। और एक प्रसारण वही दिन साझा 7:30 में करे जाही। सूचना इही तीर सिरई से।
1: त संगवारी हो, भाई सूचना के बाद एक ठन गीत संगीत घलो सुन लेथन। त अब सुनथन राम शरण वैष्णव और साथी मन के स्वर में ये सुगर गीत।

0: गाना सुन रही गुट बात करत सरिता जायक बेरा घलो हो गई फिर जायक पहली संगवारी मतलब बता देथन हमन काली के कार्यक्रम काली आप मतलब सुने बर मिलही आज के सलाह क्रम में मुर्गियों की गर्मी में मुर्गियों की देखभाल एवं प्रबंधन ये विषय जानकारी ली विशेषज्ञ हुई डॉक्टर तरुण साहू पशु चिकित्सा सहायक शल्यक पशु चिकित्सालय कुरुत जिला धमतरी ले और हुई गीत संगीत कृषक प्रश्न मंच तदेव विदा कार्यक्रम सुनिए जम्मू संगवारी मल्ला भूषण
1: और सरिता साहू के
0: राम राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: फना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शान और कैलाश खेर की आवाजों में। गीतकार थे प्रसून जोशी, संगीतकार जतिन ललित।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरा

0: सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

श्रेया घोषाल और अजय अतुल की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सिंघम फिल्म का गीत। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीतकार अजय अतुल। रंग लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम शमन।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं शुभांगी बागड़देव। पहले सुनिए संत तुलसीदास की रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी शुभांगी बागड़देव। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:30 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइन।

0: पर आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज की। ईस्ट बंगाल ने 22 वर्षों बाद इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हुई और हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। स्वीटी कुजूर को सौंपी टीम की कमान। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने। इस समय ताज़ा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट खोकर 126 रन बना लिए थे। इस मैच से पहले कल अहमदाबाद में मेज़बान गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज कर चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। आइए सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात टाइटंस ने बेहद शानदार शुरुआत की। पहले विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने 74 गेंद में 125 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। गिल ने 37 गेंद में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 64 रन की पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने जॉश बटलर के साथ पारी को संभाला। दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 36 गेंद में 82 रन जुटाकर टीम को 207 के स्कोर तक पहुंचाया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन आउट हुए, जिन्होंने 53 गेंद में 4 छक्कों और 7 चौकों के साथ 84 रन की सधी हुई पारी खेली। जॉश बटलर ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाबाद 57 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए। विपक्षी खेमे से मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज ने एक एक विकेट अपने नाम किए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन पहले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 13 गेंद में 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान के आउट होने के बाद टीम बिखर गई। ऋतुराज ने 16 जबकि शॉर्ट ने 24 रन की पारी खेली। कार्तिक शर्मा भी महज 19 रन ही बना सके। टीम ने 63 के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए थे। शिवम दुबे ने डेवाल्ड ब्रेविश के साथ 21 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दुबे 17 गेंद में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका और पूरी टीम 13 ओवर 4 गेंद में 140 रन पर सिमट गई। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को धारदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही गुजरात ने शीर्ष दो में फिनिश करने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। वहीं इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल में हर जीत और हर हार इस प्रतियोगिता को रोमांच के शिखर पर ले जाती हुई। और अब अहमदाबाद के बाद रुख करते हैं झारखंड की रांची का, जहां पर बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस समय अपने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के साथ सज चुका है 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के लिए, जिसकी आज शुरुआत हुई। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से आज प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन देखने को मिला।
2: रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 27 ओलंपियन और कई एशियन एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रांची में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: आज के दिन खेली गई प्रतियोगिताओं की स्पर्धाओं के रिजल्ट महवीश ने बताया और अब महवीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। महवीश, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने रिजल्ट्स का तो जिक्र किया ही किया, बड़ी प्रतियोगिता है, कॉमनवेल्थ के टिकट यहां से मिलेंगे खिलाड़ियों को, कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी और सितारे हैं जो इस बार प्रतियोगिता में मेडल्स के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे?
3: जी हाँ, यहाँ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और बहुत बढ़िया खिलाड़ी

0: शीर्ष एथलेटिक ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इनमें है भारतीय स्प्रिंट स्टार अनिमेश कुजूर हैं, अनुरानी हैं, तेजस शिरसे हैं, श्री शंकर एम हैं, सचिन यादव हैं, शैले सिंह, प्रवीण चित्रवाल जैसे कई बड़े नाम यहां आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
1: जी महवेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफ़ी बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताया जिन पे नज़रें रहने वाली हैं आने वाले इन चार दिनों में जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी। और अब एथलेटिक्स के बाद रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां पर कल एक बार रोमांच और इतिहास का संगम देखने को मिला। ईस्ट बंगाल ने कल 22 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए इंडियन सुपर लीग ISL 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया।
2: इंडियन फुटबॉल योर चैंपियंस दिस सीजन आर ईस्ट बंगाल, अनबॉक्स्ड, अनलॉक्ड, अनचेन्ड लाइक नेवर बिफोर, इंडियन सुपर लीग विनर्स फॉर द फर्स्ट टाइम।
1: एक रोमांचक फाइनल में ईस्ट बंगाल ने कोलकाता में इंटर काशी को 2-1 से हराकर 2004 के बाद इस वर्ष ये खिताब अपने नाम किया है। सुनते हैं जोश, जज्बे, रोमांच और भावुकता से भरे इस मैच की हर डिटेल।
3: कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में कल रात मैच की आखिरी सीटी बजने के साथ ही पूरा स्टेडियम रोमांच और भावुकता से भरे माहौल में बदल गया। खिलाड़ी जमीन पर बैठ गए, फैंस हैरानी में एक दूसरे से गले मिलने लगे और भरे हुए एरिना में ईस्ट बंगाल के नारे गूंजने लगे। मोहम्मद राशिद 72वें मिनट में अहम गोल करके हीरो बने। इससे पहले यूसुफ अज़ारी ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल कर ईस्ट बंगाल की मैच में वापसी कराई और स्कोर 1-1 से बराबर किया। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दाग कर इंटरकाशी को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दाग कर इंटर काशी को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इस जीत से ईस्ट बंगाल 13 मैचों में 26 पॉइंट्स के साथ ISL टेबल में टॉप पर रहा। मोहन बागान सुपर जायंट ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ अपना आखिरी मैच भी 2-1 के स्कोर से जीता और पॉइंट्स में बराबरी पर रहा, लेकिन ईस्ट बंगाल के 5 गोल के बेहतर अंतर ने आखिरकार क्लब का नेशनल लीग टाइटल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: वाकई देखने लायक पल था, जब खिलाड़ी तो खिलाड़ी, फैंस भी जिस तरह भावुक नजर आए एक दूसरे से गले मिलते हुए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 29 मई से 6 जून तक जापान में होने वाली इस प्रतियोगिता में टीम की कप्तान स्वीटी कुजूर होंगी। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम का हिस्सा बनाया गया।
4: भारतीय टीम भोपाल में नेशनल कैंप में कई हफ्तों की तैयारी के बाद टूर्नामेंट में उतर रही है, जहां रानी रामपाल की अगुवाई में टीम ने तालमेल, फिटनेस और तकनीक के सभी पहलुओं पर भरपूर काम किया है। अगर टीम की बात की जाए तो महक परिहार और खिली कुमारी को बतौर गोलकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया है, जबकि सुगन सांगा, नीलम टोपनो, रुबीना बक्सला, किरण एक्का और सुलोचनी डिफेंस का मोर्चा संभालते नजर आएंगी। मिडफील्डर के तौर पर श्रुति कुमारी, दिया, स्नेहा दावड़े, रश्मिन कौर, निम्मी गीताश्री और पुष्पा मांझी टीम का हिस्सा हैं। वहीं नौशीन नाज कप्तान स्वीटी कुजूर, प्रियंका मिंज, संदीपा कुमारी और नैन्सी सरोहा अटैक ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगी। भारत को प्रतियोगिता में पूल ए में कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 मई को मलेशिया के खिलाफ करेगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: देखना होगा कि ये युवा टीम एक लंबे अभ्यास और कई मैचों में पसीना बहाने के बाद किस तरह इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। 23 ग्रैंड स्लैम और 100 से अधिक खिताब जीतने वाले टेनिस की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का आज जन्मदिन है। 22 मई 1987 को जन्मे सर्बियन खिलाड़ी ने टेनिस की दुनिया के हर एक बड़े खिताब को जीता है। उनके जन्मदिन पर उनके संदेश को जरूर सुनना चाहिए, जो हर युवा खिलाड़ी को मैदान पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पाठ पढ़ाता है।
5: द मैसेज रियली फॉर एनी यंग टेनिस प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड हु इज एंड ड्रीमिंग टू बी हियर वेयर स्टेफनस एंड आई एम, ड्रीम बिग, डेयर टू ड्रीम, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट लेट एनीबॉडी टेक अवे द ड्रीम, डजंट मैटर where you're coming from. I actually think that the more disadvantaged childhood you have, the more difficulties and more challenges you have, the stronger you become. And don't really let anybody take away that dream from you. Nurture it, water it like you water the flowers. Even if you find only one person in this world that will accept, embrace and support your dreams, find that person.

0: lesson and dream big because you can make it.
1: एक दिग्गज खिलाड़ी जिसने सपने देखे और टेनिस के कोर्ट पर हर सपने को पूरा होते हुए भी देखा अपने जज्बे से, अपने हौसले से, अपनी मेहनत से। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं अपने मजबूत हौसलों से चुनौती की हर ऊंचाई लांघने वाले प्रवीण कुमार की। विश्व के नंबर एक पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने 2024 पैरालंपिक्स खेलों में तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। प्रवीण को 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सुनते हैं उनके जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
2: हिम्मत की ऊंची छलांग, प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026। 15 मीटर दूर दो पोल्स पर टिका 4 मीटर का क्रॉसबार। बरसों की मेहनत, सिर्फ एक मिनट और एक चांस, और पूरी दुनिया की आंखें सिर्फ आप पर। आसान नहीं है ना? प्रवीण कुमार का जन्म सन 2003 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। बचपन में वॉलीबॉल खेलते खेलते प्रवीण ने हाई जंप की ऊंची छलांग लगाकर हर मुश्किल को चुनौती देने की ठान ली। स्कूल में जब टीचर ने प्रवीण को चोट लगने के डर से हाई जंप में भाग लेने से मना किया तो वो 8 दिन तक टीचर से जिद करते रहे। टीचर को मानना पड़ा और 10 बजे के इवेंट में 8 बजे इनका नाम लिखा गया।
3: सबको लगा पैर में प्रॉब्लम है, मैं 2-3 फीट से ज्यादा क्या ही कूदूंगा।
2: प्रवीण ने उस कंपटीशन में गोल्ड जीता, वो भी एबल बॉडीड कैटेगरी में।
4: छोटा था तो उसको जैसे बाजार लेके गई तो उसको बाबा मिले तो बाबा ने पैर देखा, बोले कि बेटा ये तो तांबे के पैरों से है, बच्चा ये तो देश का नाम रोशन करेगा।
2: प्रवीण के हुनर को बेहतर दिशा और रफ्तार मिली जब इन्हें इनके कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह मिले।
5: हाई जंप करने के लिए इंसान की हाइट और लेग स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए, लेकिन प्रवीण के पास दोनों ही नहीं था। फर्स्ट डे जब मेरे पास प्रवीण आया तो उसने 1.80 मीटर बिना टेक्निक के क्लियर किया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि प्रवीण रिकॉर्ड बनाएगा भी और रिकॉर्ड तोड़ेगा भी।
2: अब लक्ष्य था इंडिया के लिए गोल्ड लाना, लेकिन 2019 प्रवीण के लिए सबसे मुश्किल रहा। एक तरफ उनकी इंजरीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके गेम की कैटेगरी भी चेंज हो गई थी। प्रवीण एक साल के लिए दिन रात बस मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी।
3: मुझे बस एक चीज याद थी कि जिसका गोल्ड मेडल होता है उसकी कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है।
2: प्रवीण ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक भी जीता।
3: अब मैं आने वाले खिलाड़ियों को बताता हूँ कि हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मैं मेडल के लिए नहीं खेलता, खेलता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया के लिए खेलना पसंद है।
2: प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026, कोटि-कोटि नमस्कार।
1: स्पोर्ट्स कैन भी नमस्कार करता है उन खिलाड़ियों को जो मेडल के लिए नहीं खेलते, जो खेलते हैं इस देश के लिए, इस देश के मान के लिए, उससे जुड़े गौरव के लिए। ऐसे ही एक खिलाड़ी और हजारों युवाओं की प्रेरणा प्रवीण कुमार। और अब एक बार चलते चलते रुक करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का, जहाँ IPL का एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, 13 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट खोकर के 162 रन बना चुकी है। और हेनरिक क्लासन इस समय 16 गेंदों पे 34 और ईशान किशन 26 गेंदों पर 38 रन बना करके अपनी पारी को गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ, खेल के मैदान के तमाम अपडेट के साथ। आप अपनी राय और अपने सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में

0: कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में दो विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे हम तुम, इस फिल्म का गीत। गीतकार थे प्रसून जोशी, संगीतकार जतिन ललित।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
0: जो भी एक्शन

0: हो रही है फिल्मों में जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत होगी प्यार की जीत। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत जसविंदर नरूला और रूप कुमार राठौर की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: a step in the right direction. How is this actually going to benefit consumers in the country? Because they would be the hardest hit by what's happening with the West Asia crisis.
1: Government's 37,500 crore surface coal gasification scheme is a game changer for India's self-reliance, because it would drive the shift of domestic coal into high-value synthetic gas and chemical products. This shift aggressively curbs India's heavy reliance on imports for vital commodities like LNG, urea, ammonia, and methanol, while unlocking the value of vast domestic reserves. This initiative is fundamentally significant to India's energy security and the Atmanirbhar Bharat goals through several concrete pathways eradicating import dependencies. India currently imports over 50% of its LNG and 20% of its urea, as also 100% of its ammonia, 80-90% of its methanol. So by converting domestic coal into syngas, this scheme targets India's massive national gasification goals and directly replaces these foreign-sourced critical chemicals and fuels.
0: Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnav had to say on coal gasification.
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
0: There is also an appeal by Prime Minister on taking measures as we took during the COVID-19 pandemic.
3: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी हो। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: Prabhu Dayal ji, why are we on a war footing right now?
1: Our Prime Minister urged citizens to restrain their consumption of petrol, diesel and gas. And this serves as a clear indicator of a high-stakes economic emergency triggered by external geopolitical shocks. So the Prime Minister's appeal to treat fuel conservation as a national duty in 2026 amid rising tensions in West Asia and a surging import bill signals that the situation has moved beyond routine budgetary challenges into a structural threat to India's economic stability. And the severity of the situation, as highlighted by the Prime Minister's remarks, can be understood through several key interlinked dimensions. You know, India imports vast majority of its oil and gas, making it vulnerable to volatile global prices. And the ongoing war in West Asia has pushed global energy prices to staggering levels, sharply reducing India's foreign exchange reserves. So therefore, by describing the situation as Sankat Ka Kaal, Prime Minister Modi is explicitly telling the nation that the luxury of high consumption is no longer sustainable.
0: Earlier today, Aditya Shukla, Akashwani correspondent, had a detailed discussion with energy expert Narendra Taneja on the

0: भज श्री सत्यनारायण गुरुप्रीत्यर्थ बुलानंदे कुमार
1: हरि बोला।
0: उत्कल जननी श्री शारदांग प्रीत्यर्थ बुलानंदे कुमार
1: हरि बोला।
0: विश्वर महाप्रभु मंगल कामना करंतु बुलानंदे कुमार
1: हरि बोला।

0: भज श्री सत्यनारायण प्रत्यर्थ बलानंदेकवार
1: हरि बोला।
0: विश्वर महाप्रभु मंगल कामना करंतु बलानंदेकवार
1: हरि बोला।
0: संसार सुखी रखंतु बलानंदेकवार
1: हरि

0: भज श्री सत्यनारायण प्रीतीर्थ बुलानंद एक बार
1: हरि बोला।
0: उत्कल जननी श्री शरदंग प्रीतीर्थ बुलानंद एक बार
1: हरि बोला।
0: विश्वर महाप्रभु मंगल कामना करंदु।

세번의 비라데 산티부터 다모 고필 ऋषि आश्रम कपिल ऋषि आश्रम हूँ से वनस्थल सी कौन कर भगवान श्रीकृष्ण को पाइबा निम्ते बसिकी तपस्या कर उगले से जो जट गुड़िक लंबी से जट मध्य शुक पक्षी सब बसा कर किंतु आदि पर्यंत भगवान दर्शन पाईना से वनस्थ को नीति सुंदर सबरा से शिकार करने दिने शिकार करू करू कि शिकार पाइला देखिला शुक पक्षी गुड़िक से जटा भितर पशि जाऊँ बाहरी जाऊँ सबर कौन करा।

0: ମୋ ଭକ୍ତକୁ କିଏ ଦେଉଅଛି ଦଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ।
1: उत्कल भारती कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उड़िया लोक गीत, कलाकार थे ब्रिजमोहन दास और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, तो स्वीकार कीजिए मंदाकिनी मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर के गाए मंचली फिल्म के इस गीत के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की। चिरमिरी कुरासिया से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ सिंह, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, मोनू, सोनू, सुरेश, सीमा मानवी, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़ी, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कामड़ी, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबीरॉय, पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश, नाथघाट से माखन वर्मा, चांदनी, गोपी, भूपेश, दीपेश, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता रुद्र वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।
2: क्या हुआ?
3: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
2: अच्छा जी,
3: एक बहाना बन गया अच्छा।
2: अच्छा,

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश है हमारी इन श्रोताओं की। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी गगनदी, बेबी आरजू जाजूरिया, भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। भाटापारा से ही दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल, अनुदत्त डेरे। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। मगलोर से पुनूराम साहू, तेजेश्वरी साहू, राजश्री, राजवीर साहू। खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा, दीक्षा, शिक्षा अग्रवाल। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनुष्का।

और तन्मय गजवी, भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, दुर्राबांधा भाटापार से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार, युवराज साहू, पहंदा कोरबा से सम्मीलाल कुर्रे, सावित्र देवी कुर्रे, सरक बुंदिया से गब्बर साहू, निर्मला देवी साहू। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर हीर रांझा फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की। दत्तनिगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मी नायदु, नर्मदा धाम सुरसुरी से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र योगेश यादव, अरमरी खुर्द से चूरामा लाल वाडे, जैनी वाडे, विवेक कुमार, नेहा वाडे, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी, उज्जल वर्मा, पेंड्रा से दिशा आरोही, दिव्यांश और लवी श्रीवास्तव, कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजा, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्परानी, आकाश कुमार, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर मनमौजी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। जॉनी मेरा नाम, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की। सरगुजा मैनपाड़ से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा, आदिबा थापा। गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांती, अर्चना, धनंजय मिश्रा। जामुल से विकास वर्मा, खुशी, ग्रंथ, संजय प्रधान, पूजा प्रधान। सरिगातापाड़ से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका और पूनम साहू। रायपुर से रूली, भावना, द्रौपदी, इंदु और अंजू। सरिगातापाड़ से लावण्य साहू, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू। भाटापारा से चौराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा, दुर्गा और दुर्गेश्वरी वर्मा। साकरा भूमिया से मनोज निषाद, प्रतिभा पूर्वी, खुशांत निषाद। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर जॉनी ना मेरा नाम फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सब। बिलाईगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या हेमलता, डिंपल भाव्य, प्रियांश दिवांगन। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। सिरमुंडा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई, राजेंद्र कुमार दामले। चनागांव से कोमल शोरी, विष्णु गजन, अन्यता, नंदपाल, नंदलाल मरकाम। बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या, सुषमा सारथी। चनागांव से रिया मरकाम, लालिमा, कोमल, जयंती, विष्णु साहू। देवादा से बोनू विभा, विनय प्रतिभा, गुड़िया। डोंगरगढ़ से शैल, सुधीर, नीलू, उर्वशी। सिमगा से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि, शीतल। उमरखेड़ से अभिजीत चौहानकर, सरिता चौहानकर, प्रिंस एकाश गौहानकर। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश शर्मा, सचिन वाणी वर्मा। भिलाई से सुशील जैन, कल्पना, श्रेया, सौरभ, शौर्य, शुभम जैन। बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा। बेलरगांव से मिथिलेश दिवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित दिवांगन। धरसीवा से छिदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में

0: साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC-sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honour. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship.